107.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास की नौवीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 30 मई सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

राम क्षण क्षण में श्याम हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो।

नमस्कार श्रोताओं, नई सुबह, नई किरण और नई आशाओं के साथ आप सभी को सुमंगलम सुप्रभात। ये घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि 6:01 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। मैं हूं आपकी मित्र तरुश्री और आपके समक्ष उपस्थित हूं लेकर भक्ति और आध्यात्मिकता से महकता आपका पसंदीदा कार्यक्रम पुष्पांजलि। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा का श्री गणेश करते हैं। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की चरणों की वंदना के साथ

श्रोताओं, सुबह का समय केवल जागने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को जानने के लिए होता है। पुष्पांजलि के ये सुर आपको उस सत्य से अवगत कराएंगे जो सत्य है, शाश्वत है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुषी के साथ एफएम रेनबो पर। माला के मोती तो हाथ से छूट जाते हैं, पर जो सुमिरन हमारी सांसों में बस जाए उसे विधाता भी नहीं छीन सकता। आइए अपनी हर सांस में उस परम परमेश्वर के नाम करें।

श्रोताओं, ईश्वर को पाने के लिए आकाश को छूने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा झुकने की जरूरत होती है। जितना हम अहंकार से झुकेंगे, उतना ही हम परमात्मा के करीब पहुंचेंगे। आइए एक और मधुर भजन में अपने मन को तृप्त करें और भगवान का स्मरण करें।

श्रोताओं, दीपक मिट्टी का हो या सोने का, महत्व तो उसके लौ की है। वैसे ही प्रार्थना किसी भी भाषा में की जाए, महत्व उसमें छिपी उसकी श्रद्धा की है। तो आइए नमन करें उस देवता को जिसने हमारे जीवन में कष्ट जरूर दिए, लेकिन हमें सही मार्ग दिखाया।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: श्रोताओं, दुनिया का शोर कभी खत्म नहीं होगा, पर इस पुष्पांजलि में, इस संगीत, इन भजन के जरिए हम अपने भीतर एक शांति का कोना तो बना ही सकते हैं। आइए पुष्पांजलि की यात्रा को समाप्त करते हैं एक और मधुर भजन के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: लीजिए सुनिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

यू आर लिसनिंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह की ताजी हवा के साथ कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और न्यूज़पेपर की सुर्खियों के साथ अतीत के आईने से लेकर देश और दुनिया की ताजा खबरें अब नहीं रहेंगी आपसे दूर, क्योंकि प्रोग्राम में शुरू हो रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। आज गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम

इवेंट्स की जानकारी। सुबह 8:30 पर सुनिएगा कुछ पुराने नगमे, प्रोग्राम होगा सुरों की पुरानी महफिल। रसबहार प्रोग्राम लेकर आएंगे सुबह 9 बजे से। सुबह 9:45 पर विविधा के अंतर्गत सुनिएगा प्रोग्राम महफिले गजल। सुबह 11 बजे से लेकर आएंगे आपका पसंदीदा प्रोग्राम हम नवाज, जिसे आज आप सुनेंगे लक्ष्मी, रितेश और आशीष के साथ। दिन में 3 बजे से होगा प्रोग्राम म्यूजिक आवर और शाम 4 बजे से सुनना ना भूलिएगा प्रोग्राम आपकी पसंद। अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। आइए अब आपको बताते चलें आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम।

दोस्तों जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव ही होता है, और आपकी पॉजिटिविटी को डबल करने के लिए हम रोज लाते हैं मॉर्निंग मंत्रा। आज के मॉर्निंग मंत्रा में हम लाए हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के अनमोल विचार। डॉक्टर विक्रम साराभाई का कहना था, अगर हमें कोई सार्थक काम करना है और समाज में अपनी जगह बनानी है तो हमें समस्याओं को सुलझाने के लिए साहस और नई सोच की आवश्यकता होगी। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों अपने देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छा मैसेज शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि एक पुस्तकालय किसी बच्चे का भविष्य संवार सकता है, एक किताब किसी के जीवन को बदल सकती है, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति पूरे समाज को बदल सकता है। इसलिए युवाओं में पढ़ने की आदतों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। फिलहाल अभी जरूरत है प्रोग्राम के अगले गाने की। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

0: गणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: पंडित युगल किशोर शुक्ल ने देश के पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया। 30 मई 1858 को वीरांगना लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। मैं हूं आपके साथ RJ आशीष और इस समय टाइम हुआ है सुबह के 7:31:10। आज है 30 मई सन 2026, दिन है शनिवार का। और जो लोग अभी अभी सोकर उठे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग है जी।

दोस्तों गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की बात करें तो म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के रूप में मिन आंग लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बार फिर से कहा कि सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। साथ ही सेवा में बने रहने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने की टाइम लिमिट 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी है। यूपी में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने भारी तबाही मचाई है। गुरुवार देर रात और शुक्रवार तड़के प्रदेश भर में आई तेज आंधी तूफान ओलावृष्टि और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 1 जून तक 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बारिश

बारिश का अलर्ट जारी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल यानी शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों के अनुभवों पर आधारित एक स्मारक पुस्तक का विमोचन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये पुस्तक केवल एक सैन्य दस्तावेज नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित वीर जवानों के साहस, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को समर्पित श्रद्धांजलि है।

दोस्तों अपने कानपुर महानगर से जुड़ी खबरों की बात करें तो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराई जाएगी और ये परीक्षा अपने कानपुर नगर के 19 सेंटरों पर कल यानी 31

30 मई को होगी, जिसमें 9,168 परीक्षार्थी भाग लेंगे। रेल प्रशासन ने कानपुर से बेंगलुरु कोई सीधी ट्रेन ना होने और यहां से होकर जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग के मद्देनजर दो स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का संचालन 31 मई से हो जाएगा और यात्री आज यानी शनिवार से अपना रिजर्वेशन करा सकेंगे। माल रोड स्थित बीएसएनएल कार्यालय के सामने पाइपलाइन बिछाने के कार्य के चलते आज यानी शनिवार से और अगले 20 दिनों तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान मेघदूत तिराहे से संतोषी माता द्वार के बीच वाहनों का आवागमन एक ही लेन से कराया जाएगा, तो अगर आपको उस रास्ते पर जाना है तो कोई वैकल्पिक रास्ता चुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर 102.2 FM रेनबो कानपुर पर।

दोस्तों खेल जगत से जुड़ी खबर की बात करें तो कल आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। और फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और ये मैच कल शाम 7:30 से स्टार्ट होगा। आप प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों मौसम से जुड़ी खबर की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था 35.3 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 21.2 डिग्री सेल्सियस। आगामी 3-4 दिनों में मध्यम से घने बादल छाए रहने के कारण आज यानी 30 मई से 2 जून 2026 के बीच तेज हवाओं, गरज चमक एवं ओलावृष्टि के साथ स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम को अब यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए। फिलहाल मुझे यानी आज आशीष को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि थोड़ी देर में आप सुनेंगे देश और दुनिया की ताजा खबरें समाचारों के साथ। तो बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

0: और सिर्फ FM रेनबो पर।
1: ऐसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
6: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserve.

0: ऑल्सो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज विद देम एंड दे आर वर्किंग ऑन इट एंड सिमिलरली फॉर क्रूड ऑल्सो वी आर वर्किंग।
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
4: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
1: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को

0: पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है और उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वह भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
2: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुंकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3 करोड़ 33 लाख से अधिक मतदाताओं को शामिल

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 8:30 हो चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। आज सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष। प्रोग्राम का पहला गाना आ रहा है आराधना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और ये संगीत है सचिन देव बर्मन का।

0: अरे अरे ए ए ए ए
1: जी हाँ दोस्तों, ये सॉन्ग आ रहा है सीता और गीता फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने। प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल।

और अब आ रहा है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में तीसरी मंजिल फिल्म का गाना। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष। प्रोग्राम का अगला गाना आ रहा है जमाने को दिखाना है फिल्म से, शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत है राहुल देवबर्मन का।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए, awards.gov.in।

0: www.radio.in। सूचना समाप्त हुई।
1: FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। लता मंगेशकर की आवाज में अब आ रहा है राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है रविंद्र जैन का।

इस गाने के साथ ही आज का सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल मैं यानी अजय आशीष आपसे मिलूंगा बस थोड़ी ही देर में रसभर प्रोग्राम के साथ। बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

यू आर लिस्निंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। एक बार फिर शुरू हो गया एक नया दिन, नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ, और एक बार फिर हम हाजिर हैं रसबहार प्रोग्राम के साथ। आज रसबहार प्रोग्राम में बात होगी एहसासों की, रिश्तों की, और उन खूबसूरत लम्हों की जो हमारे जीवन को यादगार बना देते हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है आना और जाना, जिंदगी के कुछ अनमोल पल।

जी हाँ दोस्तों, जब कोई खास इंसान हमारी जिंदगी में आता है ना, तो ऐसा ही लगता है जैसे दिल ने अचानक मुस्कुराना सीख लिया, हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। आना शब्द सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा है और भावनाओं से भरा हुआ है। ये शब्द जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से भी, रिश्तों से भी और अवसरों से भी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है रस बहार, और आज रस बहार प्रोग्राम में बातें हो रही हैं आने और जाने की। जी हाँ दोस्तों, जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आया तो इसका मतलब केवल उसका शारीरिक रूप से आना नहीं होता, बल्कि उसके साथ भावनाओं का जुड़ना होता है। जब कोई अपना दूर से हमारे पास आता है तो वो केवल शरीर से नहीं बल्कि अपने प्यार, अपनापन और यादों के साथ आता है। और घर में जब कोई मेहमान आता है तो पूरा वातावरण बदल जाता है। माँ के चेहरे पर मुस्कान आती है, घर में रौनक आती है, दिलों में खुशी आती है। छोटे बच्चे भी खुशी से दौड़ पड़ते हैं। इस प्रकार आना शब्द रिश्तों में मिठास भर देता है।

दोस्तों प्रकृति की बात करें तो सुबह सूरज हर रोज आता है और हमें नई ऊर्जा देकर चला जाता है। बारिश आती है और धरती को हरा भरा कर देती है। इसी तरह प्रकृति भी हमें सिखाती है कि हर आना अपने साथ कोई ना कोई मैसेज लेकर आता है। फिलहाल अभी आ रहा है रसभर प्रोग्राम का ये वाला गाना।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है रसबहार। मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और आज रसबहार प्रोग्राम में बातें हो रही हैं आने और जाने की।

जी हाँ दोस्तों, किसी का आना भी एक हसीन एहसास होता है, किसी का आना भी एक हसीन एहसास होता है, दिल के करीब कोई खास होता है। और किसी का जाना सिखा जाता है ये जिंदगी में कि हर कोई हमेशा पास नहीं होता है। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है रसबहार।

में कि हर कोई हमेशा पास नहीं होता है। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है रसबहार।

दोस्तों रजहर प्रोग्राम के आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि जिंदगी में जो भी आता है उसे दिल से अपनाइए और जो पल आपके पास है उसे पूरी तरह जी लीजिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है।

किशोर कुमार के गाए इस सॉन्ग के साथ ही आज का रसभार प्रोग्राम अब यहीं पर वाइंड अप होता है। फिलहाल मैं आने आजय आशीष आपके साथ बना रहूंगा विविधा प्रोग्राम, क्योंकि आगे आने वाला प्रोग्राम है। बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से

0: ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई,
0: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 9:45 हो चुके हैं और विविधा के अंतर्गत हम लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम महफिले गजल। और प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ।

महफिल गजल प्रोग्राम की अगली गजल आ रही है चंदन दास की आवाज में। आप इस गजल का लुत्फ उठाइए और मुझे यानी आज आशीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण करेंगे। ये वाटिका भारतीय नौसेना की वीरता, पराक्रम और तकनीकी क्षमता को समर्पित है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नौसेना शौर्य वाटिका भारतीय नौसेना के वीर सेनानियों को समर्पित श्रद्धांजलि स्थल है। वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्ध पोत INS गोमती स्थापित किया गया है, जो कि आकर्षण का मुख्य केंद्र है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1011 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने बताया कि परीक्षा को शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शिता प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। CBSE ने कहा है कि इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थी किसी भी जानकारी के लिए CBSE के टेली परामर्श हेल्पलाइन 1800 11 8004 या वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। अमरोहा में माटी कला को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय निःशुल्क आवासीय शिल्पकारी प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत माटी कला से संबंधित दैनिक उपयोग की वस्तुएं, सजावटी सामान, खिलौने, मूर्तियां, मिट्टी के उत्पादों पर कटिंग, पच्चीकारी, चित्रकारी और आदि विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही बैंकों से ऋण प्राप्त कर इकाइयां स्थापित करने के लिए योजनाएं की जानकारी प्रदान की जाएंगी। जिला ग्रामोदय अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि इच्छुक लोग 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।

सभी के राम राम प्रणाम स्नेह भरा नमस्कार पढ़े थे हम आपके रेडियो साथी रत्ना शुक्ला। आप सब श्रोता के पसंदीदा कार्यक्रम सुगंध माटी की आज तनुक विशेष होवे वाला है। अब विशेष का कही श्रोतन के बिना कछु विशेष होवत नहीं है। तो 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम सुगंध माटी की माँ 90 साल आकाशवाणी के यही से जुड़ी छुटक तुनुक बत कही हम करब। तो आप सब हो के आप सभी के साथ चाहिए ही माँ, तो सुनत रहो, बने रहो और गीत के आनंद उठावत रहो।

0: के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बनें।

ऐसा लगा नीक नीक नीक नीक गवनई हनुमान जी के चरण में यूं समर्पित रहा। तो चलो आज की बात का आगे बढ़ावत है, जो हम जौन हम आपसे कह रहे कि सुगंध माटी की कार्यक्रम में आज 90 साल आकाशवाणी की यही से जुड़ी छुटुक तनुक बतकही करब सुनब। तो एक अगर आगे बढ़ावत है तो हम सबसे पहल आप तोरे सबका बताई दे याद दिला दे कि सन 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण के आरंभ हवा रहा। मुंबई और कोलकाता में दुई ट्रांसमीटरों से ही आरंभ हवा रहा, जानते हो। वही के बाद और ये का भारतीय प्रसारण सेवा नाम रखा गवा, ठीक है। और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो रखा गवा। धीम धीम हुई के बाद 1957 में इनके नाम बदल के आकाशवाणी रख दीन। इन सब बात के बाद अब जब गर्मी के दिन चलत हैं तो हालांकि मौसम में तनिक राहत हुई है, जैसा कि सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, लेकिन गर्मी तो हाई है। तो गर्मी के मौसम भी चलते तो गर्मी के मौसम चले थे तो हमका काया आदाबा वही सब हम आपके सुनावे जा रहे हैं कि कौन गीत हमके सुनावे का मन करा तोरे सबका। तो चलो यू गीत सुन लियो।

0: वाह भाई वाह, गर्मी के दिन में कौन कौन कौन कौन बात कही सुनाए डालिन, बहुत नीक लगा। आप आओ के लगा हुई कि नहीं? हम बात करत रहे 90 साल आकाशवाणी के साथ। तो आकाशवाणी की अगर बात करें तो सब कहूँ जब नाम हुई गवा आकाशवाणी रख दिन गया 1957 में, वही के बाद आकाशवाणी करी टीम मिलकर ऐसन ऐसन उड़ान भरिन, मेहनत कहीन कि 1976 तक आवत आवत प्रभावशाली सशक्त राष्ट्रीय पहचान बनाए लीन आकाशवाणी। और जानते हो आकाशवाणी का कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, यानी कि अनेक लोगवन के हित और सुखों के लिए ये प्रसारण सेवा अपन प्रसारण देव थे। और एक के बारे में अगर बात करें तो जत्ते लोग देश दुनिया में जत्ते लोग हैं उनका कोई ज्यादा मेहनत नहीं करे के प्रत है, चाहे कहूं रहे जौन जौन काम करत रहे, लेकिन आकाशवाणी के कार्यक्रम के संग जुड़ के उनके बहुत आसान पड़त है और जुड़ जावा थे। जानना जाने कत्ती संख्या है, अनगिनत लोग हैं मनई हैं जो आकाशवाणी के गीत संगीत कार्यक्रम के साथ बहुत बहुत आनंद उठावत है। कैसे कि आप लोगों की चिट्ठी पाती मेरे सबहू फोन सबहू कुछ बतावत है कि आकाशवाणी से कत्ता स्नेह करत हो आप सब। और हम ज्यादा कुछ ना कहा, बस ये कहे कि यू गाना जो हमका लग रहा है जीव में आवत है कि आप सबका सुनाई दे कार्यक्रम सुगंध माटी की में। आज हम हैं आपके साथ, यानी कि रत्ना शुक्ला हैं आपके साथ आपके साथी। तो आपहू लोग जुड़ जाओ और गीत संगीत के साथ आकाशवाणी के 90 साल के सफर की भी आत हम बत कही करब और आपहू लोगों के विचार जानब मेल के जरिए। तो सुनत रहो और एक बात अब आपके का मेल करे के वो भी हम बताऊ, लेकिन पहले ये गीत सुन ले।
1: होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

पहले तो जादू कहनो के बाद खड़ी खड़ी मुस्काते हैं। ऐसे नीक नीक मुस्कावत हैं कि जौन जादू है वो तो अपन आप हो भी करब। ऐसे कि जब नैन लड़ जाते हैं उसके बाद जादू की बेरिया शुरू हो जाते हैं। तो चलो हम वादा कह रहे हैं कि एफएम रेनबो के जितने श्रोता पंचन है, आकाशवाणी के जितने श्रोता पंचन है, उनसे से हम बात कही करब, वही के विचार जानब। तो हम आपसे का कहे जा रहे हैं जानते हो, हम जानना चाहते हैं कि 90 बरस का जौन इतिहास है ना आकाशवाणी के, वही के विषय में तनुक बात कही जौन चल रही है। तो पिछले दशक से लई के आज के बखत तक अत जो सफर है वो सब आप साथ सब साथ रहे हो, सब साक्षी रहे हो। एक सफर जौन जौन बदलाव होवत रहा वही के साथ जौन जौन कार्यक्रम आपके बीच में आवत है। तो श्रोता पंचन 90 साल जब पूरे हो ही रहे हैं तो आगे हम का और बढ़िया काम करे के आप सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया नेक नेक कार्यक्रम लेके आवे के है, वो जो कि हम सबे आकाशवीर की पूरी टीम लावत है। तो आप हमका बतावा कि कौन कौन कार्यक्रम तोरे पंचन का नीक लागत है, पाछे के पुरान कार्यक्रम आद है कौनो, जे के बारे में तुम बत कही लिख कर पाओ। तो चलो हमका मेल कर सका तो आप एफएम कौन है, मेल का पता एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप हमका मेल कर सकते हो, बता सकते हो। और अब बिरिया आ गई है, जो जितनी टिकुरिया लटकत है ना बिरवा में, वो टिकुरिया के लाए के उसका तमाम तरह की चटनी है और चटनी के साथ साथ खटमीट अचार है, कछु तुम डाल सकते हो। लेकिन ये गीत सुन ले वही के बाद कछु करे के सोचियो। तो रत्ना शुक्ला कहते हैं आप सभी से बने रहो, सुनते रहो और ये वो गीत के आनंद उठाओ।

0: अब देखें भैया।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: और मेल कर दीन है हमका, कौन है ये? वो विकास जी मेल कर दीन है कि हेलो मैम, चरण स्पर्श से विकास, गांव सली, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से आपका कार्यक्रम सुनाते हैं। कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब झकास चल रहा है। मेरे मित्र ब्रजेश सिंह दीपू बराई से हमारी बहन प्रिया का नाम ले ले उतनिक, तो नाम ले ली है हम दीपू सिंह जी का, ब्रजेश सिंह दीपू बहराई से और प्रिया जी का नाम ले लेना है। और कार्यक्रम के विषय में जो हम लिखे हैं, बताए हैं आप सबका कि 90 साल आकाशवाणी के ये का जो इतिहास रहा, ये इतिहास में आप हो, जुड़े रहो, जितने साल से भी जुड़े, कौन कौन कार्यक्रम आपका नीक लागत है और कौन कौन कार्यक्रम आपके घर वाले सुनत रहे, ये सब कुछ आकाशवाणी के बारे में कछु तनिक मेल करके हमका बतावा, है ना? तो अब अरुण कुमार जी भी मेल करीन है, खाली हेलो लिखिन है, तो चलो अरुण कुमार जी के भी नाम ले लीन हम। वकील अहमद जी का लिखे ने, नमस्ते, आपकी आवाज अच्छी लगती है। संदेश ये है कि गर्मी बहुत तेज हो रही है, सब लोग अपन ख्याल रखें और जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं कि जल्द जल्द ठीक हो जाए, पानी पियत रहें। और मंसूरी कटका हथुरी जिला सीतापुर से साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, एम एन नवाब जी का नाम लिखे हैं। अब मतलब की बात हम ढूंढते हैं कि कौन लिखिन है, मतलब की बात। मोनूसूर भैया का लिखिन है, अच्छा लिखिन है कि अच्छा ये फोटो भी भेजी है, का भेजी ने फोटो मा, फोटो मा कुछ खास दिखात है, चलो बतावत है। रत्ना वेनी जी का नमस्ते, कैसन है आप सब? ही उम्मीद करें कि आप सब कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत नीक हुई हुए हैं। हाँ, हम बहुत नीक हैं, आप सबसे जुड़ के बहुत मजा आ रहा है, आ रहा है कैसे कि आपके मेल शामिल कर रहे हैं, आप लोग के नीक नीक गवनई सुनावे की कोशिश करते हैं। नानी की तरफ से राम राम लिखी है और ये कार्यक्रम गाँव में बहुत अधिक सुना जाता है, आज हमारे नानी और पड़ोस वाली मामी भी ये कार्यक्रम सुन रही है। नानी जी आज चना की घुघरी सेवई पूरी आपाओ के भी बुलाइन है। हम तो फोटो देख के गदगदाए गए, मोनू सेठ भैया कत्ता नीक। अच्छा, आलू और लाल चना के घुघरी बनाई है, तो आलू दिवस भी है, तो चलो आलू भी दिखा रहा है हमका फोटो में। उसके बाद सेवई है, पूरी है, बहुत नीक नाश्ता रखे हो आप, तो चलो आप सब गांव वाले मिलके नाश्ता करो। और जो जो कार्यक्रम सुन रहा है वही के हम गोल लागत है, आप हमारा संदेश वही के दे दो, कौन कार्यक्रम नानी के नीक लागत रहा वही के बारे में तनिक बताओ, जो 90 साल का इतिहास हो रहा है, 90 साल हो रहे हैं आकाशवाणी को, वही के बारे में तनिक बताओ मोनू सेठ भैया। जितने लोग सोता पंचन सुने थे सब ही बतावे की कोशिश करो। बबीता राव जी का लिखिन है, अच्छा लंबा लंबा लिखिन है, कई रंग ही में दिखाते हैं, कौन कौन रंग है? हरा रंग है, भूरा रंग है, उसके बाद कौन रंग है, काला रंग है, पीला रंग है, अरे वाह। काका लिखिन है, पता बेली कला पोस्ट सठवारा गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ यूपी से लिखिन है, कौन है? राम राम लिखिन है बबीता राव जी।

आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपका प्रोग्राम हमेशा ही काबिल तारीफ होता है। मुझे अवधि बहुत पसंद है, इसलिए मैं सुगंध माटी के प्रोग्राम कभी सुनना नहीं भूलती हूँ। मेरे पापा, भाई रजनीश, बहन विनीता, रोशनी रावत, नीलू दी सब बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करेंगे। जब रेडियो अति मन लगा के आप सभी लोग सुना थो, तो तनिक यू बताओ जो हम आज आप सब लोगों से जानना चाह रहे हैं कि 90 बरस जो आकाशवाणी के पूर्व हो रहे हैं होते हैं, तो उहिमा आप लोगों का कौन कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद आवत रहा, कौन आपके पापा का पसंद आवत रहा और आकाशवाणी के साथ जुड़ के कैसा महसूस कर रहा था, यू जरूर बताओ। जावेद अख्तर जी का लिखे ने पहले तो

लोग सुना तो तनिक यह बताओ, जो हम आज आप सब लोगों से जानना चाह रहे हैं कि 90 बरस जो आकाशवाणी के पूर्ण हो रहे हैं होते हैं, तो उहिमा आप लोगों का कौन कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आवत रहा, कौन आपके पापा का पसंद आवत रहा, और आकाशवाणी के साथ जुड़ के कैसा महसूस कर रहा था, यू जरूर बताओ। जावेद अख्तर जी का लिखे ने पहले तो अच्छा, ये पिछले कार्यक्रम के लिए मेल करी ने, जावेद अख्तर जी आजमगढ़ से, मुबारकपुर रेशम नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से, और दुई नाम लिखे ने शमशुल कमल राही जी, बेगम रुखसार जी, रकीबा शाहीन जी, इन्हों के नाम हम शामिल कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद अख्तर जी मेल करे खाते। इंद्रपाल मिश्रा का लिखे ने आपको हमारे प्यार भर नमस्कार, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, समस्त ग्रामीण श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे, अत्ता टाइम टेम निकाल के मेल कर रहे थे, सुनते हो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी का नारा, शिक्षा सूचना संगीत सुनता या देश हमारा है। अच्छा बुन चुन के लिखे ने हो आपकी ग्राम अमीरता महोली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी, अच्छी बात लिखे हो कि सूचना संगीत सुनता यह देश हमारा है आकाशवाणी के माध्यम से। तो ऐसे ही तारीफ करे रहो और आकाशवाणी के कार्यक्रम सभी आप लोगों के दिल तक उतरे, यू हमार कोशिश रहत है, तो सभी लोग यहू चाहत है। सोनू परवाना जी मेल किन है, सुगंध माटी की प्रोग्राम में रत्ना जी के प्रणाम, राम राम आपाहू के, बारिश के बाद पहली बूंद जब सूखी मिट्टी पर पड़ती है तो यह एक मनमोहक खुशबू फैलते है, जिसे विज्ञान की भाषा में पेट्री चोर कहते हैं, यह खुशबू किसी भी महंगे इत्र से ज्यादा सुकून देवते हैं। तो यहू बहुत अच्छी बात लिख दी हो तुम सोनू परवाना जी की, इत्र की खुशबू के एक आगे फीकी पड़ जाते हैं जब बारिश की पहली खुशबू के बाद जो माटी से जो सुगंध उठाते है। तो यही तो कार्यक्रम चल रहा सुगंध माटी के, अपन अपन संस्कृति अपन अपन माटी से जुड़ी जो दिल में गार जो भाव आवत है ना, वही सुगंध माटी के कार्यक्रम हम बटोरत हैं और आप सब लोगों तक पहुंचावत हैं। तो अब कौन बारी आ गई, अब बारी आ गई है काहे कि एक गीत की, तो वो गीत कहां है, कहीं नहीं लुका है, यू है ये गीत।

आकाशवाणी के 90 साल जो हुआ थे उनके बारे में अगर बात करें तो बहुत बहुत नीक कार्यक्रम, जैसे कार्यक्रम के बहुत सारे कार्यक्रम जो बरस से लोग चले आ रहे हैं, तो बहुधन हिताय बहुधन सुखाय जो हम बात कर रहे थे आप लोगों से, तो यही माध्यम से आकाशवाणी के माध्यम से हर वर्ग के मनई तक सीधे सीधे सुगमता से आकाशवाणी के अलावा और कोनो सुगमता पूर्वक जो शिक्षा ज्ञान सूचना मनोरंजन के जो सेवा होते ना वो नहीं मिल सकते है। ऐसा केवल हमार नहीं सबे लोगों के सबे मने के जितने लोग आकाशवाणी सुना थे इसे मनोरंजन और लाभ उठावा थे वो सब के कहन है। चाहे गांव के किसान मेरारू बड़के बच्चन से लड़के सभी शहर के कारोबारी दफ्तर घर दुकान मकान हर जगह रेडियो छाया रहत है। कैसे छावा रहते आपन कार्यक्रम केरी जादू से, हाँ मुला है ना कि है कि नहीं यू बताओ, तुम्हों सोचा थो कि चलो मेल करके हम बताई तो चलो हम इंतजार करें आप मेल करो हमको बताई दो कि का नीक लागत है ये जो 90 साल का सफर हुआ थे आकाशवाणी का, कौन कौन चीज तुमको नीक लगी और कौन कौन चीज में आप अपन भागीदारी की हो ये हुआ बता सका तो है ना, आकाशवाणी तो बड़े गर्व की बात है। और सुना तो होवे करो कि देश की सीमा बॉर्डर के जवान जौन है ना सन्नाटे में प्रहरी बनकर जौन देश की रक्षा कर रहे थे उनके तीर आकाशवाणी के सब्बे कार्यक्रम उन्हों के भले लागत है, उन्हों अपन गीत सुने खातिर आकाशवाणी में फरमाइश भेजते हैं पाती भेजते हैं कार्यक्रम जवानों के लिए और तमाम कार्यक्रम में अपन शिरकत करके कार्यक्रम के लाभ उठावाते हैं और वहाँ बहुत अच्छा साधन है आकाशवाणी में जुड़ के वे सब दूर दराज बैठ के आकाशवाणी के कार्यक्रम के लाभ उठावत हैं सुनत है मनोरंजन करते हैं और समाचार सुनत हैं उनके साथ साथ सूचना पावत है बहुत कुछ आकाशवाणी की द्वारा सेवा उनके मिलत है और मनोरंजन भी करते हैं।

अब जाना तो हम का सोची लगी आप सब के लोगों के बीच में रत्ना शुक्ला है, यानी कि हम अपन बात करे थे, हमारा दिमाग चला गया कि का करी गीत गौने सुनाई दे कि मेल पठे दी सुना, तो चलो पहले गीत गौने सुन लो के बाद हम आप सब लोगों का मेल शामिल करब।

और देखो, हम आप लोगों से पूछा कि 90 साल जो आकाशवाणी के हुए रही के सफर में आप कितना आनंद उठाए, कौन कौन कार्यक्रम आपका नीक लगा, आपके परिवार में कौन कौन कार्यक्रम आकाशवाणी से जुड़े जो लोग हैं उनका नीक लगा। तो मिसेस गीता सेठ का लिखिन है, ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन पिताजी के जमाने में समाचार जरूर सुना जावत रहा, जिससे पूरे देश की खबर मिल जावत रही। और हाँ, समाचार सुना सुना कोई बीच में बोल देता था तो बहुत गुस्सा होते थे, ऐसा जुड़ाव रहा था हमारे पिताजी के।

और इनके बाद किनका मेल हम शामिल करे जा रहे हैं। देखो क्या लिखी है, आंचल सेठ खालिसपुर से खाली रायबरेली से भेजे ने खाली 9 साल आकाशवाणी की बेमिसाल। अच्छा इतनी छोटे में इतनी नेक बात लिख रही ने 90 साल आकाशवाणी की बेमिसाल। देखो अति नीक बात लिख दी बेमिसाल तो है आकाशवाणी का, ऐसे के इतने अनगिनत लोगों का जोड़ा थे उनका तनिक नहीं बहुत ढेर सारी विशाल जानकारी पहुंचावत है, मनोरंजन पहुंचावत है, सूचना समाचार पहुंचावत है, तो एक ही बात ही अलग है। भैया मनु स्वीट जी फिर लिख दी कि नानी जी बताई रही हैं कि घर आंगन और कृषि के बारे में जो उनका कार्यक्रम आवत रहा वो बहुत नीत ताकत है। तो अब हूँ यू कार्यक्रम आवत है नानी जी, आप सुना तो कि नहीं आकाशवाणी पर ऐसा प्रोग्राम आवत है घर आंगन और कृषि के बारे में जो उन कार्यक्रम है वो आवत है समय समय पर, और घर आंगन में तो बहुत सारी जानकारी मिलते हैं स्वास्थ्य से लेकर के रसोई से लेकर के बहुत सारी जानकारी मिलते हैं नानी, अब हूँ सुना करो। ठीक है तो नानी की बात कही के बाद अब हम तेज बहादुर यादव जी की बात का है, रत्ना शुक्लिया दीदी के प्रणाम कैसे हैं, हम बहुत नीक हैं, आप सब लोगों से जुड़ी है बात कही करते हैं और लिखे थे कार्यक्रम बहुत सुंदर सुंदर भक्ति गीत के साथ शुरुआत करे हो आप हनुमान राम रसिया लला लला और आगे तो और बेहतरीन गीत गाने सुनाए कर मिल रही है हमका, और बस सुनत रहो FM रेनबो का आपके पसंद में भी बहुत मिठास हो गए दीदी, बहुत अच्छा गवने सुनावते हो। और तेज बहादुर यादव ममता यादव बच्चे रोनित यादव बेबी वानिका गाँव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से अभी हम गुरुग्राम हरियाणा में अपन रेडियो ऑन करके आपके गीत सुनाते हैं कार्यक्रम सुनाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लिखे ना कि हमरे जब हम आकाशवाणी सुनाते तो हमें आल्हा बहुत आवत रहा, हमारी नानी बतावत ने बहुत ध्यान से सुनत रही आल्हा के कार्यक्रम उनके बहुत पसंद आवत रहा और लोक संगीत के लोक धुन के वो कार्यक्रम होत रहा तो आल्हा इनके सुने बहुत पसंद है। आकाशवाणी में लगभग सन 2000 की बात करते हैं कि आल्हा के कार्यक्रम आवत रहा, आल्हा गीत सुन सुन के हम सब बहुत हर्षावत रहे। तो तेज बहादुर यादव जी बहुत नीक अच्छी बात कही करो, आल्हा बहु आवत है लेकिन कब कहूँ बीच में आवत है, काहे से कि लोक संगीत के कार्यक्रम सब तरीके के गीत शामिल किए जाते। और किनके मेल पाती आई गई गुलफसा सिद्दीकी कछु लिखिन है, का लिखिन है यू लेकिन है कि नमस्ते रत्ना मैम, मैं गुलफसा सिद्दीकी संडीला से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है ध्यान से सुन रही हूँ। हाँ आकाशवाणी का जलवा है भाई, आप सब जुड़ आवत हो, आप सबके जुड़ाव के साथ नीक नीक आप पाथी FM मेल सब में भेजत हो तो इससे बड़ी का बात हो इसे कह वारिस अली खान जी का

लेकिन है। मैं बचपन से आकाशवाणी से जुड़ा, मेरे पिताजी आकाशवाणी के समाचार सुनते थे, उन्हें अमीन सैनी द्वारा प्रस्तुत विना का गीतमाला बहुत पसंद था, बहुत सारे लोगों की पसंद थी, उन्हें आकाशवाणी से प्रसादी बहरे बाबा और मजदूर मंडल कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता था। वाह, किस जमाने की याद दिला दी आपने वारिस अली खान जी, बहुत अच्छी बात आपने लिखी। मुझे बहरे बाबा और हवा महल कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता था, आज भी मैं हवा महल सुनता हूँ। इसके अलावा जब कोई नई फिल्म रिलीज होती थी तो उसके पब्लिसिटी रेडियो पर होती थी और हमारा फेवरेट कार्यक्रम वो भी था। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को, यादों को समेट दिया। वारिस अली खान जी संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से आपने मेल किया, बहुत अच्छा लगा आपकी बात को सुनकर, आपने जो लिखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बीते दिनों की याद दिलाई। फिलहाल हम आप तक एक गीत भेजते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि समय बहुत कम रह गया। ये भी हमारी एक माटी की सुगंध लिए हुआ एक गीत है जो आप तक पहुंच रहा है, जिसको साल में कभी भी गाया जा सकता है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब से पीछे पिछले दिनों में बहुत ही नामचीन मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र साहब हमारे बीच में नहीं रहे। अपनी साथ की भावनाओं और सहज शब्दों से जिंदगी के गहरे फलसफे को बयां करने के लिए जाने जाते हैं ये शायर। उनकी शायरी और गजल सीधे दिल को छूती है। उनके बहुत ही ज्यादा मशहूर लोकप्रिय शेर, उनकी गजलें जो कि देश दुनिया में आगे आगे आगे लंबे समय तक हम सबके साथ रहेंगी। बस कहना चाहूंगी, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ऐसे तमाम शेर से हम उनको याद करते हैं दिल में, उनकी शेर व शायरी उनकी गजलों की एक खास जगह बनी है जो कि आगे तक बनी रहेगी, उनको नमन करते हैं और एफएम रेनबो टीम की तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम कुछ और नाम जो कार्यक्रम में ले रहे थे, जिन लोगों ने मेल किया उनके नाम हम शामिल कर लेते हैं, बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मोहम्मद आसिफ जी का भी मेल आया है और गुलफ्सा सिद्दीकी जी का भी मेल आया, जावेद अख्तर जी का भी मेल आया है, बहुत सारे नाम हमने लिए, बबीता राव जी ने भी मेल किया है, सुरेंद्र सिंह जी ने भी मेल किया है, रवि कुमार राहुल रवि जी ने भी मेल किया है, एमके राज लखीमपुर से भी इनका मेल आया है, तेज बहादुर यादव जी का भी मेल आया है। तो सभी को हम बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं और अब मिलते हैं अगले घंटे।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 11 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम हम नवा, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और मेरे साथ मेरी हम नवा हैं।
1: मैं हूं आरजे लक्ष्मी। आप सभी को लक्ष्मी का बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार हमारा भी और सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है हम नवा प्रोग्राम में। वैसे लक्ष्मी अभी आप बाहर से आ रही हैं तो कुछ बताएंगी कि मौसम के क्या मिजाज हैं, क्या हालचाल हैं, क्योंकि कल रात में मौसम जो अपने शहर का था ना थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, थोड़ा सा जो है ना ठंडा हो गया था, खुशगवार हो गया था।
1: हाँ, पिछले 2-3 दिनों से कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाव चल रहा है मौसम में और जैसा कि आपने देखा होगा कि मोबाइल पे भी अलर्ट बराबर सायरन आ रहा है हम लोगों के लिए। ये एक ऐसा कभी पहले नहीं होता था और इससे एक ये फायदा होता है कि अगर कोई ऐसी जगह पे है या खुले में है या सड़क पे है तो पहले से जो हमें सायरन से वार्निंग मिल रही है उससे हम सेफ जगह पर जा सकते हैं।
0: बहुत ही अच्छी बात कही आपने लक्ष्मी। और जैसा कि सभी देख रहे थे कि भीषण गर्मी से निजात तो मिली है लेकिन ये जो मौसम आ गया है आंधी पानी वाला उसमें थोड़ा सा हमें सावधान रहना है। सावधान कुछ इस तरह से रहना कि अगर आंधी तूफान आ जाए और आप कहीं बाहर फंस गए हैं तो तुरंत किसी पक्के मकान या सुरक्षित वाहन में शरण ले लें। पेड़, बिजली के खंभों, होर्डिंग्स और धातु की वस्तुओं से दूर रहें। अगर बाहर हैं तो खिड़की, दरवाजे और बिजली के उपकरणों से दूर रहें। फिलहाल बातें तो बहुत सारी अभी होती ही रहेंगी हमारे हमनवा प्रोग्राम में लेकिन अभी हम अपने लिसनर्स से शेयर कर लेते हैं आज के टॉपिक्स।
1: तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं, आज हम किन विषयों पर बात करने जा रहे हैं ये हम अपने लिसनर्स को बता दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गर्मियों में खान पान कैसा रखें,
0: साथ ही साथ हम बात करेंगे आज हम मना रहे हैं गोवा राज्य स्थापना दिवस तो इस विषय पर भी बात करेंगे
1: और आज हम अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मना रहे हैं।
0: और साथ में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि बच्चों में रीडिंग के प्रति रुचि कैसे बढ़ाए तो इस विषय पे भी बात करेंगे।
1: जी, और ज्ञान विज्ञान के सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं QR कोड कैसे काम करता है।
0: साथ ही साथ लेंगे हम एक अच्छी सी बढ़िया सी रेसिपी। फिलहाल बने रहिए हम नवा प्रोग्राम के साथ लेकिन एक चीज और हम शेयर कर देते हैं और वो है हमारी ईमेल आईडी।
1: जी हाँ, अगर आप कुछ भी अपने विचार हमसे शेयर करना चाहते हैं, गर्मियों में आपका खान पान किस तरह का है या आप क्या खाना पसंद करते हैं गर्मियों में और बच्चों को रीडिंग के प्रति आप किस तरह से उनके अंदर इंटरेस्ट जगाते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारी आईडी है AIRKANSOMETIA@gmail.com।
0: हाँ, और एक बार फिर से बता दें हम अपनी ईमेल आईडी AIRKANSOMETIA@gmail.com।

0: com।
1: और अब आपको सुनवाते हैं हम नवा कार्यक्रम का पहला गाना।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun।

0: जी हाँ, मौसम का जादू है जिसने हमें भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, लेकिन इस बदलते हुए मौसम में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। फिलहाल लक्ष्मी, आज है
1: जी
0: 30 मई और आज की तारीख जो है, आज की जो तारीख है वो हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मनाया जाता है गोवा राज्य स्थापना दिवस।
1: बिल्कुल आशीष, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इससे पहले यानी कि 1987 से पहले गोवा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। आज गोवा भारत का 25वां राज्य है और अपनी नेचुरल ब्यूटी और बीचेस जो हैं वहाँ पर, और कल्चरल जो उनके हेरिटेज हैं, और साथ ही साथ टूरिज्म के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
0: और लक्ष्मी, गोवा केवल अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं। गोवा की संस्कृति में भारतीय और पुर्तगाली परंपराओं की सुंदर झलक देखने को मिलती है।
1: और साथ ही साथ गोवा के जो चर्च हैं, मंदिर, लोक नृत्य यानी कि फोक डांस जो हैं, वो संगीत और त्योहार इसकी पहचान को और खास बनाते हैं। यहाँ का कार्निवल फेस्टिवल विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसके अलावा गोवा की कला, खान पान और लोक जीवन हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है।
0: गोवा राज्य स्थापना दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमें अपनी संस्कृति, विरासत और देश की एकता को बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि विकास तभी संभव है जब समाज में प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना हो।
1: आज गोवा शिक्षा, पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहा है। यहाँ की स्वच्छता, हरियाली और समुद्री वातावरण लोगों को प्रकृति से जोड़ने का संदेश देता है।
0: आइए इस विशेष अवसर पर हम सभी गोवा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दें और ये संकल्प लें कि हम अपने देश की विविध संस्कृति और एकता को सदैव मजबूत बनाए रखेंगे। गोवा राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।

0: आशीष भाई, गर्मी की हम बात कर रहे थे और गर्मी इन दिनों चरम पर है। नौतपा के 9 दिन की गर्मी में टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। इसका सीधा असर जो पड़ता है वो हमारी हेल्थ पर। ऐसे में खान पान को लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चेंजेस करने भी जरूरी हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने कहा कि नौतपा की गर्मी पड़ रही है, लेकिन इधर 2-3 दिनों से जो मौसम बदल गया है उसने थोड़ा सा ठंडक का एहसास जरूर दिलाया है, लेकिन गर्मी तो कम नहीं हुई है। और ऐसे में ठंडी तासीर वाले फल पेय पदार्थ हमारे शरीर को ठंडा तो रखते ही हैं, साथ ही दिन भर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं, क्योंकि तेज गर्मी शरीर का तापमान बढ़ा देती है, जिससे पानी और इलेक्ट्रोलाइट कम होने लगते हैं, जिसका असर एनर्जी लेवल और बॉडी फंक्शन पर पड़ता है।
0: बिल्कुल सही बात है। और जिससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, डिजीनेस यानी चक्कर आना, स्किन बर्निंग, नौजिया, हीट स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएशंस और डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं।
1: ऐसे में ठंडी तासीर वाले फल खाना फायदेमंद है जो शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजे, खीरा, ककड़ी, संतरा, मौसमी, आम, अनानास, अंगूर और केला।
0: जितने भी फ्रूट्स के तुमने नाम लिया आशीष, वो सारे मौसमी फल हैं जो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते और इजिली अवेलेबल होते हैं। और फ्रूट्स को अगर सही टाइम और सही तरीके से खाया जाए तो इसका जो कूलिंग एंड हाइड्रेशन का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिलता है। लाइक ब्रेकफास्ट में या बिफोर लंच फ्रूट्स खाने का बेस्ट टाइम है, एंड धूप से आने के तुरंत बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। और साथ ही साथ

0: फ्रिज से निकाल कर तुरंत नहीं खाना चाहिए फल, इससे स्टमक हैवीनेस हो सकती है।
1: और लक्ष्मी, फल काट कर तुरंत नहीं खाने चाहिए, है ना। लंबे समय तक कटे फल रखने से पोषक तत्व कम हो जाते हैं और संतुलित मात्रा में इसको खाना चाहिए। और जो फल आप काटे उसको तुरंत खा लें उसको, है ना। और जो कटे हुए फल है उनको नहीं खाना चाहिए, कि बाजार में कटे हुए फल जो बिकते हैं उनको नहीं जो है खाना चाहिए।
0: और ज्यादा फल, बहुत ज्यादा भी फल नहीं खाने चाहिए आशीष, क्योंकि इससे ब्लड शुगर और डाइजेशन प्रॉब्लम को ये बढ़ा देते हैं। बहुत ज्यादा फल भी नहीं खाने चाहिए। तो ये तो हो गई उन फलों की बात जिसमें वाटर क्वांटिटी ज्यादा होती है, मगर इंटेंस हीट जो हो रही है उसमें बीवरेज या पेय पदार्थ को अपने डेली रूटीन में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। हम हमेशा पानी तो नहीं पी सकते ना?
1: बिल्कुल।
0: तो आम पना, छाछ, लेमोनेड या लेमन वाटर, बेल शरबत, सत्तू शरबत वगैरह पीते रहना चाहिए।
1: कुछ और पेय पदार्थ के नाम मेरे जहन में आ रहे हैं जो आपसे छूट गए हैं, वो हैं जैसे कि नारियल पानी, गन्ने का रस, जलजीरा, खीरा पुदीना ड्रिंक, है ना। ये कई सारी चीजें हैं जो आप ले सकते हैं।
0: और कुछ फूड ऐसे भी हैं जो बॉडी टेम्परेचर एंड डिहाइड्रेशन को ट्रिगर भी कर सकते हैं, एंड दीज आर स्पाइसी फूड, जंक फूड, हाई सोडियम फूड, स्टेल फूड यानी बासी खाना, एंड अनकवर्ड फूड, एंड फाइनली लेफ्ट ओवर फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और खान पान से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी डाइटिशियन प्रत्यक्षा कटियार।
2: जब गर्मियां आती हैं तो कुछ फल कुछ सब्जियां गर्मियों के साथ आती हैं, साथ ही कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जो सिर्फ आपको गर्मियों में ही मिलेंगे, जैसे बेल है, आम है, आपका कुछ सब्जियां, अरबी, भुइया जिसको बोलते हैं, कुंदरू। खाने को आप जितना हल्का रखेंगे, हमारे आयुर्वेद में कहा गया मिताहार, मतलब खाने को सबसे पहले तो अपना पेट पूरा मत भरिए, 80% तक भरिए। क्योंकि एक एग्जांपल देकर के समझाते हैं कि मिक्सी होती है, अगर आप मिक्सी को ऊपर तक भर देंगे तो मिक्सी घूमेगी नहीं, वैसे ही पेट है, अगर आप पेट को पूरा ऊपर तक भर देंगे तो पेट की जो चर्निंग प्रोसेस है वो नहीं होगी। तो खाना आपका जितना लाइट रहेगा, पोर्शन कम रखिए, भले ही बाद में आप दोबारा ले लीजिए। और गर्मियों में डायरिया बहुत जल्दी होता है, तो अपनी डाइट में, क्योंकि पसीना निकल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें सोडियम पोटेशियम अच्छी मात्रा में हो, और गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए, जितने पेय पदार्थ जो हमारे संस्कृति में हैं, जैसे आम पना है, बिल का शरबत, उनका सेवन करें ताकि आप इस गर्मी से बच सकें। आपकी बॉडी सिग्नल देती है और वो सिग्नल है आपका यूरिन कलर, ठीक है। अगर आपका यूरिन कलर ट्रांसपेरेंट है, इट मींस कि आपकी बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है उतनी ज़रूरत उसमें है, फुलफिल हो रही है। पर अगर आपका यूरिन कलर येलो हो रहा है, डार्क येलो हो रहा है, इट मींस आपको फिर पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़, पानी के इंटेक के साथ कोशिश करिए कि अलग अलग पेय पदार्थ लीजिए। जैसे अभी आपका गन्ने का रस भी ईजिली मिल जाता है, अब आपने ये नहीं है कि एक ही दिन में 10 ग्लास पी लेना है, आपने अल्टरनेट डेज पे 1 ग्लास पी लेना है। आप आम पना पी लीजिए, आप नींबू पानी, शिकंजी पी लीजिए। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके के पेय पदार्थ का सेवन करें। आप चाहें तो मट्ठे का भी सेवन कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप और इस समय प्रोग्राम चल रहा है हम नवा, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आज आशीष और मेरे साथ मेरी हम नवा हैं।
6: मैं हूं आज लक्ष्मी। और श्रोताओं, अज्ञान विज्ञान सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से काले सफेद स्क्वायर के बारे में। कभी आपने इसे देखकर सोचा है कि आखिर इसके अंदर का सीक्रेट क्या है? जी हाँ, आज हम जानेंगे क्विक रिस्पांस कोड यानी QR कोड के बारे में।
5: और आज हम इसी QR कोड के छिपे जीनियस को समझने वाले हैं। ये सिर्फ पैटर्न नहीं है बल्कि जानकारी का

0: एक ऐसा पावर हाउस है जो हमारी दुनिया को बदल रहा है। रेस्टोरेंट के मेन्यू से लेकर छोटी से छोटी दुकानों तक ये QR कोड इस्तेमाल होता है।
1: बिल्कुल। और श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि हमारा मोबाइल फोन इस अजीब से दिखने वाले स्क्वायर को एक वेबसाइट लिंक या पेमेंट में कैसे बदल देता है? तो चलिए समझते हैं इस शानदार टेक्नोलॉजी के पीछे के मैजिक को। वैसे तो इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, क्विक रिस्पांस कोड।
0: सोचिए कि एक नॉर्मल QR कोड एक लेन वाली सड़क है जहां जानकारी एक ही दिशा में चलती है। वहीं QR कोड एक मल्टी लेन हाईवे है, यहां जानकारी को ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों दिशाओं में स्टोर करता है और यही 2D पावर इसे इतना जबरदस्त बनाता है।
1: लेकिन आशीष, इसके पहले हम ये जानते हैं कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई कहां से। तो चलिए टाइम मशीन से चलते हैं पीछे, यानी 1994 में। टोयोटा की एक सहायक कंपनी है डेंसो वेब, इसके इंजीनियर मासाहिरो हारा थे, उन्होंने इस आविष्कार को जन्म दिया। मासाहिरो के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, अपनी बिग असेंबली लाइन पर हर एक जो कार के पुर्जे थे उनको ट्रैक करने की, और पुराने नॉर्मल बारकोड से काम चल नहीं रहा था, तो कर दिया उन्होंने QR कोड का आविष्कार।
0: तो चलिए अब इस छोटे से चौकोर के अंदर झांकते हैं जहां हर एक डॉट हर एक लाइन का खास मतलब है। यहां पांचों हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हमारा फोन कोड को एक पल में और बिना किसी गलती के पढ़ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं खोज पैटर्न की,
1: यानी ये कॉर्नर पर जो तीन बड़े बड़े स्क्वायर होते हैं ना, ये समझिए कि QR कोड के गार्ड जो ये कंफर्म करते हैं कि हम अपना फोन किसी भी एंगल पर रखें स्कैन हमेशा वर्क करेगा। अलाइनमेंट पैटर्न में ये पक्का करता है कि अगर कोड किसी मुड़ी हुई सतह यानी कि फोल्डेड स्क्वायर है तो भी इसे पढ़ा जा सके।
0: और फिर आता है टाइमिंग पैटर्न यानी L शेप की लाइन, जो स्कैनर को बताती है कि डाटा ग्रिड को ठीक से कैसे पढ़ना है, मतलब एकदम सटीक। और अब बारी आती है दिल की, यानी कि कोड के दिल पर डाटा मॉड्यूल्स, ये जो काउंटलेस छोटे छोटे काले सफेद स्क्वायर है ना, ये होते हैं।
1: ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन्हीं में होती है आशीष। वेबसाइट लिंक, वाईफाई पासवर्ड और वाइट बॉर्डर जो होता है वो होता है फ्रेम। तो QR कोड की वर्किंग कैपेसिटी डेटा इनकोडिंग एंड डिकोडिंग के प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। एक QR कोड रीडर दूसरे स्कैनर का यूज करके QR कोड स्कैन करता है, फिर कैमरा कोड की इमेज कैप्चर करता है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर के पैटर्न को रीड करता है, देन इंटरप्रेट करता है यानी बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। और फिर होता है जादू, एरर करेक्शन मेथड, और ये सब हमारी पलक झपकने से भी तेजी से होता है। एरर करेक्शन सिस्टम वो जीनियस है कि अगर हम कोड को 30% पार्ट पर कुछ गिरा देते हैं या स्क्रैच कर देते हैं वो तब भी काम करेगा।
0: वाह, हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी के लिए एकदम परफेक्ट। और COVID-19 महामारी ने QR कोड के लिए एक नए युग की शुरुआत की, क्योंकि वे कॉन्टैक्ट लेस सर्विस डिलीवरी के लिए इम्पॉर्टेंट टूल्स बन गए, जिसका उद्देश्य संपर्क को कम करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
1: बिल्कुल सही बात। और सोचिए जरा, एक छोटा सा स्क्वायर कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। एक सिंगल QR कोड 7089 नंबर स्टोर कर सकता है। यही नहीं, ये 4200 से ज्यादा लेटर्स, अप्रॉक्स 3000 बाइट का बाइनरी डेटा और 800 से ज्यादा जैपनीज कांजी लेटर स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों, अब अगर आप कोई QR कोड स्कैन करेंगे तो एक पल के लिए इसके पीछे के शानदार टेक्नोलॉजी को जरूर याद करिएगा।
0: बिल्कुल।

0: क्लियर होती है पढ़ने से, और उनकी जो इमेजिनेशन है उसको बढ़ाती हैं। जो बच्चे रीडिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं और अपनी बात को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस भी कर पाते हैं।
1: इसके साथ ही लक्ष्मी, पढ़ाई केवल अच्छे अंक लाने के लिए नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और बेहतर व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी ज़रूरी है। जो बच्चा रीडिंग की आदत विकसित कर लेता है वो जीवन भर सीखने की राह पर आगे बढ़ता रहता है।
0: बिल्कुल सही बात है। और बच्चों में रीडिंग के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को बचपन से ही इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज होती हैं उनको सुनानी चाहिए। कहानियाँ बच्चों का ध्यान जो है अट्रैक्ट करती हैं और उनमें जिज्ञासा पैदा करती हैं, क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं। जब बच्चे कहानियाँ सुनते हैं ना तो खुद भी वो चाहते हैं कि हम किताबें पढ़ें, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं क्योंकि एक इमेज उनकी स्टोरी के सुनने के दौरान वो इमेज उनकी दिमाग में बनती जाती है स्टोरी की।
1: बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी। लेकिन एक बात और है, यदि पढ़ाई को केवल नियम और दबाव के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे उससे दूर भागने लगते हैं। भाई अगर आप प्रेशर देंगे तो बच्चे दूर भागेंगे ही भागेंगे। इसलिए पढ़ाई को खेल, चित्र, कविताओं और गतिविधियों के माध्यम से रोचक बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और आशीष, आपकी ये बात से मैं तो पंचतंत्र की जो कहानियों वाली किताब है ना उस पर मेरा ध्यान चला गया, जिसमें बहुत सारे जानवर होते थे, पक्षी होते थे, पेड़ पौधे और जंगलों में ऐसे ऐसे रंगीन से कलरफुल जो पिक्चर्स छपी होती थी जिनकी कहानी पढ़कर ऐसा लगता था कि हम उन्हीं की दुनिया में पहुंच गए।
1: बिल्कुल, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं कुछ ऐसी ही होती हैं। और लक्ष्मी, ऐसी बहुत सी किताबें बच्चों वाली है ना। साथ ही हर बच्चा अलग होता है। किसी बच्चे को साइंस पसंद होती है, किसी को कहानियां पसंद होती हैं, चित्रकला या खेल भी किसी को पसंद होता है। यदि बच्चों को उनकी पसंद की किताबें दी जाएं तो वो अधिक इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। अगर भाई जैसे किसी बच्चे को साइंस पसंद है तो आप उसे साइंस की एक मैगजीन दे दीजिए और उसको वो अपना पढ़ता रहेगा। आर्ट का अगर पसंद है बच्चे को तो आर्ट की आप किताब दे सकते हैं ना।
0: साइंस में बहुत सारे स्कॉलर्स जो होते हैं उसमें अगर वो रिसर्च वाली चीजें, नए नए इनोवेशन होते हैं वो आप बच्चे पढ़ सकते हैं, उनके लेवल के जो होते हैं उनकी क्लास के अकॉर्डिंग तो वो पढ़ सकते हैं। अगर कहानियाँ बहुत बच्चों को पसंद है तो छोटे छोटे से नॉवेल्स आते हैं, एलिस इन वंडरलैंड, और छोटे छोटे से एक तरह के जंगल बुक है तो ये सब पढ़ सकते हैं। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज आती हैं जो अलग अलग छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उसमें बच्चों का बहुत मन लगता है तो ये सब हम अपने उनके बच्चों को वो दे सकते हैं। और एक बात और देखी जाती है आशीष, कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने आसपास देखते हैं। यदि घर के बड़े जो मेंबर्स हैं वो किताबें पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई बहुत नॉलेज की बात कर रहे हैं तो बच्चे भी उनसे इंस्पायर होते हैं। घर में डेली कुछ टाइम पढ़ने के लिए ज़रूर पक्का करना चाहिए कि इतने से इतने बजे तक सिर्फ पढ़ाई करी जाएगी, मोबाइल को एक जगह पर डिपॉजिट कर देना चाहिए कि आप मोबाइल कोई भी छुएगा नहीं एक घंटे तक सिर्फ बुक्स या न्यूज़पेपर रीड किया जाएगा। इससे बच्चों में जो होती है एक रेगुलर उनके पढ़ने की जो हैबिट होती है वो डेवलप होती है।
1: और जब बच्चा कुछ अच्छा पढ़े या कोई नई जानकारी सीखे तो उसकी तारीफ ज़रूर करें। छोटे छोटे प्रोत्साहन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यदि बच्चों की मेहनत को सराहा जाए तो वे और अधिक उत्साह से पढ़ाई करते हैं।
0: बच्चों को लाइब्रेरी भी ले जाना चाहिए क्योंकि लाइब्रेरी से होता है कि उनको और भी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं फिक्शंस की होती हैं, नॉन फिक्शंस होती हैं, उनको पता लगता है कि कौन कौन सा जो हमारा जो रो है वो अलग अलग कितने तरह की किताबें होती हैं, कहानियों की अलग होती हैं, साइंस का अलग एक कॉलम होता है। तो बच्चों को लाइब्रेरी भी ले जाना चाहिए और बुक फेयर भी बहुत ज़रूरी है कि बुक फेयर अगर कोई लगती है तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, बच्चों को ज़रूर ले जाएं थोड़ा सा वक्त निकाल कर जहाँ ये नई नई किताबों से भी परिचित होते हैं और पढ़ने की एक अंदर से इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने की।
1: और आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि किताबें केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाती हैं।

0: लक्ष्मी, किसी भी देश का फ्यूचर उसके बच्चों पर निर्भर करता है, लेकिन आज के डिजिटल दौर में बच्चों का ध्यान मोबाइल और टीवी की ओर अधिक अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे में किताबों से जुड़ाव कम होता जा रहा है, लेकिन ये जो पढ़ने की यानी कि रीडिंग की आदत होती है ना, वो बच्चों के ज्ञान, भाषा और सोचने की क्षमता को मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल सही बात है, रीडिंग से बच्चों का जो मानसिक विकास होता है और किताबें बच्चों को नई नई जानकारियां देती हैं, उनकी भाषा सुधारती हैं, क्योंकि अगर बच्चों को कहते हैं ना कि जोर जोर से पढ़ो, तो जोर जोर से पढ़ने से उनकी लैंग्वेज जो है वो

0: लक्ष्मी एक बात बताइए, अगर हमें कोई सब्जी खाने को दी जाए और उसमें आलू ना हो तो कैसा लगता है?
1: भाई अचानक से आप खाने पीने पे आ गए आशीष एकदम से। वैसे तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे बिना चीनी के शरबत, बिना पुदीने की चटनी या बिना बेसन के पकौड़े, यानी कि काम तो चल जाता है लेकिन मज़ा नहीं आता। लेकिन अचानक से आपने आलू और सब्जी की बात क्यों पूछी?
0: बात कुछ ऐसी है लक्ष्मी की, आज है 30 मई और आज के दिन हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। संयुक्त राष्ट्र और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक भूख और गरीबी को कम करने में आलू के महत्व और इसके पोषण संबंधी फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
1: भाई हम कहने ये पहले ही कह चुके थे कि आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की, तो आगे हम आपको बताते चले कि आलू का जो इतिहास है वो 7,000 से 10,000 वर्ष पुराना है। आलू की उत्पत्ति मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2023 में 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में इसे घोषित किया।
0: आलू लगभग हर रसोई का अहम हिस्सा है, चाहे सब्जी हो, पराठा, चाट, समोसा या फिर फ्रेंच फ्राइज। आलू हर रूप में लोगों को पसंद आता है। स्वाद के साथ साथ आलू में ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

0: ये पचने में आसान होता है और शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है।
1: आलू की खेती लाखों किसानों की आजीविका का आधार भी है। ये कम समय में तैयार होने वाली ऐसी फसल है जो दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश, विशेषकर आगरा, कन्नौज और फर्रुखाबाद क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा आलू पैदा करता है।
1: आज के समय में वैज्ञानिक भी आलू की नई नई किस्मों पर काम भी कर रहे हैं ताकि बेहतर उत्पादन हो सके और किसानों को अधिक लाभ भी मिल सके। यही कारण है कि आलू केवल एक सब्जी नहीं है बल्कि कृषि और अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
0: अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमें किसानों की मेहनत का सम्मान करना चाहिए और भोजन की बर्बादी से बचना चाहिए।
1: आइए इस अवसर पर हम सभी पौष्टिक भोजन अपनाने, किसानों का सम्मान करने और कृषि के महत्व को समझने का संकल्प लेते हैं।

0: फिलहाल हम आलू से बाहर निकलते हैं, आलू की सब्जी और आलू की चीजों से, और हम बनाने जा रहे हैं रेसिपी एक मीठी मीठी सी। और हमारी जो हमनवा रसोई का जो आज व्यंजन है वो है फ्रूट कस्टर्ड विदाउट कस्टर्ड और कंडेंस्ड मिल्क, यानी कि कस्टर्ड है बट उसमें ना तो कस्टर्ड मिलाया जाएगा ना ही कंडेंस मिल्क मिलाया जाएगा।
1: अच्छा, ये कैसे होगा?
0: और ना ही गैस जलाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम आपसे शेयर कर लेते हैं क्रीमी फ्रूट चाट जैसा कस्टर्ड या चाट जो भी कहें, बिना किसी क्रीम कस्टर्ड या कंडेंस मिल्क के, जिसके लिए आपको गैस चूल्हा जलाने की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने बताया, कोई सा भी फ्रूट आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। फिलहाल हम जो ले रहे हैं वो है एक एप्पल, एक बनाना, जरा सा अनार के दाने, ग्रेप्स,
1: और क्रीमी सॉस बनाने के लिए 15-20 काजू, बादाम, एक बनाना और थोड़े से मखाने को केसर डालकर मिल्क में 10 मिनट तक भिगो कर रख दें। इसके बाद इसे एकदम फाइन स्मूथ पीस लें। एक बार में मिल्क ज्यादा ऐड ना करिएगा, नहीं तो फाइन करने में ज्यादा टाइम लगेगा।
0: और आशीष, जब हम इसको भिगो के रखेंगे, मखाने और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स और बनाना है, इसको भिगोने के लिए मिल्क को थोड़ा सा गर्म करके उसको भिगोइए, जिससे 10 मिनट में वो अच्छे से सोक हो जाए। अब उसके बाद एक बोल में सारे फ्रूट्स डालकर ऊपर से इस क्रीमी सॉस को मिक्स करिए, ऊपर से इलायची पाउडर, कुछ कतरे हुए ड्राई फ्रूट्स और अपनी चॉइस का स्वीटनर यूज़ करिए, यानी कि आप चीनी भी डाल सकते हैं, हनी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाकर एक दो घंटे तक आप फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें और ठंडा ठंडा सर्व करिए।
1: बहुत ही अच्छी रेसिपी आपने बताई। और इस रेसिपी के बाद एक गाने का समय है क्या?
0: गाने का समय? जी हाँ, थोड़ा गाना हम सुना सकते हैं अपने श्रोताओं को।

0: फिलहाल घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारा प्रोग्राम को अब यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए। तो मुझे यानी आज आशीष
1: और मुझे यानी आज लक्ष्मी को आप इजाजत दीजिए। हम आपसे मिलेंगे दोपहर 3 बजे, जिसमें बात करेंगे सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी हुई यात्राओं के बारे में। तो सुनना मत भूलिएगा। फिलहाल नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंची अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया।

बारह बजकर के 5 मिनट हो गए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून। इस खूबसूरत सी खुशनुमा दोपहर में आपका स्वागत है और मैं आपकी दोस्त चंद्रकला जुड़ गई हूँ आपके साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे। और ये जो सेगमेंट आज का हमारा होता है, अक्सर लेके आ जाते हूँ आपके पास। देखिए ना, पता नहीं क्या कारण है कि फैमिली फन आपके साथ ही करना होता है मुझे हर बार। खैर, लेकिन आज सैटरडे है, आपको याद दिला दूं। याद दिलाने की जरूरत ही क्या है, आज का जो दिन है ना वो खास होता है, खूबसूरत होता है। और इस दिन का इंतजार करते करते पूरा हफ्ता राह देखते रहते हम। खैर, और अब आप प्रोग्राम शत्रुपा का चंक फैमिली फन सुन रहे हैं, सेगमेंट आज का। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, आज जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, बहुत खूबसूरत है, छोटा सा है, हैप्पी है, इजी है। आप इसको समझना चाहेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन मोबाइल से थोड़ा सा दूर, परिवार के थोड़ा सा और करीब। आजकल घर में सब साथ तो रहते हैं, लेकिन अक्सर सबकी दुनिया अलग अलग स्क्रीन में सिमट सी गई है। बच्चे मोबाइल में, बड़े सोशल मीडिया में, धीरे धीरे बातचीत, कहानियां, साथ बैठने की आदत कहीं खोती जा रही है। लेकिन सोचिए, अगर रोज सिर्फ एक घंटा परिवार के साथ बैठ के कोई एक कहानी पढ़ना शुरू की जाए तो क्या हो। और फिर ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए और खूबसूरत कहानी की शुरुआत हो, और ये कहानी हमारी हेल्थ, हमारे रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, सबको साथ लेकर चले। ढेर सारी बातें करनी है इसी बारे में हमें, लेकिन ये खूबसूरत सा गाना हमने आपके लिए ट्यून इन करके रखा है, क्या कहते हैं उसको, आपके रेडियो सेट पर भेज दिया जाए। और प्रोग्राम शत्रुपा में आज इस खूबसूरत सेगमेंट किसका, फैमिली फन का आगाज कर ही दिया जाए। ये रहा आपके रेडियो सेट पर, तुरंत वापस आते हैं।

क्या बढ़िया वाइब है ना इस गाने की, और ऐसे ही जूबी डूबी करने का दिल करता है सैटरडे संडे के दिनों में। और फैमिली फन की बात देखिए ना, जब भी मैं आती हूँ थोड़ी सी सीरियस बात लेकर के आ जाती हूँ और मन थोड़ा सा अलग हो जाता होगा ना। लेकिन हालांकि आपको मूड अपना थोड़ा सा अलग या खराब या थोड़ा सा लो करने की जरूरत नहीं है, मैं बात तो लेकिन जरूरी करती हूँ, साथ में फन करने की बात भी तो करती हूँ। घर में फैमिली रीडिंग टाइम शुरू करने की सोच रही हूं मैं तो, और मैं आपसे शुरू करवाने की सोच रही हूं, बात कहूं तो सच। फैमिली रीडिंग टाइम क्या है? अब देखिए, रीडिंग अगर जब हम बात करते हैं पढ़ने की, तो ना ये कंसेप्ट कहीं थोड़ा सा धीरे से कम हो गया है। पहले आप सोचिए, आपके जमाने में, हमारे जमाने में क्या था? कहानियां थी, किस्से थे, दादी थी, नानी थी, और दादी नानी के साथ साथ चंपक कहानियां, और बच्चे कितनी जिद करते थे कॉमिक कॉमिक कॉमिक, हमें चाहिए कॉमिक, और जो कॉमिक बुक होती थी ना वो लेकर के आते थे तो ऐसा लगता था दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। और वही कॉमिक बुक पढ़ने वाले बच्चे, वही चंपक कहानियां पढ़ने वाले बच्चे शरीर से भी तंदुरुस्त हैं, मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त हैं, और मैं बताऊं व्यावहारिक भी हैं। व्यवहारिक इसलिए हैं, उनका बिहेवियर अच्छा है, लोगों से अच्छा मिलते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं, जिसको सीधे भाषा में, आपकी भाषा में बोलूं मैं, होश में रहते हैं। खैर, वो होश में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो स्क्रीन टाइम उनका जीरो था। मतलब मैं भी उनमें से एक हूं, मैंने भी कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं और मैंने भी कहानियां पढ़ी हैं, सुनी हैं, दादी नानी वाली कहानियां सुनी हैं, किस्से सुने हैं, और सुनाओ ना, थोड़ा कुछ बताओ ना, ऐसा कहा है, इंटरेस्ट लिया है। फैमिली रीडिंग आवर एक बनाने की जरूरत है हमें, फन करते करते भाई, मतलब मजा करते करते, ऐसा नहीं कि वो बहुत बोरिंग होगा। आप कितना परेशान हो गए होंगे कि बच्चे मोबाइल से हटते ही नहीं हैं, बस मोबाइल में ही आंखें खराब कर लेते हैं, और आप खुद का हाल देखिए, खाली समय में आप क्या करते हैं, बस मोबाइल ही तो स्क्रोल करते रहते हैं। रोज का नियम बनाना है, शाम को 1 या 2 घंटे तय करने हैं, उस समय घर के सारे मोबाइल साइलेंट मोड पर रख के, टीवी बंद, सिर्फ परिवार, किताब, बैठने का तरीका, सब अपनी अपनी पसंदीदा कुर्सी, सोफा, जहां भी जिसको बैठना हो, कुशन तकिया लेकर गोल घेरा बनाकर बैठ सकते हैं, और बीच में किताब रखी जाए, एक मेंबर 2 पन्ने पढ़े, फिर दूसरा मेंबर आगे पढ़े, फिर छोटे छोटे बच्चों को पैराग्राफ पढ़ने दें, और बच्चों को इन्वॉल्व करना है, कहानी के जो करेक्टर्स हैं, किरदार हैं, उनकी आवाज बदल बदल कर बनाकर पढ़नी है। बच्चों से पूछना है कि अगर तुम इस करेक्टर की जगह होते तो क्या करते। मुझे पता है थोड़ा सा कठिन है ये टास्क, लेकिन कठिन तो है ये टास्क, लेकिन मैं बताऊं बहुत जरूरी है ये टास्क। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो ये जो स्क्रीन टाइम है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर भेज रही हूं, और थोड़ा सा विचार करिए इस बारे में, किया जा सकता है कैसा। आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा का सेगमेंट फैमिली फन।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड।

0: नजरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
4: जी हाँ, और इस समय प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। बार बार याद दिला देती हूँ मैं, क्योंकि आप कहीं खो ना जाए किसी और दुनिया में। आज का जो सेगमेंट है हमारा, वो दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब फन के तो ढेर सारे तरीके होते हैं। ऐसे तो हम कोई मूवी देख सकते हैं साथ में, कोई पुरानी मूवी जो सबको देखने की इच्छा हो। अब तो हमारा जो वेब सीरीज वाला सिस्टम है, इसमें वेब सीरीज भी कोई देख सकते हैं, या हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम पुरानी मूवीज को भी देख सकते हैं दोबारा। उसके लिए हमें थिएटर जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे घरों में ऐसी ऐसी टीवीज भी हैं जिनमें हम बहुत अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं। हालांकि व्यवस्थाएं सारी हैं, फन करने के तरीके कई सारे हैं। हो सके तो हम कहीं घूमने जा सकते हैं, फैमिली पिकनिक अरेंज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये थोड़ा डिसिप्लिन वाला तरीका है। देखिए, जब हमें कुछ पाना होता है तो कुछ खोना पड़ता है। और आप फन करना चाहते हैं, घर में चाहते हैं कि शांति हो, सभी लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, अपने काम के लिए आगे बढ़ें। जो बड़े लोग होते हैं वो तो अपनी मंजिल की तरफ ऑलरेडी पहुंच के अग्रसर हो गए होते हैं, आगे बढ़ चुके होते हैं। लेकिन छोटे बच्चों की, यूथ की, यंगस्टर्स की सबको चिंता होती है, मोबाइल में ना लगे रहें, समय से अपना करियर, अपनी मंजिल पा लें। तो उसके लिए आपको भी कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचती हैं कि आप सिर्फ कहें, डांटें, उनको हड़का दें, जोर के कस के एकदम डर बिठा दें अपना, और उसके बाद करने लगे वो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्त। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ये है कि आपको भी वही करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा जो आप करवाना चाहती हैं। आपको देखकर आप उनका पहला स्कूल है ना। तो मैं ज्यादा ज्ञान नहीं देती हूँ, आगे की तरफ बढ़ती हूँ। आइडिया ये है कि अगर आप ये स्क्रीन टाइम को घटाने के लिए, कम करने के लिए फैमिली रीडिंग आवर शुरू करते हैं घर में, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, कि बच्चों से पूछिए कि उस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा, और अगर आप इस किरदार की जगह होते तो आप क्या करते। बच्चों की बहुत सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी ये एक्टिविटी करने से। उनकी जो वोकैब होगी ना, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उनकी जो शब्दावली है बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने के अलावा स्क्रीन टाइम तो एकदम बढ़ जाएगा, घट जाएगा, मतलब बिल्कुल स्क्रीन एकदम कम हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट वाली बात ये होगी कि उनकी सुनने और समझने की जो पावर होगी वो बहुत अच्छी डेवलप होगी। इसके अलावा जो परिवार में आप चाहते हैं एक दूसरे को समझना, कोऑर्डिनेशन, प्यार, अपनापन, ये बढ़ेगा। बस इतनी छोटी, इतनी बड़ी खुशी है ये, इतनी बड़ी खुशी। अगर यहाँ ये सब मिल जाए तो सोचिए अब क्या चाहिए इससे ज्यादा। मैं सोच रही हूँ कि ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर पहुंचाया जाए, इससे पहले कि आप थोड़े टेंशन में आ जाएं कि किया कैसे जाएगा इतना कठिन काम। बहुत आसान है, बस सोचिए आप भी ठीक होते जाएंगे उसके साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: Make some noise!

वैसे मेरे हिसाब से फैमिली फन का जो एक तरीका है ना, वो इसी तरीके खूबसूरत डांसिंग बीट्स पे डांस करके भी किया जा सकता है। डांस वैसे बहुत ही हेल्दी तरीका है सेलिब्रेट करने का, फन करने का। भाई जब जब मौका मिलता है ना, तब तब तो ऐसा कर ही लेना चाहिए। और ऐसा करने से पता है क्या होता है, आप थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं फिजिकली, मेंटली भी थोड़े से फिट हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से थोड़ी देर आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। भाई सारी चीज़ों में तो स्ट्रेस ही है इस समय, चाहे वो पढ़ाई का भूत हो, चाहे वो तैयारी करने का हो, नौकरी का हो, बाहर वालों का सुनने का हो, सोशल प्रेशर हो या फिर रिश्तेदारों की बातें हो, सब कुछ तो प्रेशर ही है। खैर इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत है भी नहीं आपको। जब आप डांस करते हैं ना, तो आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के मूव्स को देख के आपको इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि आपका जितना स्ट्रेस होता है सारा खत्म हो जाता है। खैर हम तो फैमिली रीडिंग आर बनाने की बात कर रहे थे, और मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन से भी बेहतरीन किताबें लेकर के आई हूँ। मतलब आपने उनके बारे में सुना होगा, बचपन में सुना, बचपन में पढ़ी भी होंगी वो कहानियां। लेकिन जब दोबारा शुरू करना होता है ना, तो बहुत बेसिक सी चीजों की जरूरत होती है। अब सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत वेट गेन कर लिया, 5 किलो वेट गेन कर लिया आपने, और वेट गेन कर लिया तो अब आपको लूज करना है। जब आप वेट लूज करने की जर्नी शुरू करेंगे,

तो आप बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। और बेसिक एक्सरसाइज पता है आपको, इतनी बेसिक आप सोचेंगे कि सोचिए एक जमाने में मैं कितना दौड़ लेती थी, लेकिन आज जो समय है सोचिए वॉक करके गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप वही वॉक धीरे धीरे धीरे धीरे करना शुरू करती हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, आपकी स्पीड बढ़ती है, और ब्रिस्क वॉक से लेकर के वो रनिंग फिर से पहुंच जाती है। समय लेती हैं चीजें, लेकिन पा लेते हैं वही। तो पहले जो किताब आपके लिए लेकर के आए हैं वो है ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की। अब आप कहेंगे ये किताब ये हमने पढ़ी है, ये नहीं पढ़ेंगे हम। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी ये, और अगर नहीं पढ़ी है उनसे पूछ लीजिए, पढ़ी है तो मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। पहली कहानी यही आप पढ़ लीजिए, और ये अगर पढ़ी हुई है कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उनकी कोई सी भी आप दूसरी कहानी ले सकते हैं। अगर मैं इस कहानी के बारे में बताऊं, बच्चों के साथ आपको पढ़नी है, तो ये मेरी

वही वॉक धीरे धीरे धीरे धीरे करना शुरू करती हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, आपकी स्पीड बढ़ती है और ब्रिस्क वॉक से लेकर के वो रनिंग फिर से पहुंच जाती है। समय लेती हैं चीजें, लेकिन पा लेते हैं वही। तो पहले जो किताब आपके लिए लेकर के आए हैं वो है ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की। अब आप कहेंगे ये किताब ये हमने पढ़ी है, ये नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन मैं आपको बताऊं आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी ये, और अगर नहीं पढ़ी है उनसे पूछ लीजिए, पढ़ी है तो मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, पहली कहानी यही आप पढ़ लीजिए, और ये अगर पढ़ी हुई है कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उनकी कोई सी भी आप दूसरी कहानी ले सकते हैं। अगर मैं इस कहानी के बारे में बताऊं बच्चों के साथ आपको पढ़नी है तो ये मेरी फेवरेट भी इसलिए है क्योंकि इस कहानी में ना छोटा बच्चा हामिद है जो ईद के मेले में अपने लिए खिलौना या मिठाई लेने की बजाय अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। अब सोचिए इसमें सीख क्या मिलती है ना, बड़ों का सम्मान करना, छोटी छोटी चीजों के लिए अपने अपने लोगों के लिए त्याग करना, प्यार, छोटी उम्र में उसकी कितनी बड़ी सोच होती है। और बच्चों से पूछिए अगर तुम्हारे पास 50 रुपए हो तो तुम क्या खरीदोगे, मतलब अगर तुम्हें भेजा जाए, बहुत छोटे बच्चे हैं, भेजा जाए अगर तुम मार्केट में हो तुम्हारे पास 50 रुपए हैं तो क्या खरीदोगे, और उनके जवाब से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होनी है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये गाना सुनते सुनते आप सोचिए कि आपको यही कहानी पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, और पढ़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पढ़ने का तरीका ये है कि सारे मेंबर्स बैठेंगे बिना मोबाइल के, टीवी नहीं चलेगी, कोई रेडियो नहीं, कोई टेप नहीं, कुछ नहीं, सब लोग बैठेंगे, एक आदमी रीडिंग करना शुरू करेगा और बाकी सब सुनेंगे, 2 पेज वो पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे लोग रीडिंग करेंगे, सब सुनेंगे, और कहानी का मतलब किरदार के बारे में, उस करेक्टर के बारे में सबसे पूछा जाएगा, किसी किसी समय उस किरदार की एक्टिंग भी की जा सकती है। कितना बढ़िया तरीका है ना। ये ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं और देखती हूँ आप कितनी तैयारी सोच रहे हैं इसके बारे में, फैमिली रीडिंग आर के बारे में, मोबाइल स्क्रीन बहुत फालतू के रेडिएशन से बचने के लिए कितना आप डेस्परेट हैं। ये प्यारा सा ट्रैक आप और हम मिलकर एंजॉय करते हैं।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
8: वेलकम बैक। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद, अच्छा ब्रेक में आप कहीं और दूसरी चीज के बारे में तो नहीं सोचने लगते हैं? अगर सोचने लगे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो लखनऊ और प्रोग्राम इस समय चल रहा है शत्रुपा का सेगमेंट फैमिली फन। और अगली जो रीडिंग की बात करूं मैं आपसे, क्या आपने पढ़ना है पढ़ाना है, एक और कहानी है मुंशी प्रेमचंद की ही, पंच परमेश्वर। अगर बच्चों के साथ आपको पढ़नी है, उनमें रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है, मॉरल वैल्यूज डेवलप करनी है, स्क्रीन टाइम उनका कम करना है, खुद भी पढ़िए ना। देखिए ना मैं कितनी बड़ी हो गई, लेकिन मैं चंपक वन की कहानियां अभी भी पढ़ लेती हूँ कभी कभी। इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेंटल पीस मिलता है और दुनिया भर की बातों से और फालतू की वीडियोस से, फालतू शोर शराबे से मेरा दिमाग जो है एक जगह स्थिर होता है। और जब मैं उठती हूँ एक कहानी पढ़ने के बाद, नई एनर्जी, नई एफिशिएंसी, ऐसा लगता है कि एक रिफ्रेश मिल गया नए स्टार्ट को। खैर बातें तो हैं आपको बताने की। मैं इस कहानी के बारे में अगर आपको बताऊं तो, पंच परमेश्वर के बारे में, दो दोस्तों की कहानी है जहां दोस्ती, न्याय आमने सामने आ जाते हैं और सीख मिलती है सच्चाई, ईमानदारी, न्याय सबसे बड़ा होता है। और घर में छोटा सा फैमिली कोर्ट खोल के देखिए, अगर छोटे छोटे मेंबर्स हैं आपके यहाँ तो, और बच्चों को किसी को जज बना के उनसे पूछिए कि आप इस मामले में क्या जजमेंट देते, क्या फैसला सुनाते, आपको क्या लगा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेती है। अब मैं बताती हूँ, जो बहुत देर तक काम करके आते हैं बाहर से, उनके लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो जो सदस्य घर पे हैं वही ये आपस में कर सकते हैं। और देखिए ना, वीकेंड और संडेज तो होते ही हैं सबके पास, और जरूरी नहीं है कि फन करने के लिए मॉल्स जाया जाए, पार्क्स जाया जाए, मूवी थिएटर जाया जाए या बाहर ही गेम्स खेलने जाया जाए। फन का मतलब होता है कि जिसमें आप एक दूसरे को समझ सकें, प्यार कर सकें एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट समझ सकें एक दूसरे की, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, क्या परेशानियां हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, वो सब जान सकें। इसीलिए तो हम ये सब करते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है, अगर आप अपने से किसी छोटे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो समझ लीजिए पहले आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी, वरना तो संभव नहीं हो सकता ये। और मैं सोच रही हूँ कि ये जो ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा सोचने की आप सोच रहे हैं, ये थोड़ा कम किया जाए। ट्यून इन करके रखिए मेरे साथ, अभी वापस आते हैं।

और ये जो समय है 12:52 का, ये कह रहा है कि जो बात करनी है ना समय से कर लूं मैं भी। और कहानियों की बात हो रही थी तो कुछ और कहानियां हैं, जैसे चंपक वन की कहानियां, जानवरों और जंगल की मजेदार कहानियां हैं जिसमें भाई कॉमेडी भी है, सीख भी है, दोस्ती, टीम वर्क, समझदारी, बच्चे किसी भी जानवर की एक्टिंग करके मतलब आपको भी खिलखिला सकते हैं, आप करके खिलखिला सकते हैं, हंस सकते हैं। बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते हैं, वो हमको देख के सीखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उनमें अच्छी आदतें आए तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। किताबें पढ़ने की आदत, स्क्रीन टाइम कम करना हो या डिसिप्लिन सिखाना हो, बच्चों की पहली पाठशाला तो आप हैं, उनका घर है, उनके मम्मी पापा हैं, उनके भाई बहन हैं। जब बच्चे आपको किताबों के साथ समय बिताते हुए देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना खेलना। और जब घर में मोबाइल से और इन सारी चीजों में ज्यादा बातचीत हो रही है तो फिर वो उसी तरीके का माहौल बच्चे को मिलता है। बच्चे खुद ब खुद स्क्रीन से दूर होने लगेंगे यदि आप स्क्रीन से दूर रहेंगे तो। बच्चों को बदलने से पहले खुद को बदल कर एक एग्जाम्पल सेट करिए कि देखो इस समय भी मैं पढ़ती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मैं काम करता हूँ। इसके अलावा दो बुक्स मुझे आपको सजेस्ट करनी है। एक है गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर की यात्राएं हैं, हिंदी में भी है। ये जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है, ट्रेवल के बारे में लिखा है, एडवेंचर के बारे में लिखा है, नई नई चीजों को सीखना, दुनिया को नए नजरिए से देखना, इन सब चीजों के बारे में लिखा है। और द फेमस अकबर बीरबल की कहानियां, हाजिर जवाबी हो गया, और इसके अलावा अनोखी रीडिंग टाइम, और ये कुछ अलग सी चीजें होंगी जो आपके साथ आपको खुद डे बाय डे इफेक्टिव लगेगा, आपको बहुत सारा परिवर्तन अपने आप में दिखाई देगा। हाजिर जवाबी हो गया, बुद्धिमानी हो गया, मुश्किलों का हल निकालना। हर कहानी के बाद बच्चों से पहेली पूछिए, उसका सार पूछिए, आपको क्या समझ आया। पर शर्त यह है कि स्क्रीन टाइम से दूर। हो सकता है आपके पास समय कम हो, लेकिन 1 घंटा भी समय निकालेंगे ना तो काफी है। हाँ, वैसे मैंने आपका फन बर्बाद तो नहीं किया, लेकिन आपको एक आइडिया दिया है। इतनी गर्मी में आपका बाहर जाने का मन नहीं है तो बाई चांस आज

शाम को आप यही कर सकते हैं, एक डेढ़ घंटा सबके साथ बैठ के, चलो आज एक कहानी पढ़ी जाए. बहुत अनयूजुअल होगा रीडिंग, लिटरली इतने सारे ऑप्शंस हैं इंटरटेनमेंट के, लेकिन ये टफ है लेकिन बहुत जरूरी है. आप चाहें तो इसे अपना सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं. इन्हीं सारी बातों के साथ, इसी मेरी आइडिया के साथ आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इंजॉय करिए अपना वीकेंड, खूब अपने लोगों के साथ खूब प्यार से रहिए. ढेर सारा प्यार है आपको. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए. प्रोग्राम शत्रुपा को, इस खूबसूरत सेगमेंट फैमिली फन को आज यहीं वाइंड अप करने का समय है. खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर. न्यूज ब्रेक के उस पार आपका अपना प्रोग्राम होठों पे तेरी बात लेकर तुरंत हाजिर होते हैं.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने उपस्थिति के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी लखनऊ में आने वाला हर व्यक्ति भारत की परंपरा और विरासत को जानने के साथ देश की सुरक्षा से जुड़े इस केंद्र में भ्रमण कर गौरव की अनुभूति कर सकता है। इस अवसर पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि इस वाटिका में नौसेना को लगभग 3.5 दशकों तक सेवा देने वाले INS गोमती के साथ प्रदर्शित अन्य सैन्य उपकरण युवाओं को देश की सुरक्षा में नौसेना की भूमिका को समझने का मौका देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। भारतीय सेना में 4 दशकों से अधिक समय तक सेवा देने वाले जनरल चौहान ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक और उत्कृष्ट बताया। 1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल चौहान को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उच्च युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। सेना चिकित्सा कोर केंद्र और कॉलेज लखनऊ ने कल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान सेना चिकित्सा कोर के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह ने दो प्रमुख संस्थानों के बीच विशेषज्ञता के आपसी आदान प्रदान पर प्रकाश डाला। KGMU के कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने संस्थान की शैक्षणिक और पेशेवर उत्कृष्टता के जरिए भारतीय सेना का सहयोग करने की KGMU की प्रतिबद्धता को दोहराया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप ताजमहल का दीदार करने के लिए आज आगरा पहुंची हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत टिफनी ट्रंप खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंची है, जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होटल ले जाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: एक बजकर के 4 मिनट हो गए हैं। नमस्कार और फिर से शुभ दोपहरी आपको, गुड आफ्टरनून। आपकी दोस्त चंद्रकला जुड़ गई आपके साथ और आपका अपना प्रोग्राम लेकर, होंठों पे तेरी बात। और सीधे सीधे आते हैं आज के मुद्दे पर कि आपके चेहरे पर, किसी भी के भी चेहरे पर मुस्कान का क्या महत्व है। आप क्या समझते हैं कि चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और जिसके चेहरे पर मुस्कान होती है उससे क्या फर्क पड़ता है, चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान का क्या महत्व है। बस इसी बात को आप पहुंचाइए अपने होठों की, जो भी आपकी बात है, हमारी आकाशवाणी के हैंडल पर, मेल पर, fmakashwani@gmail.com, ये हमारी मेल आईडी है।

अब इस मेल आईडी पर अपने होठों की बात हम तक पहुंचाइए। दोबारा आपको बताऊं कि आज होठों पे तेरी बात प्रोग्राम में आपको मेल्स भेजने हैं इस बात पर कि किसी के भी चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान का क्या महत्व है। बस मैं कर रही हूँ आपका इंतजार और आपके अपने प्रोग्राम की ये खूबसूरत सी ओपनिंग, खूबसूरत सा आगाज ये लीजिए आपके रेडियो सेट पर।

0: क्या कहीं खबरें दीबा हाशमी से। दारुल हुकूमत लखनऊ में तैयार नौसेना शौर्य वाटिका का आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इफ्तिताह किया। 19 करोड़ की लागत से तैयार ये नौसेना शौर्य वाटिका हिंदुस्तानी बहरिया की बहादुरी, जज्बे और तकनीकी सलाहियत को मानवन है। ये वाटिका सीजी सिटी में डेवलप की गई है। यहां कायम रिटायर्ड जंगली पोत INS गोमती सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज है। हिंदुस्तानी बहरिया और उत्तर प्रदेश महकमा सयाहत की मुश्तरका कोशिशों से तैयार ये ओपन एयर म्यूजियम जदीद इंटरप्रिटेशन सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है। इससे दारुल हुकूमत में सयाही सरगर्मियों में भी इजाफा होने की उम्मीद है। आज नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
1: लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहाँ पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है, और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे।
0: हुकूमत ने मगरबी एशिया तनाजों की वजह से आलमी तवानाई फराहमी में रखने को देखते हुए अवामी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों को 30 दिन का LPG जखीरा महफूज करने के अहकाम दिए हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की मुश्तरका सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत हिकमत अमली जखीरों के तवसुत से ईंधन तहफ्फुज मजबूत करने और बगैर किसी रखने के फराहमी यकीनी करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर मरकज पर फराहमी की कमी की कोई खबर नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच कल इस मामले में दायर अर्जियों की समाअत कर रही थी। इनमें एक अर्जी में NTA के नौ तश्कील या इसके हटाने के अहकाम देने और इसकी जगह पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बाइख्तियार और खुद मुख्तार इदारे के तश्कील का मुतालिबा किया गया था। बेंच ने मरकज से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की आइंदा समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा है कि हुकूमत नौजवानों के लिए फिक्रमंद है और यह यकीनी करने के लिए पुरहद है कि आगे ऐसी कोई चूक ना हो। दरियासना मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक का मामला बेहद अफसोसनाक है। DD न्यूज को दिए एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने यकीन दहानी कराई कि री एग्जाम का अमल बगैर किसी दिक्कत के मुनज्जम तरीके से मुनक़िद होगा।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल यकम जून से एक्टिव हो जाएगा। दरख्वास्त करने के ख्वाहिशमंद तलबा की आंसर शीट की तस्दीक और दोबारा तशखीस के शफाफ अमल को यकीनी करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इसमें तशखीस का आला मेयार कायम होगा। बोर्ड ने कहा है कि तलबा किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800-118-0004 और रिजल्ट CBSE2026@CBSE.in पर राब्ता कर सकते हैं। बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कल दो मीटिंगों में मुनक्किद होगा। पहली मीटिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी मीटिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इम्तिहान के लिए रियासत के 72 अजला में 1011 मराकज बनाए गए हैं, जहां तकरीबन 4.5 लाख लोग इम्तिहान देंगे। रियासत में गुज़िश्ता जुमेरात की रात से मौसम में आई तब्दीली से अवामी जिंदगी मुतासर हुई है। तेज आंधी तूफान बारिश और आसमानी बिजली से कई अजला में जानो माल का नुकसान हुआ है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक खातून समेत दो अफराद की मौत हो गई और कुछ दीगर जख्मी हो गए। जौनपुर में भी बारिश से दर्ज हरारत में गिरावट आई है। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर वजीर आला

योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को फौरी फील्ड में जाकर सर्वे और राहती रकम जल्द जारी करने के अहकाम दिए हैं। वजीर आला ने रियासती आवाम से खराब मौसम के दौरान अलर्ट रहने, गैर जरूरी सफर से बचने और इंतजामिया के जरिए जारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। इस दरमियान महकमे मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के दरमियान बारिश और आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।

1:16 हो गए हैं और वेलकम बैक न्यूज ब्रेक के इस पार आपका स्वागत है अपने ही प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। और मुद्दा हमने आपको तुरंत बता दिया था बिना देरी के, और मुद्दा ये था कि चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान का क्या महत्व है, आपको क्या लगता है। और सबसे पहली जो मेल हमारे पास आई थी वो सुल्तान रजा की आई थी। इन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छी बात हमको आपकी ये लगती है कि आप मेल पूरा पढ़ती हैं। अच्छा, और इन्होंने दूसरी बात ये लिखी है मुस्कान के बारे में कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सुल्तान रजा जी, आपने ये जो लाइनें लिखी हैं बेहद खूबसूरत आज के टॉपिक से बहुत मिलती हैं। और आपने हमें मेल किया है, कहाँ से मेल किया है आपने? कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से। और सुल्तान रजा, इकबाल रजा, सादिक रजा, मोनिश रजा, अफजल, इन सब का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान रजा जी आपका हमें मेल करने के लिए। अगली जो मेल हमारे पास आई है वो है सुधाकर जाधव जी की। इन्होंने हमें मेल किया है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से। और आपने हमें मेल आज के मुद्दे पर लिखा है कि होंठों पे तेरी बात प्रोग्राम में जिसके भी चेहरे पर मुस्कान होती है वो दिखने में भी अच्छा दिखता है और आनंदित रहता है। चेहरे की मुस्कान सबको आकर्षित करती है। सुधाकर जी बहुत शुक्रिया आपने आज के मुद्दे पर बात की। और सही बात है, मैं देख रही हूँ कि कौन बहुत यूनिक बात करता है मुस्कान के बारे में, है ना। मुस्कान कोई लड़की नहीं, मुस्कान आपके चेहरे की हंसी, मुस्कुराहट आपके चेहरे की। शिव पूजन लाल जी का मेल हमारे पास है। इन्होंने लिखा, हेलो आरजे चंद्रकला मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शिव पूजन जी। और इन्होंने लिखा है, कहो क्या हाल है आपके? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आपके क्या हाल है। इन्होंने लिखा है, विलेज सनीगावा लखीमपुर खीरी से, प्रोग्राम में आपके टॉपिक सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। टॉपिक चेहरे पर मुस्कान तो हर कोई रख लेता है, पर जो दिल से मुस्कुराए मेरी नजर में वही सच्चा इंसान है, और जिसके पास संतुष्टि है वही इंसान दिल से मुस्कुराता है। एंड थैंक यू सो मच शिव पूजन जी, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है, दिल से खुश रहेगा इंसान तो मुस्कान जो है वो बहुत ही बेहतरीन और ओरिजिनल वाली आएगी ना चेहरे पर, बात तो सही है। अगली जो मेल हमारे पास है रामराज जी की है। इन्होंने लिखा है, श्री गणेशाय नमः, और होंठों पे तेरी बात प्रोग्राम में इन्होंने मेल किया है रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजभानु, शंकर और बहुत सारे लोगों का नाम शामिल किया है। साथ में लिखा है, चंद्रकला बिटिया को प्यार भरा नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी आपका, बहुत धन्यवाद। इन्होंने लिखा है, हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जब लोग हंसते हैं एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आती है। रामराज जी आपका बेहद शुक्रिया, बहुत सही बात आपने बोली है। लेकिन हम हंसने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं। चेहरे पर जिन व्यक्तियों के हमेशा मुस्कुराहट रहती है वो क्या चीज़ है, मतलब क्या है उसका महत्व क्या है? कोई आपको, आपने अक्सर सुना होगा किसी को कहते हुए कि बड़ी हंसमुख लड़की है, बड़ा हंसमुख लड़का है, या हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो उस बारे में आपको बताना है क्या आपको अच्छा लगता है। अगली जो मेल हमारे पास है प्रज्ञानंद देवांगन जी की है। प्रज्ञानंद जी, आपने प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में मेल किया है और आज का मुद्दा है मुस्कुराने का क्या महत्व है, चेहरे पर जो मुस्कान होती है उसका क्या महत्व है। ये जो खूबसूरत गाना है आपके

बस इसी खूबसूरत गाने की तरह आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और आपके दिलों में जो है ना वो मोहब्बत के बाग ऐसे ही हरे भरे गुनगुनाते रहें भाई, खिलते रहें हरे भरे यूं, मतलब एकदम लहरते झूमते रहें। मेरी तो यही दिल से दुआ है आपके लिए और साथ में अपने लिए भी, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, मतलब मुस्कुराते गुनगुनाते खुश खुश एकदम दिल में मोहब्बत के बाग खिलते रहें। और वो जो मोहब्बत है ना वो सबसे पहले अपने आप से होनी चाहिए हालांकि, लेकिन एक बात तो मुझे बड़ी सही लगी आज अभी तक जो मेल्स आए उनमें कि भाई अगर जो दिल से सुकून में रहता है, सुख में रहता है, दिल से सुखी है, संतुष्ट है और अंदर उसके दिल में मोहब्बत है, और संतुष्ट भी तो तभी इंसान रहता है जब वो 100% सही काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मुस्कान अपने आप दिखाई देती है, अच्छी खूबसूरत सुकून भरी रस भरी, है ना। अगली जो मेल हमारे पास है सुधांशु जी की।

0: है, इन्होंने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन्होंने लिखा है राधे राधे, सुधांशु ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महुना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आवाज अच्छी है, टॉपिक पर हमारा ये कहना है। अच्छा सुधांशु जी शुक्रिया हमारा सबसे पहले आपको। दूसरी बात इन्होंने लिखा है मुस्कान हमारे जीवन का वो अनकहा किस्सा है, अनकहा हिस्सा है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ बयां कर देता है। हमारे होंठों पे सजी एक छोटी सी मुस्कान केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि हमारे आंतरिक स्वास्थ्य, मानसिकता, सामाजिक व्यवहार का दर्पण है। हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का आधार बनती है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक संकेत पाता है जिससे तनाव पैदा करने वाले जो हार्मोन्स है वो कम होते हैं, खुशहाली बढ़ती है, ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल होता है, मेंटल पीस हमको मिलती है। और इसके साथ ही इन्होंने लिखा है मुस्कान रिश्तों में मिठास और पॉजिटिविटी लाती है। भाई इतना सारा सुधांशु जी आपने लिखा है मुस्कान के बारे में, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत भी मुस्कान से ही मिलती है। जीवन के उतार चढ़ाव और मुश्किल समय में भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना हमारी इच्छा शक्ति और साहस को दर्शाता है। परिस्थितियों के सामने टूटने नहीं देती ये मुस्कान बल्कि अंदर से एक नया हौसला देती है। क्या बात है सुधांशु जी, आपने बहुत अधिक लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है, बहुत शुक्रिया। आपने मुस्कान के बारे में ये खूबसूरत सी जो आपकी चेहरे पर मुस्कुराहट होती है उसके लिए बहुत अच्छा लिखा है। वकील अहमद जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है नमस्ते, आपकी आवाज अच्छी लगती है, होंठों पे तेरी बात प्रोग्राम अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वकील साहब। और इन्होंने आगे लिखा है चेहरे पर मुस्कान अच्छी होती है, सबको मुस्कुराना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। इन्होंने लिखा आपके चोट लगी थी, दुआ करते हैं जल्द ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, हमारी चोट जो है वो ठीक हो रही है और क्योंकि हमारे चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान है तो ये मुस्कान जो है दर्द का एहसास होने नहीं देती। और इन्होंने हमें मेल किया है सीतापुर से, बहुत बहुत शुक्रिया वकील अहमद जी हमें मेल करने के लिए। और जो अगली मेल हमारे पास है वो है रहमान जी की, और इन्होंने तो लेकिन गाने की फरमाइश की है, तो गाने की फरमाइश ही प्रोग्राम तो ये है नहीं, ये प्रोग्राम होठों पे तेरी बात प्रोग्राम का है। प्रवीण जी की मेल हमारे पास आई है, इन्होंने लिखा है नन्हे नन्हे छोटे बच्चों की प्यारी सी मुस्कान इंसानियत की सबसे शुद्ध और खूबसूरत होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है। उसी तरह हमारी एक छोटी सी मुस्कान किसी के भी दिल में बहुत जल्दी जगह बना लेती है। चेहरे पर मुस्कान एक प्यारा एहसास होती है जो देखते ही एक दूसरे में फैल जाती है। प्रवीण जी बात तो आपने एकदम बेहतरीन और सही लिखी है। बात आपकी सटीक इसलिए है क्योंकि ये जो आपने बात लिखी है ना, बच्चों की छोटी छोटी मुस्कान आप देखिए, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा होता है वो मुस्कुराता है तो सबके दिल लाइन से पिघल जाते हैं। चाहे कभी ना हंसने वाला इंसान हो, कभी ना हंसता हो, आपने उस इंसान को कभी हंसते हुए मुस्कुराते हुए नहीं देखा है, लेकिन उसके सामने छोटा सा बच्चा ला दीजिए 2-3 साल का, वो अगर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे तो वो कभी ना हंसने वाले खड़ूस भाई साहब के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। बात तो आपने एकदम सही लिखी है, मुस्कान का बड़ा महत्व है। और जो अगली मेल हमारे पास है गुलफ्सा जी की है, इन्होंने लिखा है गुड आफ्टरनून गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से। इन्होंने लिखा है मेरे हिसाब से मुस्कान बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम चाहे जितना अच्छा और महंगा मेकअप करा लें खूबसूरत दिखने के लिए, जब तक हमारे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान नहीं होगी और घमंड गुरूर होगा तो सब बेकार है। मुस्कान से हमारे घर वाले भी खुश रहते हैं। बिल्कुल सही, एक और देखिए, एक और पॉइंट मिल गया मुझे गुलफ्सा जी, आपने बहुत ही सही बात लिखी है। पॉइंट हमें यह मिला कि घर के सदस्य भी वही सबसे ज्यादा डांट खाते हैं जो मुंह बना के रहते हैं, और घर वाले पता है उनसे क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मतलब पता नहीं किस बात का दुख है जो एकदम अजीब सा मुंह बना के बैठे हैं ये लोग, है ना। और मैं भी ज्यादातर उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा डांटती हूँ जो लोग बोलते हैं कि मेरा मुंह ही ऐसा है, मैं नहीं मुस्कुराता हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल आपने सही लिखी है, तो मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुस्कुरा के रहते हैं तो एक जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है ना वो बन के रहता है। बात तो सही है, देखिए कितनी ज़रूरी बातें निकल करके आ रही हैं धीरे धीरे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। और तब तक आप ट्यून इन करके रखिए, अपनी मेल्स टाइप करके रखिए और लिखिए कि मुस्कुराहट का क्या महत्व है, मुस्कान का आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व है, किसी के चेहरे पर मुस्कान का क्या महत्व है। ये खूबसूरत सा गाना आएगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: पर्सनल लोन ऑफर फिर से ब्लॉक करता हूँ,
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक,

0: कितना ब्लॉक करूं यार?
1: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूं?
1: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
1: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

1:36 हो गए हैं और हम भी यही कह रहे हैं कि सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। और भाई होंठों पे तेरी बात प्रोग्राम में मुस्कान की बात हो रही है और ये जो मुस्कुराहटे हैं, अगर मुस्कान के बारे में मैं बात करूं तो किसी की सहमति अगर जाननी हो बिना लफ्जों के, वो ढूंढते हैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट। कभी किसी भी बात के बारे में हाँ जानना हो बिना जुबान के, वही मुस्कान कहती है हाँ बिल्कुल मुझे पसंद आया। और ये वही मुस्कान होती है जिसको पहली बार आप देखते हैं और पहली बार देखने के बाद वो पहली बार देखा हुआ इंसान आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए ठहर जाता है। उसका कारण होती है उनकी वो निश्चल मासूम सी खूबसूरत मुस्कान। ये मुस्कान ही है जो आपके दिल दिमाग तन बदन जहन सब जगह बस जाती है। मेरे हिसाब से तो मुस्कान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी का मुंह बना हुआ है तो भाई दो ही चीजें मुझे समझ आती हैं, या तो ये आदमी खड़ूस टाइप का है या फिर कोई अंदरूनी तकलीफ है, बहुत बड़ी पीड़ा है जिसको ये छुपाए नहीं छुपा पा रहा है, चेहरे पर उतर आई है। पर मैं आपको बताऊं, मेरा तो चेहरा ही ऐसा है कि टूट फूट के भी मेरे चेहरे पे दर्द नहीं दिखाई देता। हमें आदत है मुस्कुराने की और मैं आपसे भी यही कहूंगी कि आप मुस्कुराया करिए मुस्कुराया करिए। क्या जरूरत है किसी को अपना गम दिखाने की, अपना दर्द दिखाने की, अपनी जो तकलीफें हैं वो दिखाने की, क्या जरूरत है भाई किसी को दिखाने की। हाँ अपनों के सामने तो आप दिल खोल के धड़ाधड़ रो भी सकते हैं, लेकिन ये दुनिया जिसके साथ आपने चलना है वो आपको तभी समझ पाएगी जब आप मुस्कुराते हुए उनको दिखेंगे। आप उनके सामने खुश दिखिए, चेहरे पर एक चमचमाती मुस्कान लाइए, मुस्कुराइए, उनसे बात कीजिए मुस्कुराते हुए, हो सकता है वहां से भी आपको बराबर पॉजिटिव वाइब्स मिले। खैर अपनी बातें मैं नहीं बोलूंगी, आपके होंठों की तेरी बात जो यहां तक पहुंचनी है, आपकी बात यहां तक पहुंच रही है, वही बातें हम बोलेंगे। होंठों पे तेरी बात प्रोग्राम है भी यही। रामेश्वर जी लिखते हैं कि होंठों पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन चंद्रकला को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। इन्होंने लिखा है कार्यक्रम बराबर सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी प्रस्तुति होती है, शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। इन्होंने लिखा है जब बहन चंद्रकला आती है तो कार्यक्रम में चार चांद लगा देती हैं, जितनी तारीफ करे उतनी कम है, हमें खुशी होती है आप आती हैं कार्यक्रम में। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी, आपने ये तारीफ लिख के हमें मतलब मुस्कान का महत्व बताया है कि आपने इतनी तारीफ लिखी है चार चांद वाली, तो मैं ही मुस्कुरा दूं तो आपका जवाब खत्म हो जाए। रामेश्वर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मेरी तारीफ लिखी है, लेकिन मुस्कुराहटों का मुस्कान का क्या महत्व है ये नहीं लिखा आपने। आपने हमें लिखा है कानपुर देहात से, मुंगीसापुर से आपने लिखा था, खैर शुक्रिया आपकी मेल के लिए। अगला मेल जो हमारे पास है हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी का, इन्होंने लिखा है सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से, और इन्होंने लिखा है कि हम लड़कों को बहुत कुछ सहकर भी मुस्कुराना पड़ता है। बात तो आपने बहुत गहराई वाली कही है, अपने परिवार को खुश रखने के लिए मुस्कुराना पड़ता है। पिंकू सोनी जी आपने बात बहुत गहराई वाली कही, बहुत जरूरी बात कही, खूबसूरत बात कही। और यही बात थोड़ी देर पहले मजाकी अंदाज में कह रही थी मैं। हाँ ये तो है, मुस्कुराना तो पड़ता है, खासकर लड़कों को, गम सहकर भी, वो चाहकर भी अपना गम चेहरे पर, शिकन चेहरे पर लाते नहीं, इस बात के लिए तो सलाम करते हैं हम बॉयज को। लेकिन कभी दिल खोल कर रो लेना भी अच्छी बात है, पर लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मुस्कान की बात हो रही है, तो सल्यूट है सारे लड़कों को जो सारे दर्द और गम से तुम अपने चेहरे पर दबाकर छुपाकर मुस्कुराते रहते हैं, कि घर में कहीं किसी को ये ना लगे कि लड़का हमारा कमजोर है, मुंह बनाए बैठा है। पर सल्यूट भी करते हैं और आपके स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए आपसे बोलते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बताने के लिए।

और अपने एहसासों को दबा कर भी, अपनी दर्द को दबा कर भी सबके सामने मुस्कुराता चेहरा लाने के लिए। महेंद्र देपन जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है सादर प्रणाम। महेंद्र जी आपको भी प्रणाम। इन्होंने लिखा है राजस्थान के नागौर जिले के रूण से, ये बहुत प्यारा प्रोग्राम होठों पे तेरी बात सुन रहा हूँ, आपकी सुरीली आवाज और प्रोग्राम का विषय हमेशा मन को मोह लेते हैं। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आपको पसंद आया तो इससे अच्छी और खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आज का जो सब्जेक्ट है मुस्कुराहट, वाकई में बहुत खूबसूरत है। जिंदगी की भागदौड़ और काम के तनाव के बीच चेहरे पर एक मुस्कुराहट न केवल खुद को सुकून देती है बल्कि आसपास के माहौल में भी एक सकारात्मकता भर देती है। मेरे लिए मुस्कुराहट मेरी उस आंतरिक शक्ति का प्रतीक है जो मुझे हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। चाहे मैं पुणे में रहूं या गुजरात के प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहूं, अपनों के साथ साझा की गई एक मुस्कान ही सारी थकान मिटा देती है। मेरी ओर से इस प्रोग्राम के लिए छोटी सी पंक्तियां। चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो हर दिन त्योहार सा लगता है। सादगी भरी मुस्कान से ही तो अपना हर अपना यार लगता है। महेंद्र जी बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं, बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआ है कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बने रहे। और राजेश कुमार जी का मेल हमारे पास आया है, इन्होंने लिखा अंदर से तो बहुत टूटे हुए रहते हैं मगर बाहर से लोग मुझे मुस्कुराते हुए देखते हैं। यही आपकी स्पिरिट है राजेश कुमार जी, और मेरी दुआ है कि आप यूं ही मुस्कुराते रहें। जितने भी श्रोताओं ने मेल किया है, आज जो प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात, इस प्रोग्राम का मुद्दा ही यही है, मुस्कुराहट का क्या महत्व है, चेहरे पर मुस्कान का क्या महत्व है और आपकी नज़र में मुस्कान क्यों ज़रूरी है। क्या सोचते हैं आप, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है तो क्या होता है। आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ, प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात। मेल टाइप कर लीजिए अगर आप नए श्रोता हैं हमारे साथ, fmakashwani@gmail.com ये हमारी मेल आईडी है, इस पर आप हमारी बात, अपनी बात हम तक लिख भेजिए, अपने होठों की बात कि मुस्कान क्यों जरूरी है किसी के भी चेहरे पर।

बिल्कुल, और ये खूबसूरत सी मुस्कान अगर आप लिए रहते हैं तो आपके लिए यही वाइब आती है और यही बात आती है कि भाई आप सा मासूम खूबसूरत प्यारा कोई है क्या इस जहान में भला। और जो मेल है ना हमारे पास अगली, श्री नारायण जी की मेल आई है और इन्होंने हमें मेल किया है कहाँ से, और कहाँ से आपने मेल किया है? पूरी फॉरवर्डेड मेल आपने भेजी है, खैर कोई बात नहीं। आज आपने कोई मेल नहीं की है, आपने पुरानी फॉरवर्डेड मेल भेजी है श्री नारायण जी, वैसे हमें माफ़ कीजिएगा, कुछ समझ नहीं आया आपकी मेल से। मोनू सेठ जी ने मेल की है, वैसे आज के युग में हम आधुनिक दुनिया में आ गए हैं इसलिए आनंद कम है, और वो दौर था जब चाय की चुस्की के साथ अखबार का आनंद और सुबह सुबह पेपर वाला भी राम जुहार करके दिन की शुरुआत खूबसूरत कर देते थे। एग्जाम का रिजल्ट देखने में बहुत मजा आता था, ढूंढने में सबसे पहला पेज पढ़ते थे और देश दुनिया की खबर और सुडोकू का आंसर। क्या बात है मोनू सेठ जी, हमने तो मुस्कान के बारे में बात की थी लेकिन आपने पुराने दिन याद दिला करके जो है एक अलग सी मुस्कान चेहरे पर और ला दी, और शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। पूजा जी का मेल आया है, इन्होंने लिखा है मेल हमें अमेठी से, और पूजा जी लिखती हैं कि मुस्कुराहट का मतलब होता है किसी को सकारात्मक संदेश देना, अपने चेहरे से किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, किसी दूसरे इंसान को कंफर्टेबल करना। अगर आप अपने चेहरे पर मुस्कान लिए होते हैं तो बाकी लोग आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बात तो आपने बिल्कुल सही लिखी है, मुस्कुराता हुआ आदमी सकारात्मक लगता है, और जो अंदर से हमेशा हंसमुख दिखते हैं वो अंदर से हमेशा सुकून में होते हैं, इसीलिए वो अक्सर हंसमुख कहलाते हैं। बात तो सही है, अंदर से जो इंसान मुस्कुराता रहेगा ना, दिल से खुश रहेगा, छोटी मोटी गिले शिकवे को भुलाकर उसके चेहरे पे मुस्कान रहेगी ही, बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात आपने पूजा जी लिखी है। चंद्रमोहन मिश्रा जी लिख रहे हैं नौरंगपुर लखीमपुर से, सबसे पहले प्यारा सा नमस्ते, आज का मुद्दा बहुत ही प्यारा है, उसपे मैं यही कहना चाहूंगा कि मुस्कान सिर्फ चेहरों की एक हरकत नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है और सामने वाले के दिल में एक सुकून भर देती है। आपकी एक प्यारी सी मुस्कान किसी के टूटे हुए दिन को संवार सकती है, दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बना सकती है। याद रखिए, आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और दूसरों के लिए सबसे कीमती उपहार है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्या बात है चंद्रमोहन जी, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और मुझे बड़ी पसंद आई आपकी ये बात, और बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए इस मुद्दे पर। आपके लिए भी दिल से दुआ है कि आप खूब मुस्कुराते रहें। एक मेल इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, सहारनपुर से, आपका कार्यक्रम सुनकर, आपकी मीठी आवाज सुनकर बहुत परेशान है मैम जी। परेशान है कार्यक्रम सुन के और मीठी आवाज सुन के परेशान है? क्यों भाई, परेशान क्यों है आप? आपको तो खुश होना चाहिए अगर कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और मुस्कान मतलब आवाज आपको मीठी लग रही है तो आपको खुश होना चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं, और आपके रेडियो सेट पर ये खूबसूरत सा गाना, आपके मुस्कान के लिए जो मैसेजेस आए हैं, आ हा हा हा, मतलब मुस्कान कोई लड़की नहीं, मुस्कान चेहरे की मुस्कुराहट की बात हो रही है, और जिस भी लड़की का नाम मुस्कान होगा या जिस घर में मुस्कान होगी, आज तो उसका दिन ही बन गया होगा, सोच रही होगी कि एक एक घंटे तक लोग सिर्फ मेरी ही बातें कर रहे हैं। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं।

और राजेश कुमार जी का मेल फिर से हमारे पास आया है। इन्होंने लिखा है, आपका प्रोग्राम सुनकर इसलिए दीदी परेशान है कि वो छोड़कर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, रेडियो से चिपके हुए। हमारी समस्या तो यही आ रहा है राजेश कुमार जी। हाँ, ये बात हो सकती है। खैर, अब अगले प्रोग्राम के लिए मेल्स हमें आने लगे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो समय है उसको बहुत ज्यादा देर तक पकड़ के ना रखा जाए। हम सोच रहे हैं कि निकला जाए और बस ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेज कर हम सोच रहे हैं कि बबाई किया जाए। प्रोग्राम होठों पे तेरी बात का सफर आज यही होता है खत्म, यही करते हैं वाइंड अप। लेकिन अगला जो प्रोग्राम है हॉटमेल, उस प्रोग्राम में आपके मेल्स, आपकी फरमाइशें आनी शुरू हो जाएंगी। तो तब तक के लिए ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं। न्यूज ब्रेक के उस पार तुरंत आपका अपना प्रोग्राम हॉटमेल लेकर आते हैं।

0: फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में तीन मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
4: आज डी के शिव कुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3:00 के बजाय 4:00 से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ

0: सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
3: दो बजकर के 30 मिनट हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है हॉटमेल। ओ माय गॉड, होंठों पे तेरी बात बोलने वाली थी लेकिन मैं अभी तो

आपकी जो मेल्स का सिलसिला है वो चलता चला जा रहा है और ढेर सारी मेल्स हमारे पास आ रही हैं, ढेर सारी, मतलब इतनी मेल्स हैं कि पढ़ते पढ़ते ना आप थक भी सकते हैं, मैं तो थक जाती हूँ, लेकिन मेल्स खूबसूरत होती हैं, फरमाइशें इतनी अच्छी अच्छी होती हैं कि उतनी थकान नहीं होती है, कह सकते हैं। तो अगली मेल जो हमारे पास है वो अगली मेल हमारे पास है किन की है, संजय ढिंगिया जी की है। आपने हमें मेल किया है बागपत उत्तर प्रदेश से। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया जी का नाम शामिल किया है और आपने गाने की फरमाइश की है साथ में ही। अगली जो मेल हमारे पास है वो अगली मेल है तौहीद रईन जी की। इन्होंने लिखा है, गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, लहरों को पानी से मिलाया नहीं जाता, होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। आपने गाने की फरमाइश की है और मलिहाबाद से आपने हमें मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए और मलिहाबाद के खूबसूरत आम आपने भेजे, टेस्टी स्वादिष्ट। राजू मिगलानी जी की मेल हमारे पास है और इन्होंने लिखा है, किसी भी सदाबहार गीत में हमें शामिल करें, दुर्गा कॉलोनी हांसी से आपने मेल किया है। राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू बब्बू का नाम शामिल किया है। और जो अगली मेल हमारे पास है, सरिता अभिजीत घुआणकर जी का मेल हमारे पास है, अपनी पसंद का कोई भी सदाबहार गीत सुनाने का कष्ट करें। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आपने मेल किया है। वैशाली, शैलेश, प्रिंस, एकांश, सुमित, कुमारी ध्वनि, इन सब का नाम शामिल किया है। और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रणीता, टुकटुक, इन सब का नाम शामिल किया है। बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और अंगद यादव जी की मेल हमारे पास है। अंगद यादव शिवरामपुर आजमगढ़ यूपी से। नमस्ते मैम, सुमन यादव, अर्पित, अनन्या, रिंका, मेरी मम्मी शांति देवी, हम लोग रेडियो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं, कोई भी गीत सुना दीजिए। अंगद यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए, बिल्कुल बेशक आपको खूबसूरत सा गाना सुनाया जाएगा। सावित्री देवी का मेल हमारे पास है। गुड आफ्टरनून, इन्होंने लिखा है, प्रोग्राम अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने लिखा है, स्वीट आवाज़ है आपकी, आप कितनी मेहनत करते हैं हम सबको मेल शामिल करने के लिए, थैंक यू लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ये समझने के लिए। इन्होंने लिखा है, इसीलिए जब कभी मेरा मेल मिस हो जाता है तो हम बुरा नहीं मानते, आई नो योर प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया सावित्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आप। आपने हमें बरगदी अर्जुनपुर लखनऊ से मेल किया है, बहुत शुक्रिया, और गाने की फरमाइश की है, बहुत बहुत शुक्रिया सावित्री जी, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है और हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरीके से समझदार, स्वीट हों, आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। पीएस नावकर जी का मेल हमारे पास है, गाने की फरमाइश के साथ, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से आपने मेल किया है। पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, सोपान ताइडे का नाम शामिल किया है, बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। अब्दुल गफ्फार जी का मेल हमारे पास है, किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आपने मेल किया है। अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे का नाम शामिल किया है। गुरमीत सिंह का मेल हमारे पास है, खुशनुमा नमस्ते लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बेहतरीन खुशनुमा नमस्ते। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से आपने लिखा है, नई दिल्ली, हर गीत खुशनुमा होता है, क्या बात है, हर गीत खुशनुमा होता है, जिंदगी भी एक गीत है, खुशनुमा जिंदगी है, जो आपको मिले लपेटते चले, मतलब गुरमीत जी आपने दिल खुश कर दिया, इसी तरीके की वाइब होनी चाहिए ना जिंदगी में, जो मिले भाई खुशनुमा है, मस्त है जो मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल करने के लिए और दुआ है कि आपके चेहरे पर यूं ही मुस्कान बनी रहे। राजेश वर्मा जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनाने के लिए कहा है। गोल्डन श्रोत रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, आपने इन सब का नाम शामिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और अगली जो मेल हमारे पास है वो अनमोल सिंह जी की है। अनमोल जी आपकी मेल, अच्छा आपने लिखा, अनमोल सिंह बज गहनी बाराबंकी और गाने की फरमाइश की है और इन्होंने लिखा है, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, न हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेल करने के लिए हमें। और अगली जो मेल हमारे पास है वो सत्यम जोशी की मेल है और इन्होंने लिखा है, आपको और आपकी पूरी टीम को प्यार भरा नमस्कार, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और गाने की फरमाइश की है सत्यम जोशी, श्रद्धा जोशी, प्रियंवदा जोशी, मंगलपुर कानपुर देहात से आपने मेल किया है हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली जो मेल
ओके ठीक है, ढेर सारी मेल्स हैं आपकी, ढेर सारी मेल्स हमारे पास हैं, और जो अगली मेल हमारे पास हम लेने शामिल करने जा रहे हैं वो एक खूबसूरत से गाने के बाद शामिल करने जा रहे हैं। ये खूबसूरत सा गाना आपने रिक्वेस्ट किया है, ये रहा।

0: रही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
3: जी हाँ, 2:42 हो गए हैं और आपने ट्यूनिंग किया है 100.7 FM रेनबो स्टेशन लखनऊ, एंड हियर इज योर फ्रेंड चंद्रकला विद यू। और आपको बताते बताते बताते और आपकी मेल्स शामिल करते करते हम भी जो ये खूबसूरत खुशनुमा सफर है इसमें खो गए हैं कहीं। इतने खूबसूरत गाने, मतलब आज कहाँ से इतनी प्यारी प्यारी फरमाइशें आ रही भैया, मतलब एकदम दिल खुश हो गया एकदम। इतना अच्छा, मतलब डांसिंग टाइप के नंबर्स आ रहे हैं, मजा आ गया। और ये तो गोविंदा नंबर स्पेशल चल रहा है क्या आज? बढ़िया, आपकी फरमाइशें बहुत खूबसूरत हैं और कई लिसनर्स भेजते भी हैं मेल। अभी अभी एक लिसनर ने भेजा भी था मेल कि भाई जो दूसरे लोग फरमाइश करते हैं ना, हर गाना अपने आप में खुशनुमा है, तो मतलब वाइब जो है ना वो सेट हो ही जाती है, कुछ भी कहिए आप। अगला जो मेल हमारे पास है वो आफ्ताब अंसारी का है और आपने हमें मेल किया है कहाँ से? शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से। आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना, आलिया, इन सब का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु का एक मेल आया है और एक खूबसूरत गाने की फरमाइश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। और सदानंद मंडूरकर का मेल हमारे पास है, इन्होंने किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है। डाबकी रोड, अकोला, महाराष्ट्र से आपने मेल किया है। सुशीला देवी, सदानंद मंडूरकर और कुमार गौरव मंडूरकर का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और अगली मेल जो हमारे पास है सुरेश नारंग जी की है और इन्होंने हमें मेल किया है, यू सो स्वीट वॉइस जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आपको हमारी आवाज स्वीट लगी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सहारनपुर से आपने मेल किया है, आशा नारंग और सुरेश नारंग, सोनाली नारंग का नाम शामिल किया है। बहुत शुक्रिया, खूबसूरत गाने की फरमाइश की है आपने। और अगली जो मेल हमारे पास है रविंद्र मोहन दास जी की मेल है, कोई भी गीत सुना दें। किशनगंज बिहार से आपकी मेल हमारे पास आई है और रविंद्र मोहन दास, आशा देवी जी की मेल नाम आपने शामिल किया है। और वारिस अली खान का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्ले द टाइटल ट्रैक। ओके ओके, आपने लिखा है संजय नगर यशबाग लखनऊ से। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस अली खान जी हमें मेल करने के लिए। और अगली जो मेल हमारे पास आ रही है उस मेल को देखिए, आप जो है एक ही मेल कई बार फॉरवर्ड मत करिएगा, ये अच्छी बात नहीं होती है। और मोहम्मद सादिक खत्री का मेल हमारे पास है और आपने हमें पुरानी मेल टाइप करके भेजी, तो पुरानी मेल टैग करके मत भेजिए, कोई बात नहीं। अगली मेल हमारे पास है आनंद कुमार शुक्ला जी की और आनंद कुमार शुक्ला जी ने हमें मेल किया है महमूदाबाद श्यामदासपुर से, कोई भी गीत सुना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमें मेल करने के लिए और शुक्रिया आपकी मेल के लिए। और बस इसी तरीके से आपकी मोहब्बत जो है रेनबो लखनऊ के लिए बनी रहे। ये खूबसूरत सा गाना आपने फरमाइश की है, आप इस खूबसूरत से गाने को सुनिए, हम भी तुरंत वापस आएंगे और ये चाहेंगे कि आप ये जो गाना आपने फरमाइश की है और जिसकी फरमाइश की बारी पड़ी है उसकी फरमाइश के साथ खुश हो लें, क्योंकि हम भी बहुत खुश हैं, खुश खुश बहुत ज्यादा खुश हैं इस गाने को सुनकर।
4: यू

2:54 हो गए हैं और आज प्रोग्राम हॉटमेल का सफर जो है समाप्ति की ओर है. आज यही वाइंड अप करना पड़ेगा हमें प्रोग्राम हॉटमेल को, लेकिन कुछ मेल्स हैं जो बच गई हैं, उन मेल्स को शामिल कर लेते हैं. मुजम्मिल शेख का मेल है और इन्होंने लिखा है, आई एम लिसनिंग फ्रॉम जुबली हिल्स हैदराबाद तेलंगाना. इन्होंने लिखा है, हम भी तो है मैडम जी आपकी जीमेल लिस्ट में, हमको क्यों भूल रही हैं आप, भूल नहीं गए हैं मुजम्मिल जी. ये जो बहुत ज्यादा मेल करते हैं ना, डबल ट्रिपल चौपल 10-10 मेल्स करते हैं, उनकी वजह से जो है कहीं मेल छूट जाती है. और बाकी बहुत सारी जो मेल्स फिर से आ रही हैं उन सबको मैं बता दूं, जैसे रविंद्र मोहन जी हैं, स्वर्ण सिंह, शाहरुन नूर हैं, सादिक खत्री जी हैं, इन सबकी मेल शामिल हो चुकी है, उसके बावजूद इनकी मेल अभी तक आती रह रही है. खैर, मैंने कोशिश पूरी की है कि आपकी मेल जो है वो पूरी तरीके से सारी शामिल हो जाए, और शामिल हुई भी आपकी मेल सारी सारी. और इन्हीं सारी बातों के साथ मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अगले प्रोग्राम को सुनने के लिए रेडी रहिए. ट्यून इन करके रखिए न्यूज ब्रेक के उस पार, आपका अपना प्रोग्राम सतरंगी दुनिया आता है. ये खूबसूरत से गाने के साथ आज प्रोग्राम हॉट मेल से आपकी अपनी दोस्त चंद्रकला को दीजिए विदा. टेक केयर.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

Very good afternoon, my all dear listeners. दोपहर के 3 बज चुके हैं. You are connected to 102.2 FM Rainbow Kanpur with your radio host RJ Lakshmi. Music Show में आप सभी का मोस्ट वेलकम, जहां खूबसूरत म्यूजिक के साथ बातें होती हैं दिल की, संस्कृति की और अपने देश की खूबसूरत विरासत.

जरूरत होती है पेरेंट्स के टाइम, लव एंड प्रेजेंस की। जब फैमिली घूमने निकलती है ना, इवन ईट टुगेदर, टॉक टुगेदर, लाफ टुगेदर ड्यूरिंग द जर्नी, तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डीपर हो जाता है। ट्रिप के दौरान बच्चों के थक जाने पर वो पेरेंट्स का गोद में उठा लेना, हिल स्टेशन ट्रिप पर बार बार पूछना कि भाई ठंड तो नहीं लग रही है, ट्रैकिंग में बच्चों की हौसला अफजाई करना, बच्चों को सिक्योर, लव्ड एंड इमोशनली कनेक्टेड फील कराता है।

जीवित शहरों में एक, माँ गंगा के किनारे बसा काशी हजारों सालों से संस्कृति और आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ के घाट, मंदिर और सक्रिय गलियाँ देश की आध्यात्मिक जड़ों का जीवंत रूप है। यहाँ पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। शिव की नगरी में आप सुबह सवेरे घाटों पर बैठकर सुकून के पल बिता सकते हैं। वहीं शाम की गंगा आरती आपको भाव विभोर कर देती है। ये शहर अपने ट्रेडिशनल फूड के लिए भी पहचाना जाता है।

दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं देश की अमूल्य धरोहर की, जहाँ हर किला, हर मंदिर और हर स्मारक अपने भीतर इतिहास, संस्कृति और प्रेरणा की अनगिनत कहानियाँ समेटे हैं।

ऐसी ही एक ऐतिहासिक जगह है हम्पी, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर का स्टेटस मिला है। कर्नाटक के ये हिस्टोरिकल प्लेस कभी शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ के विशाल पत्थरों से बने मंदिर, बाजार और खंडहर उस समय की भव्यता और समृद्धि की कहानी कहते हैं। विजयनगर एम्पायर के समय में बना विरूपाक्ष टेम्पल आप घूम सकते हैं। वहीं विठल मंदिर, जहाँ स्टोन चैरियट यानी पत्थर का रथ टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है। शाही महल, कलम महल, हाथी अस्तबल एंड ग्रैंड रॉयल इनक्लोजर उस टाइम की शानदार वास्तुकला का यूनिक एग्जाम्पल है। शो में आगे बात करेंगे हिंदुस्तान की एक और सांस्कृतिक विरासत की, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दिया गया है। फिलहाल एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

Well, you are enjoying your favorite musical show, Music Art with RJ Lakshmi, only on 102.2 FM Rainbow Kanpur. Connected hai aap Kanpur ki dil ki dhadkan ke saath. Just imagine, दोस्तों, the colorful हवेलीज ऑफ राजस्थान, वो पुराने किले की ऊंची ऊंची दीवारें, मंदिरों की वो अद्भुत नक्काशी, द डिवाइन गंगा आरती ऑफ काशी. जब बच्चे अपनी आंखों से ये सब देखते हैं ना, तो इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता, इट बिकम्स अ मेमोरी फॉर लाइफ.

और अब जिक्र एक ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज का जहाँ के मंदिरों का कंस्ट्रक्शन चंदेल डायनेस्टी ने कराया था। आप हमें बताइए ये ऐतिहासिक जगह कौन सी है और क्या आप वहाँ घूमने गए हैं? जल्दी से लिख भेजिए हमें, हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। तब तक हम आते हैं वापस बताने आपको हमारी इस अमूल्य विरासत के बारे में। स्टे कनेक्टेड विद अस।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
7: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

वेलकम वंस अगेन ऑन म्यूजिका शो। शो में लक्ष्मी है आपके साथ। और दोस्तों, खूबसूरत और बारीक नक्काशी वाले मंदिरों के लिए दुनिया भर में फेमस खजुराहो, जो एमपी में है, मंदिरों की दीवारों पर की गई नक्काशी उस टाइम के जीवन, कला, संस्कृति और मानवीय भावनाओं को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। हर मूर्ति एक कहानी कहती है, whether it is related to devotion, mythology or everyday life scenes. बच्चों को cultural heritage site पर ले जाना is not just about traveling, बल्कि उन्हें अपनी जड़ों से connect करता है। वो जान पाते हैं कि हमारा देश केवल एक देश नहीं है, बल्कि a beautiful blend of tradition, languages, color and history.

102.2 FM रेनबो कानपुर पर म्यूजिक शो एंजॉय कर रहे हैं आप। एंड हम बातें कर रहे हैं समर हॉलीडे, अपने बच्चों को अपने देश की अमूल्य धरोहर के दर्शन कराने की। अपने बच्चों को लोक कथाएं सुनाइए, उन्हें म्यूजियम्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस पर ले जाएं, इंट्रोड्यूस देम टू इंडियन म्यूजिक आर्ट एंड फेस्टिवल्स। दोस्तों, भारत केवल एक देश नहीं है बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत इतिहास है।

दोस्तों, हमारी विरासत केवल किले, महल और मंदिर ही नहीं है, बल्कि हमारे संस्कार, हमारी कला, हमारा साहित्य और हमारी परंपराएं भी हमारी अमूल्य धरोहर हैं। जब हम किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल को देखते हैं, किसी लोक नृत्य को महसूस करते हैं या किसी पुरानी कहानी को सुनते हैं, तो हम अपने अतीत से जुड़ते हैं और अपनी पहचान को और गहराई से समझते हैं। आज के आधुनिक युग में जहाँ दुनिया तेज़ी से बदल रही है, वहीं अपनी संस्कृति और विरासत को संभाल कर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, घूमने के दौरान अपने बच्चों से बातें ज़रूर कीजिए, उनकी पसंद जानिए, उनके सपनों को सुनिए। यकीन मानिए, कई बार सफ़र के ये पल वो बातें भी कहला देते हैं जो घर की चार दीवारी में नहीं हो पाती।

और जिक्र करते हैं एक और अमूल्य धरोहर का, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया गया। महाराष्ट्र का औरंगाबाद, जिसे अजंता एलोरा के ऐतिहासिक दुनिया का एंट्री गेट कहा जाता है, पहाड़ों को काटकर बनाई गुफाएं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। यहाँ तीन धर्मों, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी कला और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अजंता केव अपनी ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग के लिए जानी जाती है, वहीं एलोरा केव में बना कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को काटकर तैयार किया गया है। इन एडिशन टू, आप दौलताबाद फोर्ट विजिट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बीबी का मकबरा जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसे मिनी ताजमहल भी कहते हैं।

हमारी सांस्कृतिक धरोहर और अमूल्य विरासत की यात्रा से बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। म्यूजियम्स में रखी वो ढाल और तलवारें, स्टैचूज, क्राफ्ट्स लाइक स्टोन, वुड और मेटल से बनी चीज़ें बच्चों के इमेजिनेशन को डिवेलप करती हैं। म्यूजियम्स में रखी कलाकृतियों के बारे में लिखी हुई जानकारियों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूर कहें। तो इस समर हॉलीडे पर अपने बच्चों का हाथ थामिए और निकल पड़िए उन्हें अपने देश की अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर, संग्रहालय और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट से मिलवाने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार श्रोताओं, 102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप हैं लक्ष्मी के साथ। आपकी पसंद प्रोग्राम में आप सभी का मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जितना आपको आपकी पसंद का इंतज़ार रहता है, उससे कहीं ज़्यादा हमें आपकी मेल्स को प्रोग्राम में शामिल करने का। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम प्रोग्राम का आगाज़ कर देते हैं इस खूबसूरत से गाने से। गाने के बाद हम बताएंगे उनके नाम जिन्होंने इसे अपनी पसंद बनाया। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का पहला गाना।

ढेर सारी ईमेल्स हमें मिलती जा रही हैं और बहुत तेज़ी से स्क्रीन पर आ रही हैं, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये मेल जो हमें भेजी है चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने, और इन्होंने कहा है कि प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारा भी आप सभी लिसनर्स को बहुत बहुत अभिनंदन, आपका ही प्रोग्राम है और आपकी वजह से हमें इतना जोश मिलता है इस कार्यक्रम को करने के लिए। आगे मेल आई है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साहब राही महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने मेल भेजी है। इन्होंने कहा है कि अपनी किसी भी गीत को शामिल कर लीजिए, इसमें इनका नाम तो शामिल हो गया है आपका नाम। आगे हम बढ़ते हैं, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इन्होंने मेल भेजी है। और एक और मेल हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने लिखा है, ये आई है शास्त्री नगर बीड शहर से आशा सपकाल जी की। इन्होंने लिखा है कि लक्ष्मी दीदी को प्यार भरा नमस्कार। जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार हमारी तरफ से, हमें दिल से बड़ी खुशी होती है कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे मेल्स हमको भेजते हैं। और इन्होंने और भी नाम लिखे हैं, किशन सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल। इसी के साथ एक और मेल हम अपने इस गाने के पहले लेते हैं, ये हमें भेजी आफ्ताब अंसारी साहब ने शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। इन्होंने कहा है कि प्यारी बहना को प्यार भरा नमस्कार, भाईजान आपको भी आदाब हमारा। और इन्होंने लिखा है आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन दुआओं का, प्रोग्राम पेश करने का अंदाज़ बहुत ही शानदार। जी थैंक यू सो मच। एंड इन्होंने और नाम लिखे हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी जी। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला सॉन्ग।

0: गीतिका खुरवाल, भानु प्रकाश जी ने मेल हमें भेजा है। एक और मेल आई है चंडीगढ़ सिटी से, इनकी मेल शामिल हो चुकी है, लेकिन हम फिर से पढ़ देते हैं। इनका सतीश अनेजा विमला अनेजा जी ने मेल हमें लिखी है। एक मेल आई है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हजिंदर सिंह भाटिया जी, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। और एक मेल और आई है कृष्णा प्रशांत शिंदे की, कृष्णा गोडके, प्रशांत शिंदे, यशराज, सुनीता, रूषि, रोहिदास, पंडरपुर सिटी से इन्होंने हमें मेल भेजी है। और इसी के साथ एक और आई है, रिस्पेक्टेड आरजे लक्ष्मी जी, योर वॉइस इज सो स्वीट, ओ थैंक यू सो मच। इन्होंने सॉन्ग लिखा, नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे, तो शायद ये आपकी फरमाइश है। चलिए हम प्रोग्राम में इस गाने को ढूंढते हैं। फिलहाल आपने ये जो मेल भेजी है ये है सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग। तो चलिए प्रोग्राम में अगला सॉन्ग हम आपको सुनवाते हैं, बेहद खूबसूरत सा गाना, शोखियों में।
1: शोखियों में भोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

और चलिए बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में। ये मलयान सरदना मेरठ से हमें अनिल जैन जी ने मेल किया है। इन्होंने लिखा, आपने लाजवाब सॉन्ग से प्रोग्राम की स्टार्टिंग की, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू अनिल जैन जी, और हमारा भी आपकी तरफ से कि आपका परिवार और आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और ऐसे ही प्रोग्राम सुनते रहें और खुश रहें। और उसी के बाद एक और आई है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से, वसंत कुमार सिन्हा, अजय, तनुश्री गुप्ता, बेबी अनविका रानी, इन्होंने कहा है, गाने की फरमाइश की है, और सलाम आदाब कबूल करें जी आप भी। और इसी के आगे आया एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी, इन्होंने मेल हमें भेजा है। और ये धर्मेंद्र छिपा जी का मेल शो हो रहा है, जिनका मेल अभी आ चुका है, शायद इन्होंने दोबारा से लिख दिया है। और इन्होंने लिखा है कि आदरणीय मैडम लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बेहतरीन नगमे सुना रहे हैं और सभी नगमे एक से बढ़कर एक सुंदर जी। थैंक यू सो मच, हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं कार्यक्रम का। एक नज़र हम पर भी गौर फरमाइएगा, हम इंतज़ार में और कतार में ज़रूर शामिल कीजिएगा जी। हमारी दोनों नज़रें आप लोगों की मेल्स पे लगी हुई हैं और हमारा वादा है कि आपकी हर एक मेल प्रोग्राम में शामिल होगी, बस शर्त इतनी है कि आप बार बार अपनी मेल्स को रिपीट ना करें, जिससे औरों को भी मौका मिलता रहे। आगे एक और हम मेल ले रहे हैं अपने इस गाने से पहले, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, और ये है कमल कांत जी की मेल। समडील नवापारा से इन्होंने लिखा है, किसी भी सदाबहार गीत में हाजिरी लगा देना जी। पिप्रिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता जी, आप सभी मेंबर्स जितने फैमिली के हैं उनकी हाजिरी लग गई है आपकी पसंद के आपके प्रोग्राम में। और एक और लास्ट मेल हम इस गाने के पहले ले रहे हैं, खंडवा से योगेश गुजराती, आनंद जोशी, दुर्गा प्रसाद सैनी, खंडवा रोड सनावत से शाहबाज, अरबाज, फराज, फरदीन, समीर, डॉक्टर मोइन शेख। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं इन सब की मेल्स के बाद आप लोगों की पसंद का ये खूबसूरत सा गाना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो।

करने की कोशिश करें जी। कौन है ये? प्रकाश पोहरकर जी, मेन रोड तेल्हारा से इन्होंने लिखा है। इन्होंने नाम लिखे नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर। और एक और आई है मेल, तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष, लाडो कोयल, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल जुक्कू भाविक सिक्का। हाँ, तो आप सबकी मेल प्रोग्राम में शामिल हो गई हैं। और अब सुनिए ये गाना।

न्यू दिल्ली से मेल आई है कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु की, और भूषण खेरा की, फजील का पंजाब, भूषण खेरा, विशाल खेरा, विष्णु खेरा और शालिनी खेरा, तिवांशी खेरा, वानी और जीवन बुक। इसी के साथ ये मेल दत्रेंगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा जी की मेल। और इसी के साथ एक मेल और नज़र आ रही है, ये आई है पाखुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत जी की। इन्होंने लिखा, लक्ष्मी जी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भगत जी। और उन्होंने लिखा है, आज आप काफ़ी दिनों बाद आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी, थैंक यू सो मच। और इन्होंने नाम लिखे हैं उत्तम कुमार भगत, जो जिन्होंने तो मेल भेजी है, श्वेता भगत, कीसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोरा गाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। और मेरे ख्याल से ये मेल हो गई हैं। और अब सुनिए प्रोग्राम का अगला गाना।

मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, इन्होंने लिखा है कि हम लाइन में ही लगे रहेंगे, बारी हमारी नहीं आएगी, कार्यक्रम पसंद आ रहा है, प्रस्तुति लाजवाब है। देखिए आपकी बारी आ गई, हम पहले से ही कह रहे हैं आप सभी का मेल प्रोग्राम में शामिल हो रहा है, तो थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए और प्रोग्राम को इंजॉय करते रहिए। और इन्होंने और नाम लिखे हैं, मंसूरी कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। और ये है अशोक वर्मा जी की मेल। अशोक वर्मा साहब, आपसे एक बात कहना चाहेंगे, पूरी मेल में आपका ही नाम नज़र आ रहा है, इसलिए हमें लगा कि शायद आपकी मेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम आपकी मेल को पढ़ रहे हैं। ज़िला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, चना अनुज, आयुषी रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, और मेरे ख्याल से लगता है हम पढ़ चुके हैं, हम गलत नहीं हैं, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु मुकेश जगताप। और अगली मेल हमें मिली है रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र वधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार, इन्होंने भेजा है ये मेल ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने का आपको। और ये हैं अहमद फूल वाले साहब, छोटी बलिया कर्जन मुंबई से, कज्जत मुंबई से, अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदब, आरजू जूही, इकबाल इमरान अहमद, कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली न्यू दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, अशु अहमद फुलवाले और समस्त फुलवाले परिवार, नर्मदा पार्क मंगल वेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल जी ने हमें मेल भेजी है, गांव उगाला ज़िला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के सभी सदस्य, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता जी ने मेल हमें लिखी है, गंज डुंडवारा कासगंज से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन हाशमी, समशुल कमर राही जी ने मेल लिखी है, और गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, नाम थोड़ा सा गलत हो जाता है तो हमें माफ़ कर दिया करिए, बहुत सारी मेल होती हैं तो हो ही जाता है, आपके इतने खूबसूरत नाम हैं तो कभी कभी ज़बान जो इधर उधर हो जाती है, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और मोहम्मद कलीम अंसारी जी ने मेल किया है, जहीरा बेगम, अयान अंसारी, इनको भी हम पढ़ चुके हैं शायद, और एक और मेल जिन्होंने लिखा, आपकी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को सादर प्रणाम, आपको भी प्रणाम हमारा, हम लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी जी हम 8 दिन से मेल कर रहे हैं, मेल शामिल नहीं किया जाता, तो भाई आप जो है

में बैठे रहते हैं या इधर थोड़ा बहुत हो जाते होंगे तो आपका मेल मिस कर देते हैं आप, निकल जाता होगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में सभी का मेल, पूरी कोशिश होती है कि हम शामिल करें। और इन्होंने ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से इनका नाम पहले ही हम ले चुके हैं। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

दोस्तों प्रोग्राम आपकी पसंद के इस आखिरी सॉन्ग के साथ वक्त हो गया है वाइंड अप करने का। अपनी दोस्त लक्ष्मी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सभी को मेल भेजने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है FMMELMILA।
3: नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहू का दौरा किया। ये महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करती है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहुम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक एक जटिल तकनीक विकसित की है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से राज्य में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू कर दिया गया है। बिजली विभाग के इस आदेश के मुताबिक ईंधन अधिभार के कारण जून महीने से उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने हेतु हम सभी संकल्पित हैं। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। जमींदार लाला परेड ग्राउंड में आयोजित पासिंग आउट परेड में जवानों ने अनुशासन, साहस और सैन्य कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित भी किया गया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: और आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति पर विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन की मूल भावना बनाकर देश के विकास को नई दिशा दी है। सरकार की नीतियों का फोकस गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग पर रहा है और ये बात सरकार की नीतियों, कामकाज और योजनाओं में भी बखूबी दिखता है, जिसने न केवल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का खाका खींचा है बल्कि सबके साथ और सबके विकास की सोच को आगे ले जाते हुए विरासत के साथ देश को आगे बढ़ने का रास्ता भी बनाया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि 12 सालों में सरकार का लक्ष्य जन कल्याणकारी नीतियों के जरिए सबके विकास का है, परिवर्तन में सबको सहभागी बनाने का है।
3: हम 12 साल से केंद्र में हैं, देश के 21 से ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं और हम राज्य के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकारों के लिए लोक कल्याण सर्वोपरि है और ये शब्द नहीं है, हमने जी करके दिखाया है, तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास का है, हमारा मॉडल गुड गवर्नेंस का है।
2: सरकार की योजनाओं की बात करें तो जहां जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, वहीं उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों की रसोई को धुएं से मुक्त किया। आयुष्मान भारत योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, एक्सप्रेसवे, रक्षा और डिजिटल सेवाओं में तेजी से हुए विकास ने भारत को नई आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। देश के अन्नदाता किसान पर सरकार का विशेष ध्यान रहा है। खेती को उन्नत बनाने के साथ ही किसान को आर्थिक सबलता देने में किसान सम्मान निधि योजना बड़ी प्रभावी साबित हो रही है। वाराणसी के रहने वाले किसान राजेंद्र मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना के तहत उनको खेती से संबंधित चीजों को पूर्ण करने में बड़ी मदद मिल रही है।
4: हम लोगों के लिए एक वरदान है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, ये जो कराया गया है किसानों के लिए, वो हम लोगों को 6,000 रुपए साल में मिलता है और इस 6,000 रुपए से जो बीज बीज की किस्त हम लोगों को 2,000 की मिलती है, उससे हम लोगों को बीज खरीदने में आसानी होती है, हम लोगों को यूरिया खरीदने में आसानी होती है, ये मौसम के भी जो फल हैं, सब्जियां हैं, उसको उगाने में भी हम लोगों को काफी लाभदायक।
2: वाराणसी के ही रहने वाले किसान संजय सिंह भी सम्मान निधि को किसानों को उनकी खेती के अलावा अन्य जरूरत को पूरी करने में उपयोगी मानते हैं। उनका कहना है कि किसान इससे अपनी खेती किसानी से जुड़ी काफी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।
5: हम लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से उर्वरक, बीज, खाद खरीदने में हम लोगों को काफी सहूलियत हो रही है और किसान को काफी बढ़ावा मिल रहा है।
2: किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने, किसानों के सुरक्षित भविष्य पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। इसी सोच को साकार करते हुए साल 2019 में स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई, जिसके तहत 18 से 40 वर्ष आयु के छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। ग्रामीण परिवारों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने वाली इस योजना में उत्तर प्रदेश पंजीकरण के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है। हापुड़ के रहने वाले किसान गौरव त्यागी सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए इसे वृद्धावस्था में बड़ा आर्थिक सहारा मानते हैं।
6: ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चल रही है बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे टाइम की जो एज

0: के हिसाब से इसके काम आएंगे, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ उनके लिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अलग अलग वर्गों को बड़ा लाभ दिया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे उद्यमियों, स्वरोजगार करने वाले दुकानदारों, महिला उद्यमियों, युवाओं और सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायों को बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध करवा रही है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या उसका विस्तार कर सकें। साल 2015 में शुरू की गई इस योजना ने उत्तर प्रदेश में उद्यमिता और रोजगार सृजन को नई गति दी है। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 11 लाख से अधिक लोगों को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया और इस मामले में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर था। लखनऊ के रहने वाले

0: बड़ा आर्थिक सहारा मानते हैं।
1: ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चल रही है बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे टाइम की जो एज के हिसाब से इसके काम आएंगे, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ उनके लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अलग अलग वर्गों को बड़ा लाभ दिया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे उद्यमियों, स्वरोजगार करने वाले दुकानदारों, महिला उद्यमियों, युवाओं और सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायों को बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध करवा रही है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या उसका विस्तार कर सकें। साल 2015 में शुरू की गई इस योजना ने उत्तर प्रदेश में उद्यमिता और रोजगार सृजन को नई गति दी है। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 11 लाख से अधिक लोगों को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया और इस मामले में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर था। लखनऊ के रहने वाले

0: कोरोना काल में मेरा काम हो गया बंद। मैंने लोगों से सुना के मतलब लोन लोन मिल रहा है, बैंक में गया, बैंक जाकर के मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया, बिना किसी गारंटर के मेरे को 2 लाख रुपए का लोन मिल गया। अब वो काम भी चल रहा है, घर भी मतलब सही सुरक्षित, सब लोग बढ़िया है। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण जलीय जीवों के संरक्षण, उनके विकास को लेकर विशेष प्रयास किए गए हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन सरकार द्वारा साल 2020 में शुरू की गई ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी संरक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का संरक्षण करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में गंगा, घाघरा और चंबल नदियों में डॉल्फिन संरक्षण के लिए निगरानी, जन जागरूकता और नदी पारिस्थितिकी सुधार के प्रयास तेज हुए हैं। इन पहलों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इटावा के क्षेत्रीय वनाधिकारी के त्यागी ने बताया कि चंबल सेंचुरी में डॉल्फिन की संख्या अब 191 से अधिक हो गई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले काफी ज्यादा है।
2: हमारे यहाँ पे साल जो डॉल्फिन की गणना हुई है वो 191 पाई गई है। हम साल भर में 2 बार गणना करते हैं, एक जनवरी में होती है, एक फरवरी, पिछले साल के मुकाबले लगभग बराबर है। तो इसके लिए वहाँ पे हमारा स्टाफ रहता है इनकी मॉनिटरिंग के लिए।
1: किसान, युवा, श्रमिक के सामाजिक परिवर्तन की बात हो या फिर देश की आधी आबादी, महिलाओं के सशक्तिकरण की पहल, सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में जन कल्याण और विकास को नई गति दी है। सरकार की योजनाओं ने न केवल सभी वर्गों पर ध्यान देते हुए सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति और योजनाओं के सही क्रियान्वयन से विकसित भारत का मजबूत आधार भी तैयार किया है।
3: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।

0: तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: पांच बजकर 12 मिनट का वक्त और फहीम हाजिर एक बार फिर से लेकर के प्रोग्राम FM टॉप 10। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको बताते हैं 90s, 80s और 70-80 के दशक के वो गाने, कभी कभी 90s के भी गाने आपके सामने लेकर के हम आते हैं कि बताते हैं वो गाना अपने दौर में किस पायदान पर रहा है। तो इस प्रोग्राम में 10वें पायदान पर रहा है फिल्म जुड़वा का वो गाना जो अपने जमाने में तहलका मचा के रखा हुआ था। जुड़वा जिसे रिलीज किया गया था साल 1997 में और इस फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन। उन्होंने इस फिल्म में सलमान खान को डबल रोल में जो था वो लॉन्च किया और इस फिल्म में ये कॉमेडी फिल्म थी जिसमें सलमान खान को डबल रोल करने थे और सलमान खान के साथ में थी करिश्मा कपूर, रंभा, और अगर म्यूजिक की बात की जाए तो संगीतकार थे इस फिल्म के अनु मलिक, और अगर गाने की बात की जाए तो आइए आप खुद ही गाना।

0: सजी लो थोड़ा थोड़ा मस्त रेनबो।
1: जी दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा थोड़ा जी लो और थोड़ा थोड़ा मर लो। इस गाने को पिक्चराइज किया गया था करिश्मा कपूर और गोविंदा के ऊपर, सॉरी माफ कर दीजिएगा, करिश्मा कपूर और सलमान खान के ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया गया था। और ये गाना अपने जमाने में बहुत ही मशहूर हुआ था, हिट हुआ था। और इस प्रोग्राम में इस गाने का जो सिक्वेंस है वो 10वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर गाने की बात की जाए तो 9वां नंबर जो है वो है फिल्म आंदोलन से। आंदोलन जिसे 1995 में बनाया गया था, अजीज सेजवाल और निर्देशित साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित इस फिल्म में गोविंदा, संजय दत्त, ममता कुलकर्णी और सोमी अली मुख्य किरदार में नजर आए। दिव्या भारती को भी इस फिल्म में लिया गया था लेकिन उनकी अचानक मौत की वजह से उनकी जगह मिली ममता कुलकर्णी को। और इस फिल्म का ये गाना उस जमाने में काफी पसंद किया गया जो आज के इस प्रोग्राम में है नंबर 9 पर।

गाना नंबर 8 की अगर बात करें तो फिल्म दिल तेरा आशिक, ये वो फिल्म थी जो 1993 में बनी और इस फिल्म को बनाया था लॉरेंस डिसूजा साहब ने। फिल्म की कहानी लिखी थी रीमा राकेश नाथ ने और इस फिल्म में सलमान खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर जैसे कलाकार नजर आए। और फिल्म के अगर गानों की बात की जाए तो फिल्म के गाने उस जमाने में काफी पसंद किए गए,

0: ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

फिल्म शपथ। एक फिल्म थी शपथ जो रिलीज हुई थी 1997 में, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो डायरेक्टर थे राजीव बब्बर साहब, और निर्माता भी यही थे राजीव बब्बर जी। और फिल्म में जो नजर आए वो मिथुन चक्रवर्ती, गुलशन ग्रोवर, जय किशन श्रॉफ, रामनिया कृष्णा और शक्ति कपूर, रंजीत जैसे कलाकार इस फिल्म में नजर आए। और इस फिल्म का जो गाना था वो गाना आज भी लोगों की जुबान पर कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और अगर इस गाने की आज के इस प्रोग्राम में बात करें तो ये गाना है आज प्रोग्राम में पायदान नंबर 7।

मुंडा गोरा रंग देख कर दीवाना हो गया। ये वो गाने हैं जो कहीं ना कहीं आपको झूमने पर, गाने पर, नाचने पर मजबूर जरूर कर रहे होंगे। अगला गाना है फिल्म कसूर से और वो इस वक्त इस प्रोग्राम में 6 नंबर के पायदान पर है। कसूर 2001 में बनी दोस्तों हिंदी फिल्म थी जिसके निर्देशक थे विक्रम भट्ट साहब, लेखक थे महेश भट्ट और निर्माता थे मुकेश भट्ट। और फिल्म में जो हीरो नजर आए वो आफ्ताब, शिवदासानी, लीजा रे, आशुतोष राणा, इरफान खान, अपूर्व अग्निहोत्री जैसे कलाकार इस फिल्म में नजर आए। और फिल्म का जो संगीत दिया था वो नदीम और श्रवण की जोड़ी ने दी थी। फिल्म का ये गाना दोस्तों आज भी काफी सुना और पसंद किया जाता है।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: अब जो गाना आप सुनेंगे वो गाना है पायदान नंबर 5 पर और फिल्म का नाम है कुली नंबर 1। अपने जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म जिसे बनाया था जी डायरेक्टर डेविड धवन साहब ने, और इस फिल्म में भी उन्होंने गोविंदा, करिश्मा कपूर, हरीश कुमार, कंचन, कादर खान, महेश आनंद, सदाशिव अमरापुरकर, शक्ति कपूर जैसे कलाकारों को काम करने का मौका दिया, और मौका दिया संगीतकार आनंद मिलन को संगीत देने के लिए इस फिल्म में। इस फिल्म का ये गाना जो कि आजकल गर्मियों का मौसम भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल मौसम जो 2-3 दिन से काफी अच्छा है, लेकिन ये गाना कहीं ना कहीं जेठ की जो दोपहर होती है उस पर बड़ा फिट बैठता है। फिलहाल 5:37 का वक्त हो चुका है और आप सुन रहे हैं FM Top 10 आज अपने आवाज़ें दोस्त फहीम के साथ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर।

5:45 होने वाले हैं दोस्तों, और प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10। आज आपकी आवाज है दोस्त फहीम के साथ। अभी आपने सुना गाना नंबर 5 फिल्म कुली नंबर 1 से, और अब हम आपको सुनाते हैं गाना नंबर 4 फिल्म भ्रष्टाचार से। November 22, 1989 को रिलीज ये फिल्म, जिसके निर्देशक थे रमेश सीपी साहब और मनोहर श्याम जोशी, GPSCP ने कहानी लिखी, और इस फिल्म में जो एक्टर कलाकार नजर आए वो मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत, रेखा, शिल्पा शिरोडकर, अनुपम खेर, रजा मुराद, अंजना मुमताज और अभिनय चतुर्वेदी जैसे कलाकार नजर आए, और फिल्म का ये गाना अपने जमाने में काफी पसंद किया गया।

बढ़ते हैं गाना नंबर 3 पर। फिल्म है सपने साजन की, जिसे रिलीज किया गया था 1992 में। फिल्म के निर्देशक लॉरेंस डिसूजा साहब थे और फिल्म में करिश्मा कपूर

साहिल रॉय, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आए। और फिल्म की अगर म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक दिया था नदीम और श्रवण की जोड़ी ने, और इस म्यूजिक पर अपनी आवाज दी थी कुमार सानू ने।

बढ़ते हैं गाना नंबर दो की तरफ, जो है फिल्म तड़ी पार से। साल 17 दिसंबर साल 1993 को रिलीज ये फिल्म, जिसके निर्देशक थे महेश भट्ट, रॉबिन भट्ट और निर्माता मुकेश भट्ट, मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट, अनुपम खेर, अवतार गिल, गुलशन ग्रोवर और कई सारे कलाकारों के साथ। जूही चावला भी इस फिल्म में नजर आई थी और मेन लीड रोल में पूजा भट्ट नजर आई। फिल्म का ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और इस फिल्म की अगर गानों की बात की जाए तो कुमार सानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज से फिल्म को हिट कराने में काफी मदद की।

बात करते हैं गाना नंबर एक की, जो है फिल्म साथी से, जिसे रिलीज किया गया था 1991 में। फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट और इस फिल्म में आदित्य पंचोली, मोहसिन खान, वर्षा उसगांवकर जैसे कलाकार नजर आए। और फिल्म का म्यूजिक जो था वो भी नदीम श्रवण ने ही दिया था। और इस फिल्म ने अपने ज़माने में काफ़ी अच्छा बिजनेस किया और फिल्म के गाने कहीं ना कहीं आज भी लोगों की यादों में रचे और बसे हैं। फिल्म साथी एक ऐसी कामयाब फिल्म रही महेश भट्ट साहब की कि जिसको कुछ लोगों ने ज़्यादा ही पसंद किया। कल स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो चुका है 5:55। DGS प्रोग्राम से फहीम को इजाज़त, मुलाकात होगी समाचारों के बाद अगला प्रोग्राम शामियावत के साथ। तब तक ये मोहब्बत भरा साथ दोस्तों यूँ ही निभाते रहिए।

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजीसीटी में 9 करोड़ की रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में सम्पन्न होगी। इसी क्रम में अमरोहा की अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा जनपद में 6 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी। उन्होंने बताया कि सभी संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी के निर्माणाधीन पुल हादसे को लेकर राज्य सेतु निगम के महानिदेशक ने AE को सस्पेंड कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ डिपार्टमेंट जांच शुरू कराई गई है। गुरुवार देर रात हुए हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर आप सुनेंगे हमारे प्रादेशिक हिंदी समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

पर रहेगा, लेकिन 7 बजे हमारा एफएम समाचार भी आप सुनेंगे। और इस प्रोग्राम जो शामी अवध शुरू हो चुका है, इस प्रोग्राम में हम आपको लखनऊ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खबरें देंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। तो फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

6:03 का वक्त फहीम हाजिर एक बार फिर से लेकर के प्रोग्राम शाम अवध, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको देते हैं लखनऊ से रिलेटेड वो न्यूज, वो खबरें जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई होती हैं। और समाचारों के बाद जैसे मैंने बताया आपको कि ये अगला जो हमारा समाचार है वो 7:20

6:11 का टाइम और प्रोग्राम चल रहा है शामी अवध, और शामी अवध लेकर के हाजिर हूँ मैं आज आपका आवाज़ दोस्त फहीम। तो चलिए बात करते हैं पहली खबर पर, वो है खबर मौसम के बारे में। मौसम 2-3 दिन से दोस्तों ऐसा हो चुका है कि लगता ही नहीं कि गर्मी कहीं हो रही है, कहीं बारिश हो रही तो कहीं आंधी आ रही है, कहीं पानी बरस रहा है तो कहीं बिजली कड़क रही है, और ऐसा भी शायद 1 या 2 दिन और आपको गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलना स्वाभाविक है। गर्मी से आपको राहत मिलती रहेगी, लेकिन अब ये गर्मी से राहत कितने दिनों तक मिलेगी ये तो खैर मौसम विभाग ने अभी आगे नहीं बताया है, लेकिन आज और कल का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं काफी ठंडा रहने की उम्मीद है। ठंडे की बात करें तो तापमान जो है वो 30 के आसपास रहने की उम्मीद है, और इसके अलावा भी कल भी काफी बारिश हुई और कहीं कहीं आंधी भी आई तो लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि उनकी भरपाई की जाएगी। और अगली खबर दोस्तों ये है कि LT ग्रेड में जीव विज्ञान और उर्दू में जिनके एप्लीकेशंस कैंसिल कर दी गई हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPSC में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक कैटेगरी में की जो परीक्षा है वो 2025 जीव विज्ञान और उर्दू विषय में 207 कैंडिडेट्स का जो अभ्यर्थन है वो तमाम दिक्कतों के वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें जीव विज्ञान के 155 और उर्दू के 52 अभ्यर्थियों के आवेदन शामिल हैं। तो जिनके आवेदन कैंसिल किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी 3 जून शाम 5 बजे तक आयोग के समक्ष अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं, और जीव विज्ञान में कुल 155 आवेदन निरस्त किए गए हैं। तो ये खबर, ये सूचना कहीं ना कहीं अगर आपसे जुड़ी है तो देर मत कीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यालय से संपर्क कीजिए।

0: ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

तो चलिए अब आपको बताते हैं बिजली से रिलेटेड खबर, और वो खबर ये है कि अब कंज्यूमर खुद चुन सकेंगे पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर। बिजली उपभोक्ताओं को अब अपने कनेक्शन पर पोस्टपेड या प्रीपेड स्मार्ट मीटर चुनने का राइट होगा, अधिकार होगा। यूपी विद्युत नियामक आयोग ने इस संबंध में एक बहुत ही खास फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि किसी भी कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। और आयोग इससे आदेश का जो है आयोग का, उसमें स्मार्ट मीटरों को लेकर चल रहे विवाद पर विराम लग सकता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना मीटर प्रीपेड रखना चाहते हैं या पोस्टपेड रखना चाहते हैं। ये अब जो मौका है वो आपके हाथ में है। 6:18 का वक्त, फिलहाल आप सुन रहे प्रोग्राम शाम अवध, आज फहीम के साथ।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की 100.7 एफएम रेनबो और इस धड़कन पर आज आपके साथ जुड़ा हुआ है प्रोग्राम शामे अवध के जरिए आपका आवाज़ दोस्त फहीम। तो जल्दी से बता दूं आपको कि केदारनाथ में अगर आप दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से दर्शन हो जाएं भोलेनाथ के, तो इसके लिए आपको वीआईपी दर्शन के लिए देने होंगे 1100 रुपए। श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर एक नई जो करेक्शन एसओपी जारी की है, उसके मुताबिक अब वीआईपी दर्शन करने वालों को 1100 रुपए की पर्ची मंदिर समिति काटेगी और श्रद्धालुओं की जो बढ़ती संख्या है और लोकल लेवल पर जो वहां पे उनको सुझाव मिले हैं, इसी के आधार पर मंदिर समिति ने यह फैसला किया है ताकि दर्शन पर कम प्रभाव पड़े और दर्शन सुगम और समयबद्ध हो सके। तो अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको 1100 रुपए की रसीद कटवानी ही पड़ेगी।

और चलिए बात अब लिखाई पढ़ाई की थोड़ी सी हो जाए। कल यानी कि संडे को बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें लखनऊ में 17,881 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन 31 मई को पूरे यूपी में किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी को दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय को 5 जिलों समेत लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में इस प्रवेश परीक्षा के लिए

नोडल विश्वविद्यालय दोस्तों नामित किया गया है। इन जिलों में कुल 68 केंद्रों पर 30,286 परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। परीक्षा का समय सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। तो कल अगर आप इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए और अपना पेपर जो है वो अच्छे से दीजिए। ये बीएड प्रवेश परीक्षा में अगर पास हो जाते हैं तो आपको बीएड करने का मौका मिलेगा, तो इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। फिलहाल एक मुलाकात सॉन्ग आपके लिए।

बात की जाए नेशनल पीजी कॉलेज में, तो इसमें ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा 7, 8, और 9 जुलाई को है। तो कॉलेज ने फाइनल की डेट दे दी है, 31 मई तक है आवेदन करने का मौका। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सेशन 2026-27 में ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की जो डेट है उसको फाइनल कर दी है, और ये एग्जाम्स जो हैं अब 7, 8, और 9 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। तो अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं या लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये डेट इसका ध्यान रखिए, और निर्धारित जो डेट है इस पर आप पहुंचिए और एग्जाम दीजिए और ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए।

टाइम हो चुका है 6:36 और प्रोग्राम चल रहा है शामी अवध, और शामी अवध के साथ मैं हूँ आज आपके साथ आपका आवाज़ दोस्त फहीम। और इस वक्त फहीम आपको लेकर के चलता है चारबाग रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ट्रेनों की क्या है ताजा स्थिति मैं आपको जल्दी से बता दूं। ट्रेन नंबर 14216 यानी 14216 लखनऊ से चलकर प्रयागराज संगम को जाने वाली ये ट्रेन 16 मिनट की देरी से जा चुकी है। ट्रेन नंबर 15910 लालगढ़ से चलकर डिब्रूगढ़ जाने वाली अवध आसाम एक्सप्रेस 1 घंटा 4 मिनट की देरी से चल रही है। ट्रेन नंबर 13066 आनंद विहार टर्मिनल से हावड़ा जंक्शन को जाने वाली ये ट्रेन 2 घंटा 38 मिनट की देरी से चल रही है। 15743 बालूरघाट जंक्शन से चलकर भटिंडा जंक्शन को जाने वाली ये ट्रेन 6:45 और अपने सही समय पर चल रही है। 09094 यानी 09094 अयोध्या कैंट से चलकर उधना जंक्शन को जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन 39 मिनट की देरी से आने की संभावना है। 20504 नई दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस 32 मिनट की देरी से चल रही है। 14124 कानपुर सेंट्रल से प्रतापगढ़ इंटरसिटी 18 मिनट की देरी से चल रही है। 13041 हावड़ा जंक्शन से चलकर जम्मू तवी को जाने वाली हिमगिरी एक्सप्रेस 7:20 अपने निर्धारित समय पर चल रही है। 14209 प्रयागराज संगम से लखनऊ चारबाग आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस 7:35 और अपने सही समय से चल रही है। ट्रेन नंबर 14205 अयोध्या कैंट

से चलकर दिल्ली जंक्शन को जाने वाली यह ट्रेन 7:40 ऑन टाइम चल रही है। 12204 सहरसा गरीब रथ अमृतसर से चलकर सहरसा जंक्शन को जाने वाली ये ट्रेन 1:22 की देरी से चल रही है। 12326 नांगल डैम कोलकाता गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8:05 सही समय से चल रही है। 15127 बनारस से चलकर काशी नई दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 8:10 अपने निर्धारित समय से सही चल रही है। 01415 पुणे जंक्शन से चलकर गोरखपुर जाने वाली ये ट्रेन 10:16 की देरी से चल रही है और रात्रि के 8:16 पर लखनऊ

15127 बनारस से चलकर काशी नई दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 8:10 अपने निर्धारित समय से सही चल रही है। 0:14:15 पुणे जंक्शन से चलकर गोरखपुर जाने वाली ये ट्रेन 10:16 की देरी से चल रही है और रात्रि के 8:16 पर लखनऊ में आने की संभावना है। 09:45 अहमदाबाद जंक्शन से दरभंगा जंक्शन को जाने वाली ये ट्रेन 2:06 की देरी से चल रही है। 13009 दून एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन से योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन 8:25 अपने सही समय से चल रही है। 11123 ग्वालियर जंक्शन से बरौनी जंक्शन को जाने वाली ये ट्रेन 8:35 सही समय से चल रही है। 0:42:25 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से वाराणसी जंक्शन को जाने वाली ये ट्रेन 8:50 अपने सही समय से चल रही है। 15128 नई दिल्ली से बनारस जाने वाली ये ट्रेन 4 की देरी से चल रही है और 9:09 पर लखनऊ आने की संभावना है। ट्रेन नंबर 12392 रात 9 दिल्ली से चलकर राजगीर जाने वाली श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 9:20 पर लखनऊ चारबाग आने की संभावना है।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: छह बजकर 45 मिनट का वक्त हो चुका है और प्रोग्राम चल रहा है शामी आवाज़। आज आपके आवाज़ी दोस्त फहीम के साथ, और अब बात करते हैं जी अर्जेंटीना की कमान फिर मेसी को मिल चुकी है, यानी फुटबॉल मैच की अगर बात की जाए तो 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में शुरू होने जा रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए 2022 की जो विश्व चैंपियन अर्जेंटीना की टीम थी वो विजय घोषित कर दी गई है। इस टीम की कमान एक बार फिर स्टार खिलाड़ी लियोन मेसी को दी गई है। वहीं अगर बात की जाए आईपीएल की तो पंत ने कप्तानी छोड़ दी है और हार्दिक के भी हटने के संकेत मिले हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या को टीम में अभी मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन पंत ने कप्तानी को छोड़ दिया है।

और अब एक खास खबर ये है कि देश में जल्द ही दिख सकते हैं आपको प्लास्टिक के नोट। जी हाँ, आने वाले वक्त में कागज के नोट बिल्कुल ही चलन से बाहर हो जाएंगे और आपको आपके हाथों में होंगे प्लास्टिक के नोट। जी हाँ, पॉलीमर बैंक नोट एक पतली और लचीली प्लास्टिक पर प्रिंट किए जाते हैं। प्लास्टिक नोट की जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता दूं, ये क्रेडिट या डेबिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते हैं, हल्के होते हैं और इन्हें मोड़ा जा सकता है और इसका इस्तेमाल जो है कागजी मुद्रा की तरह ही किया जा सकता है। ये नोट काफी मजबूत होते हैं और इस पर गंदगी या नमी का असर नहीं होता है। तो आने वाले वक्त में भारत में इंडिया में अपने बहुत ही जल्द प्लास्टिक के नोट मिलने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सालों पुराने विचार को आगे बढ़ाने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में आपके हाथों में कागज के नोट नहीं बल्कि प्लास्टिक के नोट होंगे।

टाइम हो चुका है 5:52। दीजिए प्रोग्राम शाम अवल से फहीम को इजाजत। मुलाकात होगी समाचारों के बाद अगला हर दिल अजीज प्रोग्राम हेलो एफएम के साथ 0522 2238 845 और 0522 2982 377। ये नंबर याद कर लीजिए, इन्हीं नंबर पर से आप कॉल लगाइएगा और आप हमसे बात करिएगा और हम आपको सुनाएंगे आपके पसंद का सॉन्ग। फिलहाल इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी हेलो एफएम के साथ।

नमस्कार, शाम के 7 बजे और अब सुनिए टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ की रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। आज लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। ये महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करती है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की होगी। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से राज्य में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू कर दिया गया है। जून महीने में उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी के निर्माणाधीन पुल हादसे को लेकर राज्य सेतु निगम के महानिदेशक ने एई को सस्पेंड कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ डिपार्टमेंट जांच शुरू कराई गई है। गुरुवार देर रात हुए हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:20 पर आप हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनेंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस।

0: रिक्वायरमेंट्स और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: और देखिए तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, एफएम रेनबो आपका है और आप एफएम रेनबो के हैं, और इस वक्त हमारे साथ कोई कॉलर जुड़ा हुआ है, उनसे करते हैं बात। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं?
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बताइए सर, आप कैसे हैं?
0: जी हम खैरियत से हैं, आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहते हैं।
1: सर आपकी आवाज साफ नहीं मिल रही है।
0: जी अब आवाज मिल रही साफ?
1: आपकी आवाज साफ नहीं, भर भरा रही है आपकी।
0: अच्छा, आप कैसी आवाज आ रही है?
1: तो हेलो सर
0: जी, बोलिए।
1: आप इतने दिनों के बाद क्यों आते हैं, जल्दी आया करो। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और आप सॉन्ग चलाते हैं।
0: चलिए अच्छी बात है, अब आपका देखिए आपने कहा है, अब हम जल्दी जल्दी आया करेंगे और अच्छे अच्छे गाने लेकर के आया करेंगे। तो ये बताइए गाना कौन सा सुन?
1: सर हम आपको 4 बजे से सुन रहे हैं।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: गाना सुनेंगे सिर्फ तुम मूवी का, दिलबर दिलबर।
0: और ये गाना किसको सुनाना चाहेंगी?
1: सबसे पहले आपको।
0: जी शुक्रिया।
1: फिर बाबू अंसारी भाई हैं, अकबर अंसारी भाई हैं, सिराजुद्दीन भाई हैं, और मोहम्मद सद्दाम भाई हैं, मोहम्मद फैज भाई हैं, मोहम्मद अमीन भाई, जावेद अख्तर भाई हैं, मोहम्मद आसिफ भाई, और वकील अहमद मंसूरी भाई हैं, सत्यम कुमार भाई, विनीत कुमार भाई हैं, और गुलाब साहब की साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, महक अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम, और जितने सुन रहे हैं उन सभी को, और मिंटू तिवारी अंकल को।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: शमा अंसारी जी से मिलने के बाद में देखिए किसका चैन किसका सुकून खोया हुआ है, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर, गुड इवनिंग।
0: जी नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: ठीक हैं, बढ़िया है सर।
0: जी तो सबसे पहले सभी सुनने वालों को अपना परिचय बताइए।
1: ये विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर, कोस्ट रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर।
0: जी रामगढ़ जिला सीतापुर से आप बोल रहे हैं और एफएम रेनबो को सुन रहे हैं।
1: जी हम आप पांच वाला प्रोग्राम जो 5 से 6 बजे बीच में गाने सुपर हिट बजाए आपने।
0: चलिए शुक्रिया, ये सारा प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए होता है। जो भी हमारी टेक्निकल टीम है इतनी मेहनत करती है, जितने भी हमारे सारे आरजे हैं मेहनत करते हैं, वो जब आपकी लोगों को अच्छा लगता है तो मेहनत हमारी सफल होती है। तो ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: नैनी राम की तरफ थे तो सुन रहे थे प्रोग्राम आप।
0: अच्छा तो ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे विनीत जी?
1: गाने के बोल हैं, वो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी।
0: तो ये गाना किसको सुनाना चाहेंगे?
1: ये सबसे पहले आप सर हैं,
0: शुक्रिया,
1: और सुमा परवीन अंसारी सीतापुर से
0: जी,
1: और ओमकार सीतापुर से, सीमा रावत राजा जी पुरम लखनऊ से हैं, सुरभि सीतापुर से हैं, नवनीत हरकेश लखनऊ से हैं
0: जी,
1: संतोष कुमार मौर्य हैं हरदोई से, ममता हरदोई से
0: जी,
1: सुलक्ता सिद्दीकी है संडीला से, और हमारे बउआ महाराज हैं बेलरा से।
0: चलिए सभी की आपने सभी के नाम लिए, आपकी पसंद का गाना सभी को हम सुनाते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में टाइम हो चुका है 7:15 और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम। तो देखते हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे कौन जुड़ा हुआ है। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताइए।
2: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
1: तो उज्जैन से आप हमें सुन रहे हैं भी?
2: जी सर, आवाज साफ नहीं आ रही थोड़ी।
1: आप थोड़ा सा हवा आपके पास करीब में कुछ हवा कुछ ज्यादा ही आपसे गुजर रही है, तो थोड़ा सा कहीं हवा से बचें।
2: हेलो
1: जी, अब आवाज आई साफ आपके पास?
2: जी सर, फिल्म का नाम है बादल
1: जी
2: और गाने के बोले जुगनी जुगनी।
1: चलिए ठीक है, हम आपको सुनाते हैं आपके पसंद का वो गाना जो आप सुनना चाहते हैं और लोगों को सुनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।

टाइम हो चुका है 7:16। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 7:30 पर प्रोग्राम हेलो एफएम के साथ।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, यह सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित यह परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में

0: 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। यह उद्यम लिथियम आयन बैटरी, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करता है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना है कि उनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक एक जटिल तकनीक विकसित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 आयोजित होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में सम्पन्न होगी। इसी क्रम में अमरोहा की अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा जनपद में 6 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी।
2: जिले में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग सभी सेंटर्स तय हो चुके हैं। उस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा के पेपर्स के संबंध में सभी चीजें लगभग तैयार कर ली गई हैं। जिले में जितने भी सेंटर्स हैं, बच्चों को वहां पे पर्याप्त सुविधा भी मिलता है। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ब्लॉक रूम की भी व्यवस्था कर ली गई है।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय किया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
3: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में को ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
0: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
4: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और

0: संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उदंत मारतंड से शुरू हुआ सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
1: प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा, कहा लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: टाइम हो चुका है 7:31 और फहीम हाजिर एक बार फिर से लेकर के प्रोग्राम हेलो एफएम। और इस वक्त हेलो एफएम में एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ये करते हैं उनसे बात। हेलो।
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
4: जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
3: जी हम लोग भी अच्छे हैं और सब बढ़िया है, सब ठीक है।
4: आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद।
3: जी आपको भी मुबारक और जितने लोग सुन रहे हैं
4: उन सभी को
3: ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। तो ये बताइए कि आप संडीला से बोल रही हैं?
4: जी सर, हम गुलाबपुर से देखी संडीला से बोल रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम अपने गांव में हैं।
3: गांव का नाम क्या है आपके?
4: मौलवी खेड़ा।
3: मौलवी खेड़ा?
4: जी सर।
3: जी मौलवी खेड़ा, समत खेड़ा।
4: जी जी सर, आप तो सब जानते हैं।
3: और रसूलपुर, हरदल में वो है ना, बहुत सारे गांव वहाँ पे हैं। क्योंकि जब आप लोग हमें फोन करते हैं तो आप लोगों की लोकेशन हम लोगों के पास आ जाती है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो वो पूरी हमारे पास लोकेशन आ जाती है। जी तो संडीला का इस वक्त मौसम तो काफी ठंडा हो चुका है, बारिश हो रही है।
4: संडीला का तो मौसम नहीं बता सकते, लेकिन मौलवी खेड़ा का बता सकते हैं। बादल है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी।
3: नहीं इस वक्त का हमारे यूपी में कई जगह पर बहुत से लिसनर ने हमें ईमेल भेजा है, जिसमें रामराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भान, शंकर भैया, पप्पू, मनीष धीरज, मधु बजरंगी,
4: ये बादल, ये हवाएं सब कहीं हैं।
3: हाँ सभी कहीं हैं। मौसम के बारे में जानकारी लोग हमें दे रहे हैं तो मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। तो
4: 4 बजे वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, गर्दा ही उड़ा दिया, जो पति खुशी थी वो हवाएं ले गए।
3: चलिए आप लोग जो ये वर्ड यूज कर देना, गर्दा उड़ा दिया, तो बड़ा अजीबोगरीब लगता है। चलिए ये हमारी सारी टेक्निकल टीम जो है ना, हम लोगों के पीछे जो टेक्निकल टीम होती है सब उनका सहयोग होता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे
4: आपको जैसे ही सुना हमने सोचा फहीम सर से बात तो हमें करनी है।
3: जी और आपसे पहले तालिब अंसारी जी का भी फोन लगा था, पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया, उनका भी गाना भी हम प्ले करेंगे। तो ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
4: मेरे साथ यही होता है, किसी का कटता है तो मेरा लग जाता है।
3: तो ये बताइए कि आपका फोन, तालिब अंसारी का फोन कट करके आपका फोन लगा है, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
4: जी मैं अनाड़ी तो खिलाड़ी का पास वो आने लगे जरा जरा।
3: और गाना किसको सुनाना चाहेंगी? जी
4: हेलो सर, नाम ले ले।
3: बिल्कुल लीजिए नाम।
4: सबसे पहले आपको
3: शुक्रिया।
4: तमा परवीन है, साहिब अंसारी है, साजिया अंसारी है, महक अंसारी है, निशा अंसारी, ममता गौतम है, रोशनी रावत है और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को।
3: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुलाबसा अंसारी जी, गुलाबसा सिद्दीकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।

और इस गाने के बाद आप सुनेंगे मोहम्मद अली अंसारी का वो गाना जो वो सुनना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। इस गाने के जस्ट बाद हम उनका गाना प्ले करेंगे और उसके बाद हम शामिल करेंगे आपके फोन कॉल्स।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कोई कॉलर मौजूद है, उनसे तो फिलहाल हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने फोन नहीं लगाया है तो आपको नंबर बता दें 0522 2238 845 और 0522 2982 377। ये हमारे दो फोन नंबर है जिस पर हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। और फोन कॉल्स के अलावा हमारे पास जिन लोगों के फोन नहीं लग पा रहे हैं वो धड़ाधड़ ईमेल हमारे पास भेज रहे हैं। निधि चौरसिया जी का भी ईमेल आया है, लिख रहे हैं कि प्लीज सर मेरा भी कॉल रिसीव कर लीजिए, आई एम शालिनी चौरसिया फ्रॉम लखनऊ। इसके अलावा भैया मोनू सेठ साहब भी, इनका भी मेल आ चुका है, लिखते हैं फहीम भैया जी को नमस्ते, कैसे हैं आप, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आप आए खुशी हुई, लेकिन इतनी लंबी तन्हाई मार जाती है इसलिए जल्दी जल्दी आने की कृपा कीजिएगा। तो मोनू सेठ साहब आप हम जरूर बहुत ही जल्दी जल्दी आने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को अच्छे अच्छे गाने सुनाते रहेंगे। राम राज जी का भी हमारे पास ईमेल आ चुका है, वो भी बहुत प्यार भरा नमस्कार भेज रहे हैं, तो आप सभी को नमस्कार। कृष्णकांत जी का भी हमारे पास ईमेल आ चुका है, कैसरगंज बहराइच से लिखते हैं बहुत दिन बाद आज आपको प्रोग्राम में सुनकर अच्छा लग रहा है, बारिश से मौसम भी खुशगवार हो गया है, ठंडी हल्की ठंडी हवा शाम को और ज्यादा रोचक बना दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णकांत सिंह साहब इस प्यार भरे ईमेल के लिए। जितेंद्र नामदेव, इनका भी ईमेल हमारे पास आया हुआ है और इनको भी काफी प्रोग्राम अच्छा लगा, गाने अच्छे लग रहे हैं और इस वक्त

0: हमारे साथ फोन लाइन पे को मौजूद है, उनसे करते बात। हेलो हेलो
1: जैसी साथ में होगी, जैसी साथ में होगी जवानी छोड़ जाऊंगा, जैसी साथ में होगी जवानी छोड़ जाऊंगा, मैं अपने वक्त की जिंदा कहानी छोड़ जाऊंगा, रहेगा सत्य हो तो पर हमेशा तस्करा जहर, रहेगा सत्य होतों पर हमेशा तस्करा जहर, कलम से निकली कुछ ऐसी निशानी छोड़ जाऊंगा, कलम से निकली कुछ ऐसी निशानी छोड़ जाऊंगा।
0: जी कौन सा बोल रहे हैं?
1: जी मैं जावेद अख्तर रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से फहीम भाई आपसे मुखातिब हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: जावेद अख्तर साहब, और बड़े शायराना अंदाज से आपने बात को शुरू किया है।

0: निशानी छोड़ रहा
1: जी कौन सा बोल रहे हैं?
0: हूँ जी। मैं जावेद अख्तर, रेशमी नगरी मुबारकपुर, आजमगढ़ से फहीम भाई आपसे मुखातिब हूँ
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: जावेद अख्तर साहब, और बड़े ही शायाना अंदाज से आपने बात को शुरू किया है, तो काफी हमें भी अच्छा लगा। तो जो कुछ आपके पास है वो आप हमको दे के जाइएगा फिर, यानी आपका जो शेर है जिसमें आपने कहा है कि मैं सब कुछ आपको देकर जाऊंगा, तो जो भी आपके पास है मुझे दे करके जाइएगा।
0: बिल्कुल
1: तो ये बताइए गाना कौन
0: बिल्कुल
1: सा सुनना चाहेंगे?
0: देखिए गाना, फिल्म का नाम है बाजीगर। छुपाना
1: जी
0: भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता,
1: हमें
0: मुझे
1: तुमसे
0: तुमसे
1: मोहब्बत है, बताना भी
0: मोहब्बत
1: नहीं आता। तो ये गाना
0: है
1: किसको सुनाना चाहेंगे आप?
0: जी। मोहम्मद फैज साहब हैं, रामपुर छपरा से हैं।
1: जी
0: शमा परवीन अंसारी जी हैं,
1: जी
0: साहिबा अंसारी जी हैं,
1: जी
0: रिंकी पिंकी जी हैं,
1: जी
0: राजेश कुमार वर्मा जिला से हैं,
1: जी
0: और इरशाद अहमद आजमी साहब हैं, आजमगढ़ से हैं, और
1: चलिए
0: राजेंद्र यादव भारती भी, वो भी मऊ से हैं।
1: चलिए सभी को, सभी सुनने वालों को मुबारक अली जावेद अख्तर साहब की तरफ से ये गाना।

0: 7:43 का वक्त और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम, आज फहीम के साथ। और फहीम के साथ बहुत सारे ईमेल, बहुत सारे फोन, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। अमीर अहमद ग्राम बढ़िया गोसाईगंज लखनऊ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैज मोहम्मद फैज का भी फोन हमारे पास आया लेकिन पता नहीं क्यों कट गया। तो बहुत सारे फोन हमारे पास आ रहे हैं और इस वक्त एक फोन कॉल हमारे पास आया हुआ है और आइए करते हैं उनसे बात। वो हालांकि डेली लिसनर हमारे हैं। हेलो जी, नाम बताइए।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: सर रिमी सिंह की बात कर रहे हैं, एफएम रेनबो पे हर वक्त धड़कने वाली आपकी अपनी जानी पहचानी श्रोता जगदीश को शिवगढ़ दीवानों के रायबरेली।
0: चलिए रायबरेली से बोल रही हैं आप, तो रायबरेली का मौसम कैसा है?
1: सर रायबरेली का मौसम एकदम झकता हुआ है सर, आपके आने से और भी अच्छा हो गया। आप बताओ आप कैसे हो सर, आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
0: जी हमारे यहाँ का तो मौसम बहुत ही अच्छा है, मौसम गुलाबी है। और
1: जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर जब फेवरेट अनाउंसर आते हैं ना तो कार्यक्रम और

0: मतलब मौसम भी बहुत
1: जी। तो ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
0: सर, दिलवाले से सुना दीजिए, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे।
1: किसको बताएंगी आप?
0: सर वैसे तो हम किसी से बताना पसंद नहीं करते, लेकिन अपने श्रोताओं को अपने गीत में शामिल करना चाहेंगे।
1: अच्छा, चलिए ठीक है, आपकी पसंद का गाना हम आप तक भेज रहे हैं रिंकी पिंकी जी।
0: जी सर, और सभी सुनने वालों को ये गाना डेडिकेट करते हैं, साथ में हमारे भाई दिलीप राज और नीरज राजमाही।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए रिंकी पिंकी जी।

0: और देखिए मौका मिल चुका है किसी इंसान को, और वो इंसान कौन है आइए करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए। गया प्रसाद जी, कहाँ से
1: जी? सिधौली
0: जी, सिधौली सीतापुर से बोल रहे हैं और प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं
1: जी।
0: और करते क्या हैं आप?
1: जी सर, खेती किसानी करते हैं।
0: खेती किसानी करते हैं, तो चलिए बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, आई मिलन केला
0: और ये गाना किसको सुनाना चाहेंगे?
1: जी सर, आप
0: हमको सुनाना चाहेंगे?
1: जी सर,
0: हमको आप दौड़ाएंगे सिधौली तक? चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का वो गाना जो आप सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जी 7:50 का वक्त, अब 10 मिनट का वक्त शेष रह गया है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, ये करते हैं उनसे बात। हेलो।
3: हेलो
2: जी, अपना नाम बताइए।
3: हम मिंटू तिवारी, ग्राम जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं।
2: फतेहपुर से बोल रहे हैं तो फतेहपुर का मौसम कैसा है पिंटू तिवारी जी?
3: कल कल रात में बारिश हुई थी, आज मौसम सारा दिन धूप थी।
2: अच्छा, तो धूप थी और धूप का मजा आपने लिया है इसके मतलब।
3: जी
2: जी, तो क्या करते हैं आप पिंटू तिवारी जी?
3: आवाज आपकी आ नहीं रही सर।
2: जी अब आई?
3: हाँ अब आई है।
2: तो ये बताइए क्या करते हैं?
3: बस एक खेती किसानी के काम करते हैं, आप सुनते रहते हैं।
2: अच्छा अच्छा, तो ये बताइए आज कौन सा गाना सुना दें आपको?
3: कुरुक्षेत्र का सुना
2: जी। बिल्कुल, गाना आप नाम ले लीजिए।
3: पहले तो आप बताएं, आपके एफएम की टीम, राजेश कुमार हो गए, प्रभाकर तिवारी जी और राजेश, राहुल भाई हो गए और लोग सुन रहे हैं, सभी के लिए गाना।
2: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए पिंटू तिवारी जी।

0: और प्यार के साथ हमारे पास किसी का टेलीफोन आ गया है, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं?
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: सर सनीला नाम है मेरा।
0: सनीला जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: सर कस्बा सेवता जिला सीतापुर से।
0: कस्बा सेवता जिला सीतापुर से आप हमसे जुड़ी हुई हैं फोन लाइन के जरिए। तो सनीला जी, क्या करती हैं आप?
1: सर मैं इस साल इंटर पास हो चुकी हूँ।
0: अच्छा
1: जी सर,
0: और आगे क्या करने का इरादा है?
1: सर अभी सोचा नहीं है।
0: अभी सोचा नहीं है तो कुछ सोचिएगा। और
1: नहीं सर, पैसों की प्रॉब्लम इसीलिए नहीं सोचा, अगले साल लिखाएंगे नाम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके पढ़ाई के अलावा भी कुछ सिलाई कढ़ाई का काम कुछ कर लेती हैं आप?
1: सर अभी तो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि अभी छोटी है ना।
0: अच्छी बात है, चलिए ठीक है। तो इतनी दूर से आपने हमें फोन लगाया है और आज के इस प्रोग्राम के आप आखिरी कॉलर हैं, तो ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: सर आप लौट चले मूवी का टाइटल ट्रैक है जी।
0: चलिए आपकी पसंद जी।
1: सर आपसे हमारी फर्स्ट टाइम बात हो रही है।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप।
1: नाम ले लें
0: जी? बिल्कुल नाम ले लीजिए
1: जी। मेरी फ्रेंड है प्रीति मिश्रा
0: जी,
1: जानती श्रीवास्तव, काजल अवस्थी और मेरी छोटी बहन अनिला
0: जी।
1: और सर आपको डेडिकेट है।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और
1: अल्लाह
0: हाफिज। इसी के साथ इस प्रोग्राम से फहीम को दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त हो चुका है 7:55। ऋचा श्रीवास्तव बिल्कुल तैयार हैं अगले प्रोग्राम के साथ। फहीम की मुलाकात होगी फिर कभी और किसी प्रोग्राम के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।

0: नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से राज्य में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू कर दिया गया है। जून महीने में उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। सुल्तानपुर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित अनुदानों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने NHM के लेखाकार को सोमवार तक सभी लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मातृ स्वास्थ्य, कुपोषण, टीबी उन्मूलन, आयुष्मान भारत, नियमित टीकाकरण समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने से भी आशंका जताई गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
3: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सिर्फ जिंदगी है, सिर्फ कपड़े बदलती है।
2: जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है।
1: अल्लाह की कायनात में जो राज़हाय सर्वस्ता हैं, छुपे हुए ख्यालात।
2: बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है, सुनेगा। बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है।
1: मेरे दुख सिर्फ मेरे नहीं है, वस्तुओं के सुख इसमें शामिल है।
3: तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो।
1: सारी पर्दे उठाती है और हर ख्याल के सबको ख्याल पैदा करती है।

0: मुझे लगता है कि जिस शेर
1: यकीन मानिए जब जब ये अशआर आपके कानों में पड़ते हैं तो आपको हर बार हर लफ्ज में उनकी याद ताज़ा होती है। अगर उन्होंने कहा कि तुझे हर लफ्ज में उतार लूं तो यकीनन शीशे की तरह आईने के में सबको उतारा उन्होंने। वो नाम जो बेशक आज हमसे दूर हो गए हैं लेकिन याद रखें कि कभी ऐसी शख्सियतें कहीं नहीं जाती। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। न जाने कितनी बार इस अशआर को हमने आपने कहा सुना पढ़ा है लेकिन आज शायद ये कहना सुनना पढ़ना लाजमी है। बेशक आपसे आबशार के जरिए हम रोज जुड़ते हैं लेकिन आज का आबशार महज आबशार नहीं बल्कि उनकी याद और उनकी लिखी मखमली और दिलों को छू लेने वाली गजलों का आबशार है जिन्होंने अपनी शायरी और गजलों से उर्दू अदब के साथ साथ अपने सुनने वालों के दिलों को भी रोशन रखा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे उर्दू अदब और साहित्यकार के मशहूर शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब की। मशहूर शायर बशीर बद्र साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, अपनी यादों का उजाला छोड़कर इस जहाने फानी को अलविदा कह गए हैं, लेकिन आप और हम भी जानते हैं कि ऐसी शख्सियतें कहीं नहीं जाती। तो आज का आबशार हम नाम करेंगे उनके जिन्हें हमने अभी दो दिन पहले खो दिया, लेकिन जब जब बात आएगी उर्दू अदब की तो हाँ वो यही हैं, हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। नमस्कार, आदाब। 100.7 FM रेंडो पर आप सभी के साथ मैं आपकी दोस्त आपकी मेजबान ऋचा आज का आबशार श्रद्धांजलि के तौर पर उन्हें समर्पित करते हुए।

वैसे सच है ये बात कि दिन भर में हम आप न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, बावजूद इसके कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जो हमारे घर में दिल में घर कर जाती हैं। उनसे मिलने के बाद भी आपको ये लगता है कि नहीं, शायद अभी मुलाकात अधूरी है, या फिर मिलने की आरज़ुएं वैसे ही तारी रहती हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब बात बशीर बद साहब की होती है तो हर बार ये कहना पड़ता है कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मशहूर शायर, गीतकार और साहित्यकार, जिनकी शायरी ने मोहब्बत, इंसानियत और ज़िंदगी के जज्बातों को शब्दों का अमली जामा पहनाया, उसे अमर कर दिया। मोहब्बत का शायर जिसने ज़िंदगी भर तितली, शहद, इंद्रधनुष, बादल, बिजली और रोशनी के अशआर पढ़े और उन्हें गज़लों में पिरोया, गोया कंदीलों वाली पतंगे नफ़रतों के आसमान पर राज कर रही हूँ। कहते हैं कि उनकी भाषा में वो रवानगी मिलती रही जो बड़े बड़े शायरों में नहीं मिलती थी। शायद यही वजह रही कि उन्होंने अपनी गजलों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए बेहद गंभीर भाषा का इस्तेमाल न करते हुए, उर्दू या फिर फारसी के शब्दों से बचते हुए उसे अपनी गजल का हिस्सा बनाया। इसीलिए शायद जब उन्होंने ये लिखा तो सुनने वाला, पढ़ने वाला हर कोई उनका दीवाना हो गया। जब उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो ये बात सीधा दिलों में घर कर गई, और इसकी बड़ी वजह यही रही कि हाँ, उन्होंने अपनी भाषा को, जो उर्दू अशआर थे, उसको फारसी या फिर बड़े बड़े शब्दों के साथ ना लेकर सहज, साधारण, आम भाषा में लिखकर आम जनमानस तक पहुंचाया। 8:13 का वक्त हुआ है। आज का आबशार हम और आप दोनों सुन रहे हैं, श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित कर रही हूँ बशीर बद्र साहब को। ये भी ब्लॉक।

यकीन मानिए बशीर भद्र साहब ऐसी शख्सियत थे जिनसे मोहब्बत होना लाजमी है। जब जब उनकी गजलों को आप पढ़ते हैं सुनते हैं तो वो आपको हमेशा अपनी तरफ खींचती हुई सी मालूम होती हैं। बशीर भद्र साहब सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि एक नजरिया, एक विचार थे, एक ऐसा विचार जो मोहब्बत और अमन के ख्यालों से आगे बढ़ता रहा। अगर हम उनकी जिंदगी की बात करें तो वो भी किसी इत्तेफाकों से भरी रही, हमेशा से कम नहीं रही। ऐसे कई सारे इत्तेफाक रहे, फिर चाहे उनके शुरुआती दौर की बात करें जब वो कॉलेज में थे, या फिर मुशायरों का वो दौर जहां उनकी मखमली अंदाज में कही गई शायरियों ने तमाम सुनने वालों को स्तब्ध किया हो और उन्हें सुनने पर मजबूर किया हो। किस्सा उस वक्त का भी है जब एक बार उनके कॉलेज के एग्जाम में उनसे एक शेर का मतलब पूछा गया। इत्तफाकन वो शेर बशीर भद्र साहब का ही लिखा हुआ था और जब उनसे उसकी तशरीह यानी कि मतलब बताने की बात कही गई तो कहते हैं कि एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उन्हें ये कहकर कि तुम तो अभी छोटे हो और तुम इतने संजीदा शेर का मतलब क्या बता पाओगे, उसे गलत बताया। इस बात पर बशीर भद्र साहब थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, हुजूर माफी चाहता हूँ लेकिन आपको बताना भी चाहता हूँ कि ये शेर इसी नाचीज का कहा हुआ है। जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर के लिए मानना बेहद कतई नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि जिस दौर की हम आपसे बात कर रहे हैं ना, उस दौर में वाकई गहरे शेर लिख पाना या पढ़ पाना सबके बस की बात नहीं होती। महज 7 साल की उम्र से लिखना उन्होंने शुरू किया था और जब कॉलेज का ये दौर आया तो एग्जामिनर ने उनकी बात को मानने से कतई इनकार कर दिया था। लेकिन सच तो ये था कि वो शेर उन्हीं का लिखा हुआ था और जब भी कभी ऐसे कोई दौर आए तो उन्होंने हमेशा इस

को साबित किया कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा।

उसे फर्ज करिए कि आप भले ही उर्दू भाषा की गहरी समझ न रखते हो, गजल और शेर और शायरी का शौक या फिर इल्म आपको जरा कम हो, बावजूद उसके भी आप जब भी कभी उनकी गजलों को सुनते हैं तो वो आपके दिल को छू जाती हैं। वजह जानते हैं क्या है? वजह बहुत ही सरल भाषा में अपनी बात अच्छे भाव, अच्छे तरीके और अच्छे एहसास के साथ सभी सुनने वालों के दिलों में पहुंचाने की कला। यकीनन ये सिर्फ और सिर्फ बशीर बद साहब ही कर सकते थे। जब भी कभी उनकी शायरी कानों की रह गुजर से गुजरती है तो ये बात साफ तौर पर हम सभी महसूस कर पाते हैं। कहते हैं कि 1965 के आसपास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक प्रोफेसर के रूप में परवान चढ़ा था उनका जो सफर था शायरी का, और उस दौर में उर्दू अदब पारंपरिक सोच का पर एक कड़ा पहरा भी था। ऐसे माहौल में बशीर बद्र साहब एक मशहूर बात उन्होंने उस वक्त कही थी कि शायरी को महलों की दासी बने रहने के बजाय उस आम आदमी की जुबान बनाना होगा जो सुबह लोकल ट्रेन पकड़कर दफ्तर जाता है। रूढ़ीवादी गलियारों में इसे उर्दू की तहजीब और हल्का करने वाली बात मानी गई, लेकिन बशीर साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपनी PhD की थीसिस आजादी के बाद उर्दू गजल का तनकीदी मुताला लिखकर साबित कर दिया कि उर्दू शायरी को अगर लंबी उम्र जीनी है तो उसे आम बोलचाल की हिंदुस्तानी भाषा को अपनाना ही होगा। उनकी अगर गजलों की बात करें तो उन्होंने उसमें उसे समावेशित किया जिनकी कल्पना भी उस दौर के पारखी नहीं कर सकते थे। उनकी गजलों में डायरी, चिट्ठी, ट्रेन की खिड़की, छतरी, लिफाफा और यहाँ तो अगर बात करें तो सिगरेट के धुएं को भी जगह दी। मानते थे कि अगर कोई आम इंसान अपनी प्रेमिका को याद करते हुए खत लिख रहा है तो वो हिज्र या फिराक जैसे भारी शब्द नहीं सोचेगा, वो बस उदास होगा, और उदासी के दौर में वो भारी भरकम शायरी उसे शांत नहीं करेगी। इंसानी रिश्तों के उस बारीक मनोविज्ञान को पकड़ा था उन्होंने जिससे लोग अक्सर छोड़ देते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी गजलों में हिंदुस्तानी भाषा को अपनाने की जो एक पहल थी उसको हमेशा कायम रखा और यही माना कि जब जब गजलों में हम आम भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, तो ज़्यादा समझ आएगी और आप उनकी किसी भी गजल को उठाकर सुन लें, देख लें, पढ़ लें, कह लें, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ ये बात एकदम सही है, एकदम सही है। 8:27 का वक्त, आप शायर इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके अपने 107.7 FM रेनबो पर। आज आपकी मेजबान ऋचा के साथ श्रद्धांजलि स्वरूप बशीर बद्र साहब को।

मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। कभी किसी दौर में यह अशआर उन्होंने लिखा, लेकिन लगता है शायद ऊपर वाला भी कभी कभी आपकी बात को सुन लेता है, बारीकी से सुनता है और वक्त के किसी दौर में उस बात को साबित भी करता है। कहते हैं जिस शख्स ने दुनिया को उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो जैसे कालजयी शेर दिए, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आखिरी समय में सबसे पहले उनकी यादें ही उनसे छीन ली। भोपाल के एक शांत कोने में रहते हुए बशीर साहब अल्जाइमर भूलने की बीमारी के उस मकाम पर पहुंच गए जहां वो कमर में बैठी अपनी पत्नी को देखकर भी अक्सर उनसे पूछते थे कि आप कौन हैं।

0: की।
1: दूसरों आखिरी दिनों में जब कभी उनके सामने कोई उनका ही पुराना शेर पड़ता तो वो बच्चों की तरह ताली बजाकर कहते थे, वाह कितना उम्दा शेर है, किसने लिखा है। कहते हैं बशीर बद्र साहब का इस दुनिया से रुखसत होना सिर्फ एक महान फनकार का जाना नहीं है, बल्कि उर्दू गजल के उस स्वर्ण युग का पूरी तरीके से खामोश हो जाना है जिसने शायरी को मखमली मिजाज और आम आदमी की धड़कन बनाया था। आज भले ही बशीर बद्र साहब हमारे बीच नहीं है और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई हैं, आवाज हमेशा के लिए

खामोश है, लेकिन आप और हम सभी ये जानते हैं कि उनकी लिखी गजलें हमेशा हमारे बीच कही, पढ़ी और सुनी जाएंगी। जब भी ये दुनिया मोहब्बत और बिछड़ने के दर्द को बयां करना चाहेगी, उनके लिखे अल्फाज हमेशा जिंदा रहेंगे। चलते चलते उनका यही शेर जहन में वापस आ रहा है, जो हमने कई बार कितनी बार आप तक पहुंचाया है। वही शेर जो कहता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डिमेंशिया से वो जूझ रहे थे और इसके चलते 28 मई 2026 को भोपाल में इस महान शायर ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन के साथ

यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डिमेंशिया से वो जूझ रहे थे और इसके चलते 28 मई 2026 को भोपाल में इस महान शायर ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन के साथ उर्दू जगत हाँ खाली जरूर हुआ है, लेकिन यकीन मानिए, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी कही लिखी गई गजलें हमेशा हम सबके साथ रहेंगी। उर्दू शायरी की दुनिया में दिए गए उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1999 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया और इसी साल उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये पुरस्कार उन्हें उनकी गजल आस के लिए दिया गया था, तो वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें मीर तकी मीर पुरस्कार और शिखर सम्मान भी मिला है। रात के 8:41 का वक्त हो चुका है, आबशार को यहीं पर रोकने की बारी है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये श्रद्धांजलि जो आज हमने आपने मिलकर सबने रेनबो के जरिए बशीर बद्र साहब तक पहुँचाई है, हाँ ये ज़रूर कामयाब होगी। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, जिस्मानी तौर पर नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर हमेशा रहेंगे, अपनी गज़लों शायरी अपनी कविताओं के माध्यम से हमेशा रहेंगे। 8:41 का वक्त या आखिरी गज़ल पर आप कहीं मत जाइए, 8:45 पर समाचार संध्या और फिर वापस लौटेंगे आपके अपने फेवरेट शो रेनबो कैफे के साथ।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण

0: कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव. और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया.
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया. श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है.
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए. आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला. लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of

0: 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तो हम तो थक गए भैया डांस कर करके। आपका क्या हाल है? मुझे पूरा यकीन है कि वहां भी आपने बिल्कुल डांस फ्लोर हिला रखा होगा, जिस तरीके से अभी गाने ना कि डांस फ्लोर मूड बना के तोड़ने के मूड में हो, तो वैसा ही मुझे लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। और ये हम नहीं कह रहे, ये आपके ईमेल से मुझे लगातार बता रहे हैं। मेरे पास दीपाली का ईमेल आया, लिख रही है कि जबरदस्त गाने बज रहे हैं और हम डांस कर करके थक चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि हम इससे बचें? यहाँ भी वही हाल है, आपके साथ साथ हम भी अपनी जो है कुर्सी पर थोड़ा बहुत दाएं बाएं यू ही, मतलब आपके साथ साथ आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं हम। अशोक कुमार जी का भी ईमेल आ चुका है मेरे पास, और आपने रायपुर उडारा मितौली लखीमपुर खीरी से आपका ईमेल भेजा है और लिख रहे हैं गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, आवाज पसंद आ रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ में अजय राज, पलिस्तर राज, प्रदीप राज, ये सारे लोग हैं जो मिलकर सुन रहे हैं, तो बस करते रहिए राज, ऐसी क्या बात है। आपका रेनबो कैफे है, आपका रेडियो है, आपका रेनबो है, आपके दिल के करीब है, दिलों की धड़कन है, तो राज करना तो बनता ही है ना, जाहिर सी बात है। अगला ईमेल किसने भेजा है? राम, देखो राज की बात हो रही तो राम राज्य का भी ईमेल आ गया है और लिख रहे हैं कि प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है और आपके साथ साथ सुन रहे हैं कौन कौन, राजू भानु, शंकर भैया है, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी, काका और सारे लोग मिलकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें सुनने के लिए। और आपने लिखा है कि हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आपको भी दिल से धन्यवाद इतने प्यारे ईमेल को हम तक पहुंचाने के लिए। और रही बात आपकी, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, तो ये आपको पता ही है कि ये रिक्वेस्टेड शो नहीं है, तो फिर वहां भेजिए जहां पर आपकी रिक्वेस्ट है, आपकी फरमाइशें पूरी हो सके, दोपहर 2 से 3 एंड शाम को 7 से 8, क्या समझे आप। अगला ईमेल किसके पास, किसका है? मोहम्मद आसिफ है हमारे साथ और आपने हमें हैदराबाद से आपका ईमेल लिखा है, तेलंगाना से इस वक्त आप सुन रहे हैं हमें और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, भोजपुरी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपने लिखा बहुत अच्छे हैं, बस गांव नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, जल्दी वहां भी चले जाइएगा, पहले जिस काम से वहां गए हैं तो उसको निपटा लीजिए और फिर गांव सब आपको याद करेंगे, सब आपसे मिलेंगे, क्या कहते हैं आप। अगला ईमेल किसका है? वकील अहमद है मेरे साथ और लिख रहे हैं सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है और तबीयत हमारी इस समय क्यों, क्या हुआ? ठंडा पानी पी लिया था, ज्यादा पी लिया था, या गर्मी और बाहर ठंडा गर्म कुछ ऐसा हुआ? तो अगर ऐसा कुछ किया है तो इसका ध्यान रखें। और आपने लिखा है कि तूफान आने से मौसम ठंडा हो गया है। और मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से आपका ईमेल है, आपके साथ साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफ शास्त्री की, अमन नवाब भी हैं जो मुझे इस वक्त सुन रही हैं। कहाँ गायब हैं अमन? अपना ईमेल किसके थ्रू भेज रही हैं आप हैं? अगला ईमेल किसने भेजा है? रणधीर गुप्ता। तो रणधीर जी, आपने लिखा कार्यक्रम आप

आपको अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं, दिल से इसके लिए धन्यवाद आपका। और ओखला संगम विहार दिल्ली से आपका ईमेल है और आपके साथ बबीता रानी गुप्ता भी हैं जो इस वक्त प्रोग्राम को सुन रही हैं। रब ने बना दी जोड़ी वाली बात है, रणधीर गुप्ता एंड बबीता गुप्ता, वही याद आ जाता है, रणधीर कपूर एंड बबीता कपूर। बहरहाल अगला ईमेल किसका है, मनीष गुप्ता जी ने ईमेल भेजा है, गोसाईगंज से आपका ईमेल है, प्रोग्राम शिमला में सुन रहे हैं इस वक्त। तो शिमला का तो माहौल बड़ा यू नो अभी और ठंडा ठंडा हो रहा होगा, कैसा है वहाँ का मौसम ये भी जरूर से बताइएगा, है ना। और आपने लिखा है कि प्रोग्राम सुनकर बड़ा मजा आ रहा है, थकान निकल जाती है जब ये प्रोग्राम आता है, ये बात तो सही है, थोड़ा सा डांस वांस हो जाता है, वार्म अप हो जाते हैं आप इसी बहाने। और आपने लिखा है कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, सो गुड, तो थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए। आनंद तिवारी है हमारे साथ, लिखते हैं दौलत नहीं शोहरत नहीं ना वाह चाहिए, है ना, यही है ना, दौलत नहीं शोहरत नहीं ना वाह चाहिए, कैसे हो बस दो लफ्जों की परवाह चाहिए। एकदम सही बात आपने लिखी, कोई बस प्यार से पूछ ले कि आप कैसे हैं, यकीन मानिए सारी थकान मिट जाती है और अच्छा लगता है कि किसी ने आपका ख्याल रखा। तो बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। आपने लिखा वो मोहब्बत थी तुम्हारी नफरत भी तुम्हारी थी, हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते, वो शहर भी तुम्हारा था वो अदालत भी तुम्हारी थी। अरे ये रेनबो तो आपका है ना, यहाँ ये इससे जुड़िए और सब कुछ आपका है। आपने लिखा है आनंद तिवारी आपका नाम, दारू कैया मल्लावा हरदोई यूपी से आपका ईमेल है, प्रोग्राम जबरदस्त होने वाला है आज, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अभी कितनी उम्मीदें पूरी हो रही है ये आप हमको बताइएगा, है ना। सुन करके मोनू सेठ जी वापस आ चुके हैं, क्या लिख रहे हैं, रेनबो कैफे सुनकर हाल और बढ़िया हो गई बार, आप इतनी बताइए चाची, वैसे प्रोग्राम एकदम झक्कास लाजवाब बेमिसाल बात, थैंक यू सो वेरी मच, शुक्रिया धन्यवाद। और आपने पूछा कि हम कैसे हैं, तो आपकी दुआओं से, आपके प्यार से, ऊपर वाले की दुआओं से फिलहाल तो ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है। तो 9:32 हो चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा सा विराम दिया जाए, क्या कहते हैं, और उसके बाद वापस लौटेंगे, कुछ और ईमेल जो मेरे पास हैं लगातार उन्हें आप तक पहुँचाएंगे। तब तक आए बाएं दाएं जितने हैं सबको लेकर के आइए, अगला गाना वही देने जा रहे हैं जिस जो उस वक्त आपको क्लिक कर गया होगा, कौन सा है? ये वाला, चलिए भेज दिया है गाना आप सबके रेडियो सेट पर, तो जहां कहीं हैं आप फटाफट जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि आपका रहना हमेशा हमेशा बेहद जरूरी है। 9:32 का वक्त, रेनबो कैफे आपकी अपने 100.7 FM रेनबो पर, मेरे अनिरुचा के साथ।

हाँ तो इसमें कोई दो राय तो है नहीं, आप फैन तो हो जाएंगे किसके, मेरे नहीं, आपके अपने रेनबो कैफे के, क्या समझे आप कहीं और मत जाइए। जाहिर सी बात है जब रेनबो बचता है तो इससे आप बच नहीं सकते, इसके इसका जो जादू है ना इससे आप बच नहीं सकते हैं। 9:42 का वक्त हो चुका है, आपके ईमेल्स लगातार मेरे पास है। वारिस अली खान साहब का ईमेल आ चुका है, लिख रहे हैं, अर्ज है, आए हैं जब जमीन पर किरदार निभाने, आए हैं जब जमीन पर किरदार निभाने, कुछ ऐसा कर चले कि जमाना मिसाल दे। बात तो बिल्कुल सही कही है आपने, और आगे आप लिख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर हम धरती को हरा भरा कर देंगे, और भी अच्छी बात है, जरूरत भी है, जरूरी भी है, करना भी चाहिए आपको। आपने लिखा कि रेनबो कैफे आपका पसंदीदा शो है और इसे आप जरूर सुनते हैं, और आपने लिखा है कि हम प्रोग्राम अच्छा करते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और आज मध्य रात्रि तक जागना होगा, और क्या भाई, ये तो जरूरी सी बात है, अगर आप लोग नहीं होंगे साथ में तो हमें कैसे एहसास होगा कि आप हमें सुन रहे हैं ना, तो ये होना भाई बेहद जरूरी है, आपको रहना जरूरी है। और आपने हमें संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमेशा की तरह आपका ईमेल भेजा, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नीलू शर्मा आ चुकी हैं रूपपुर चंदेला से, लिख रही, हर आहट एहसास हमारा दिला देगी, हवा एक रिश्ता हमारा सुनाएगी, आपके दिल में इतनी यादें हम छोड़ जाएंगे कि ना चाहते हुए भी आपको हमारी याद आएगी। अरे याद तो तब आएगी ना जब आपको भूलेंगे, क्या समझिए आप, तो जब भूलेंगे नहीं तो याद आने का कोई मसला ही नहीं है। आपने लिखा कि फहीम जी ने प्रोग्राम किया इसके पहले और आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया, हमको बोल देंगे आपकी तरफ से। और आपने लिखा है कि जल्दी जल्दी आया करो, और आपके प्रिय दोस्त कौसर पूर्णिमा जी को गाने की फरमाइश है। तो फरमाइश की बात तो नीलू आपको पता है ना कि ये फरमाइश प्रोग्राम नहीं है ना, कोई नए अगर हमारे श्रोता ये बात कहते हैं तो समझ आती, आप तो इतनी पुरानी लिस्टनर हैं, फिर ये कैसे हो सकता है, तो ये बात आपको मालूम है कि ये रिक्वेस्टेड शो नहीं है, ठीक है। सुनील कुमार जी का ईमेल आ चुका है, आप लिख रहे हैं कि रेनबो कैफे सुनने वाले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, आवाज एकदम कोयल की तरह मीठी है, अरे वाह क्या बात है, दिल खुश हो जाता है, देखो खुशी के मारे आवाज भी सही से नहीं निकल रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। और आपने लिखा है कहाँ से आपका ईमेल है, गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर से, और आपने गाने की फरमाइश की, अगली बार बजाएंगे क्योंकि आपको पता है कि रिक्वेस्टेड प्रोग्राम नहीं है, अगर आपको आपके गाने सुनने हैं रिक्वेस्ट वाले ना, तो उसके लिए दोपहर 2 से 3 और शाम को आप 7 से 8 यहाँ ट्राई कर सकते हैं, और फिर आपके गाने आप तक पहुंच सकते हैं। साहिब आलम जी का ईमेल है, और आपने लिखा कि आजकल रेनबो कैफे नहीं नचा रहा बल्कि आपकी शो की प्रस्तुति नचा रही है। बात तो एक ही है, हम और रेनबो कैफे एक दूसरे से अलग थोड़ी है, तो बस ये अच्छी सी बात है। आपने लिखा राजा जीपुरम लखनऊ से, बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। सतीश कुमार जी हैं, और आपको पहले तो बता दूं कि आप, मेरा नाम ऋचा है और आप इस वक्त सुन रहे हैं रेनबो कैफे, आपकी दोस्त आपकी ऋचा के साथ। अगला गाना ईमेल किसका वो पढ़ दे, फिर उसके बाद वापस आप तक गाना पहुंचाएंगे। मोहम्मद आसिफ जी का ईमेल हैदराबाद तेलंगाना से है, तो मोहम्मद आसिफ जी आप शायद सुन नहीं पाए, आपका ईमेल मैंने ऑन एयर किया था, लेकिन अभी आपने लिखा है कि आप फ्रॉक बना रहे हैं और प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, तो फिर देखिए प्रोग्राम भी सतरंगी बनेगी, बढ़िया वाली बनेगी, क्योंकि जहां आप प्रोग्राम सुन रहे हैं वो आपका सतरंगी चैनल है, जिसे आप कहते हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, जिस पर अगला गाना हम आपको देने जा रहे हैं। इस गाने को एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए, कहीं मत जाइए, आपके 100.7 FM रेनबो के साथ। अरे गाना ये रहा जो अब पहुंचा सीधा आपके रेडियो सेट तक।

चाहेगी। 9:52 का वक्त हो चुका है, आपके ईमेल वापस आप तक पहुंचाने की बारी है। इतने सारे ईमेल है भैया, लगातार फटाफट आप तक पहुंचा दी जाए। जितेंद्र नामदेव जी का ईमेल आ चुका है मेरे पास, और आपने में पोस्ट हनौती जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आपका ईमेल भेजा है, और लिख रहे हैं कि हर सांस में तेरी याद आती है और मेरी आंखों में तेरी तलाश होती है। कितनी खूबसूरत है ये चीज मोहब्बत, अर्ज कर रहे हैं कितनी खूबसूरत है चीज मोहब्बत कि दिल धड़कने में भी तेरी आवाज आती है। अब दिल है धड़केगा तो आवाज तो आएगी ना, धक धक धक ऐसे करके धड़कना भी चाहिए, और अगर किसी की याद में धड़क रहा है तो फिर क्या ही कहने, मतलब अलग ही बात होती है ना। नीलू जी, वापस आपका ईमेल मेरे पास है, मैंने उसको पढ़ दिया है, शायद आप सुन नहीं पाए, लेकिन आपका ईमेल मुझ तक पहुंच चुका है। थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए। राजकमल जी हैं हमारे साथ, ग्राम बरैया से आपका ईमेल है, बाराबंकी सूरतगंज से, और लिख रहे हैं प्रोग्राम की शुरुआत ही बहुत धमाकेदार हुई थी और इससे लगता है कि गर्दा बस उड़ेगा और उड़ गया। चलिए बहुत शुक्रिया, आपको आवाज पसंद आ रही है। आपने लिखा है कि 4 साल की आपकी बेटी है, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता तब तक डांस करती है। देखो ये है मेरी पक्की वाली लिस्नर, तो मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार, उनको नाम बता देते तो मैं नाम बता करके उनको ये सारा प्यार भेज देते हैं हमें ना, बट कोई बात नहीं, उनसे बोलिए कि अभी भी थोड़ा सा कुछ मिनट बचे हैं हमारे साथ गानों पर डांस करने की, जो उनकी प्रक्रिया है ना उसको रोकेंगी नहीं। अरविंद कुमार बुद्ध दुबे जी का ईमेल मेरे पास आ चुका है, ग्राम धर्मदेवा पोस्ट छठा जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आप मुझे सुन रहे हैं, लिख रहे हैं आपका इंतजार रहता है, फिर चाहे पॉप टाइम हो या फिर रेनबो कैफे। ये अच्छी वाली बात आपने लिखी है, और आपने लिखा है कि प्रोग्राम की शुरुआत गजब अंदाज में हुई, उम्मीद है कैफे में एक से बढ़कर एक गाने धमाल मचाएंगे। आपका ईमेल शायद मुझे देर से मिला है, तो अगर आप सुन रहे हैं तो बता दीजिएगा कि मिल गया। आपने लिखा कि आपकी एंकरिंग का जवाब नहीं, ईमेल जरूर शामिल कीजिए, तो हो गया है, वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया है, मस्ती और मूड का डांस का मूड है, और आपके साथ श्याम कुमारी, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, गोविंद दुबे, दुबे सभी मुझे सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश से मुझे आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके ईमेल के लिए। यास्मीन वानो भी है मेरे साथ और लिख रही हैं, कैसी हैं आप, बिस्वान सीतापुर से आपका ईमेल, आपने लिखा कि आप शार बहुत अच्छा लगा आपको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बशीर बद्र साहब की नजर जो किया गया शुक्रिया उसके लिए धन्यवाद, और ये कार्यक्रम भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है। साहिब आलम जी वापस आए हैं, और आपने लिखा कि आपका ईमेल मैं पढ़ चुकी हूँ साहिब आलम जी, बट आपने ईमेल वापस किया है, तो चलिए शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। सतीश कुमार जी, आपका ईमेल ऑलरेडी शामिल हो चुका है। रोशनी रावत बहुत देर से आई है हमेशा की तरह, कोई बात नहीं, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आप शार अच्छा लगा, रेनबो कैफे पसंद आ रहा है, दिल से धन्यवाद, लगातार डांस कर रही है, ये और अच्छी बात है, करते रहना चाहिए ना। अनिल कुमार जी भी आ चुके हैं हमारे पास, सदाठेर डिस्ट्रिक्ट बदायूं से आपका ईमेल है, और लिख रहे हैं अभी हम अपने किराने की दुकान पर हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, सॉन्ग अच्छे सुनने को मिल रहे हैं, आवाज पसंद आ रही है, और आपने लिखा कि ईमेल पढ़ने का अंदाज सबसे हटके है, जुदा है, बस जब आप कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं ना तो वाकई दिल को छूती हैं, वो जो रोज लिखते हैं उससे हट करके। तालिब अंसारी जी भी आ चुके हैं, आपने लिखा कि अच्छा आपकी कॉल कट गई थी फहीम जी के साथ में, तो हमसे जब वो मिलेंगे तो हम कह देंगे कि आपने ईमेल में उन्हें वापस हाय हेलो भेजा था, ठीक है। और आपने लिखा कि आप आई, धमाल वाले गीत सुनने को मिले हैं, और मूड हैप्पी वाला हो गया, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, अंदाज अलग है, अच्छा है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, राजा कटरा बाराबंकी से आपका ईमेल। सावित्री देवी जी आ चुकी 9:56

मिनट हो गए आपका ईमेल मुझे मिल चुका है, बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर से आपका ईमेल है और आपका प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। अगला ईमेल किसका है मेरे पास, आकाश लोधी है, मोनू सेठ जी है वापस आ चुके हैं, रणधीर गुप्ता जी धन्यवाद के साथ हैं, और केसरी नंदन जी हैं, शुक्रिया अलीगंज सुल्तानपुर से सुन रहे हैं आप मेरा प्रोग्राम, आपको अच्छा लग रहा है। सत्यम वर्मा, एम के राज, गुलफसा सिद्दीकी और आपके साथ साथ कौन है, युवराज सिंह भी हैं, सारे लोग मिलकर प्रोग्राम सुन रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आस्था, रामिका, अर्तिका और अंशिका ये हैं जो आपके साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं, युवराज सिंह का ईमेल। तो भैया 9:56, अगर किसी का ईमेल, देखो फिर दो ईमेल आ गए, बबलेश पवार जी का ईमेल है और आपने हमें लिखा है गांधी चौक बाड़मेर राज्य से, बबलेश पवार और डैनी पवार है जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। अच्छा लगता है जब भी मेल आ जाते हैं। अरविंद कुमार जी, वापस आपका ईमेल आया, मैंने पढ़ दिया आपका ईमेल, बहुत शुक्रिया, आपने लिखा कि गाने वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अब हमारे इस शो को वाइंड अप करने की बारी बहुत जल्दी से तेजी से हमारी तरफ आ रही है, क्योंकि 9:57 का वक्त हो चुका है। इस शो को यहां वाइंड अप करेंगे और जब यहां से जाएंगे तब लेकर आएंगे आपके लिए आपके दिल का के बेहद करीब सदाबहार नगमों से सजा हुआ गीत, वो प्रोग्राम जिसे आप कहते हैं रजनीगंधा। सुनना नहीं भूलिए क्योंकि आपका रहना है बेहद जरूरी, आपके बिना तो हम हमेशा ही कहते हैं सारी बातें हैं अधूरी। तो चलिए फिलहाल आज के लिए आपकी दोस्त आपकी आरजे ऋचा को दीजिए इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा आपके साथ।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ग्रेटर नोएडा स्थित बैटरी पुनर्चक्रण एवं महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र की अग्रणी कंपनी के अत्याधुनिक संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की तकनीकी क्षमताओं, बैटरी रिसाइकिलिंग प्रक्रियाओं और भारत में हरित ऊर्जा एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना की। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बैटरी रिसाइकिल और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति देश की आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेलवे बोर्ड के सदस्य आर राजगोपाल ने आज बनारस रेल इंजन कारखाना का विस्तृत निरीक्षण किया तथा लोको उत्पादन, गुणवत्ता, नवाचार एवं अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की।

इस अवसर पर बरेका के महाप्रबंधक आशुतोष पंत एवं प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष गण उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान श्री राजगोपाल ने लोको फ्रेम शॉप, लोको असेंबली शॉप, ट्रक मशीन शॉप का भ्रमण कर रेल इंजनों के निर्माण, असेंबली, कवच फिटेड लोको का परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। जौनपुर जिले के मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज आज गुलमर्ग, जम्मू एवं कश्मीर में संसदीय स्थायी समिति की बैठकों में सहभागिता की। बैठकों के दौरान अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक, सफाई कर्मियों एवं जनजातीय समुदायों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति, प्रभावी क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: रात के खामोश पहर में

0: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: ये है 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: रात के 10:04 का वक्त, एक बार फिर से आपके साथ मैं, आपके दोस्त, आपके रिचा, लेकर आपके लिए वो कार्यक्रम जहां से आप सुनते हैं सदाबहार गीतों से भरे हुए खूबसूरत सफर को, सवा को। तो बस गुजारिश, इल्तिजा आपसे हमेशा की तरह कि यहीं रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपका रहना है बेहद जरूरी।

तो कहीं ये किसी इत्तेफाक से कम नहीं ना कि किसी हसीन शाम को कोई नज़र एक नज़र से टकराती है और उसके बाद शुरू होता है दिलों का वो सफ़र जहाँ ख्वाबों का खूबसूरत कारवां चलता है, वो ख्वाबों का खूबसूरत कारवां जो प्यार इश्क मोहब्बत की वानगी के साथ न जाने कितने सिलसिले आपके दिल दिमाग जहन में किसी ताने बाने की तरह बुन देते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी ये हसीन इत्तेफाक हुआ है जिसने आपके साथ जुड़कर मोहब्बत के ताने बानों का एक सिलसिला आपकी ज़िंदगी में शुरू किया, तो बस रुक जाइए, ठहर जाइए, थम जाइए यहाँ मेरे साथ जहाँ इस वक्त आप सुन रहे हैं रजनीगंधा। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है ना, तो ये जो अगला गाना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

तो यही तो मोहब्बत की खूबसूरती है ना, किसी रोज आंखों में कोई ख्वाब आता है और उसके बाद उस ख्वाब की ताबीर और तासीर इतनी गहरी होती है कि वो किसी सिलसिले के साथ आपकी जिंदगी के साथ पूरी उम्र ऐसे ही चलता जाता है। एक तरफ ये रात का सन्नाटा और उस पर आसमान से बरसती हुई रेशमी चांदनी। कहते हैं कि जब इस चांदनी में किसी की झुकी हुई नजर आपकी उठती हुई नजर से मिलती है तो भी तो सिलसिलों का दौर ही होता है ना। जमाना जैसे कहीं ठहर सा जाता है। वो खूबसूरत फिजा गवाह बनती है उस अनकहे इकरार की, जहां लफ्ज कम और धड़कने फिर ज्यादा बात करती हैं। और फिर दिल से कहीं ये आवाज भी आती है कि तुम दूर हो फिर भी पास नजर आती हो, तुम दूर हो फिर भी पास नजर आती हो, इन हवाओं से भी जैसे तुम्हारी ही खुशबू आती है। न जाने कितनी बार आपने इस खुशबू को, इस महक को अपने दिल के आंगन में महसूस किया होगा, खासकर तब जब किसी का आना आपकी जिंदगी में आपके दिलों को, कहीं दिलों के तार को बजाने का सबब बना होगा।

रात चुप है मगर हवाओं में एक सरसराहट है, रात चुप है मगर हवाओं में एक सरसराहट है, ये मोहब्बत की दस्तक है या दिल की बगावत है। महक उठती है रूह रजनीगंधा की खुशबू से, महक उठती है रूह रजनीगंधा की खुशबू से, या खामोश रातों में तुम्हारी यादों की आहट है।

खूबसूरत चांदनी रात हो, फिजाओं में रजनीगंधा की खुशबू हो और प्यार अगर सदाएं दे तो दिल भला कैसे खामोश रह सकता है, खुद से ही बातें करने लगता है। उस खामोशी से जहां पहुंचकर इश्क कहते हैं कि इबादत बन जाता है। पता नहीं आपने कभी सोचा है या गौर किया है कि रजनीगंधा का फूल रात के इसी पहर में इस घने अंधेरे में ही क्यों खिलता है? शायद इसलिए क्योंकि उसे दुनिया की नुमाइश पसंद नहीं, रंगों का दिखावा पसंद नहीं। वो सफेद सादा मासूम है और खिलता है सिर्फ बिखर जाने के लिए, सिर्फ मिट जाने के लिए, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले चुपचाप खामोशी से, क्योंकि शायद वो जानता है कि खामोशी में वो सदा है जहां इश्क इबादत बनकर फिजाओं में बिखरता है।

यही तो जादू है ना मोहब्बत का, जो पल भर में अपना असर दिखाती है, जो एक दिल से दूसरे दिल तक सीधा उतर जाता है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत ढूंढने से मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मोहब्बत तो वो एहसास है जो तब जागता है जब चांदनी रातों में किसी की नजरों का जादू इन हसीन खूबसूरत फिजाओं से मिलकर सीधे दिल में उतर जाता है। वो नजर जो चुपके से उठती है, किसी का अक्स तलाशती है, और जब वो सामने वाले की नजरों से टकराती है तो मानो जैसे वक्त वहीं कहीं ठहर सा जाता है। उस एक पल में नजरों ही नजरों में सदियों की बातें हो जाती हैं। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, बस एक खामोश इकरार जो इन खूबसूरत फिजाओं में खुलकर सांस लेता है, और जो शायद कुछ यूं कहता है कि आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने।

अक्सर लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत महज एक लफ्ज है, इसकी कोई मुकम्मल परिभाषा नहीं, लेकिन ये बात शायद आप भी जानते हैं कि मोहब्बत महज एक लफ्ज नहीं, बल्कि शायद दास्तान है, इबारत है, कहानी है प्यार इश्क मोहब्बत की, जिसे अक्सर हम और आप कहते हैं, सुनते हैं और करते हैं। और जब आसमान में खिले इस चांद के साथ उस रात को देखती हूँ ना, तो लगता है कि जैसे कायनात भी खुद मोहब्बत की एक नई किताब हमारे सामने खोल देती है अक्सर, ये बताने के लिए कि देखो मोहब्बत के कितने सारे आयाम तुम्हें इस रात के साथ, इस चांद के साथ दिखाई दे जाएंगे। तमाम परिभाषाएं जो दिलों के करीब होती हैं। और फिर मुझे लोग ये कहते हैं ना कि मोहब्बत महज एक लफ्ज है, उसे कहीं झूठा सा साबित करती हैं। और अगर आज की रात की बात करें तो ये तो वैसे भी कोई आम रात नहीं, बल्कि एक ऐसी रात है जिससे किससे और क्यों कर मोहब्बत ना हो जाए।